0: थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पपीतकम् कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णुवादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
1: गर्ग मुनि ने,
0: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसन्ति अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानि महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया, उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सबके बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है, जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती है।

0: और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्तया नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया, और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मेना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती।
2: चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती हैं, और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
3: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
2: जी,
3: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके, और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
2: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं प्राय सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
3: बड़े आराम से।
2: हाँ,
3: बड़े आराम से लग जाते हैं,
2: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
3: लीला जी आप याद करिए कि अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
2: हो जाते हैं।
3: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
2: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
3: क्योंकि एक
2: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
3: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
2: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
3: हुआ,
2: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
3: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
2: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है। और जितनी भी नागरिक स्त्रियां थी, नगर की बधुएं थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
3: तभी से है,
2: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मीना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती हैं हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
3: सबसे बड़ा दान,
2: ये सबसे बड़ा दान
3: दान कहलाता है।
2: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मीना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो, प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्य महेश विषय अतीव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मादेव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र, कुल, नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते। दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
3: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
3: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर है हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मनुष्य शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: बिन बुलाए मेहमान,
2: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला
2: तो
1: रहे।
2: यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर कर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद्व है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी

0: 3 वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मींस ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो, तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है, उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं। तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए। अगर शायद हम वहां हों, प्रैक्टिकली सोच के देखें, तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है। और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे

0: का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे,
0: जी,
1: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म

0: संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो।
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. Children are doing that.
0: I think it's happening every day.
1: कितनी बार आप movie में चले जाओ, आप shopping mall में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: School uniforms में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. Definitely.
1: तो जहाँ resistance मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली, अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. You know, it's most important is to understand कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवनदायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बीइंग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ, बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें nourish.
1: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know?
1: ये मेरी responsibility है. तो imagine how the day will pass, and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली, लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू.
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जाम्पल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर. You know,
1: flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके मिलता
1: है। आई फील ब्यूटिफुल
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे, दैट्स गुड फॉर मी, देन आई शुड फॉलो दैट। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम एंड लिसन इनसाइड। सिंपल सिंपल थिंग्स। सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं, बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल सिंपल।
0: और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगारा है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स, तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय
2: इरिटेशन,
1: या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
2: वॉच इट
1: एंड सी इट। तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था। तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान
1: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
1: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं। अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा। लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है। लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस जाएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो। एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से, जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज।
2: यस, यू नो वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, जस्ट अ यू नो थॉट वे, सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया।
1: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था, आपने यू नो इट इज जस्ट बिकम वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर।
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज, लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ। लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है, तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस।
1: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड, यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है, लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते। हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है, you know, and at that time we say I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे, अंदर एक साइलेंस होगा, एक है साइलेंस एक है नॉइज, यू नो। तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं, बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है, और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड। साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स। सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स, नो, थॉट्स फोकस्ड, आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है। हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए,
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे,
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है। तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक, तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना। पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
2: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है।
1: आप अपने परिपेक्ष में अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
2: उसके लिए,
1: एब्सोल्युटली
2: है ना। लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ, क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
1: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक हैं। मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को।
2: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती हूँ
1: ओम शांति।

मॉर्निंग रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन। आज संडे का दिन। अच्छा, संडे वाले दिन ना कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि भाई कहीं दूर जाया जाए, लेकिन इतने सारे काम होते हैं पेंडिंग कि हम ये भी सोचते हैं कि कहाँ जाएं। अच्छा, तैयार भी हो जाते हैं, माइंड अपना सेट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि लगता है कि नहीं नहीं अभी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो छोड़ो, फिर कहाँ जाना, आलस आ जाता है और हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, अपने काम कर लेते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर तो जाते हैं लेकिन उन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं या फिर उनको देख रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, क्यों ऐसा फील होता है और क्या बात है, क्या रीजन है इसके पीछे, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना और 7.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अच्छा, मैं ना आज बात कर रही हूँ लोगों के बारे में, ऐसे कुछ लोगों के बारे में जो जिन्हें लगता है कि इस दुनिया के सेंटर में वो खुद हैं। उन्हें हर टाइम ये एक भ्रम रहता है कि सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो जान लीजिए कि ऐसा करना, खुद को खास समझना या पॉजिटिव रखना बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इसे साइकोलॉजी की भाषा में जो है द स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। अब ये जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है ये क्या है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन इससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

एकदम अलग नज़र आता है। सेम उसी तरह से ये जो स्पॉटलाइट है, ये इफ़ेक्ट जो है ये पड़ता है। और ये मैं कहूँगी कि देखिए, अलग नज़र आना या अलग दिखना, अटेंशन पाना, ये स्पॉटलाइट, द स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट इसे कहते हैं साइकोलॉजी भाषा में। साथ ही एक और जान लेने वाली बात ये है कि इस तरह के स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट में व्यक्ति ये समझता है कि सिर्फ उसी की गलतियों को देखा जा रहा है, यानी वो अपनी हर छोटी गलती के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील करता है। और इसमें जो टारगेट पर वो लोग होते हैं जिन्हें सोशल एंजाइटी होती है, वो ज़्यादातर इस इफ़ेक्ट के अंडर जो है वो आ जाते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं। या देखिए, दो तरीके लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि लोग सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, एक तो वो हो गए। और दूसरे वो होते हैं जो कि सोशली इंटरैक्ट लोगों से नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी गलती अगर वो करते हैं तो सारे के सारे लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे हैं। ये भी अगर उन्होंने पहनावा अच्छे से नहीं पहना है तो सभी लोग उन्हें ही देखेंगे और इस एंजाइटी की वजह से वो उस स्पॉटलाइट इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

तो रीझ गया, नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी, महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: लगता है तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। द स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूँ, इससे दिन भर के काम पर असर पड़ता है और लोगों के आसपास भी जो सहज जो है वो नहीं वो हो पाता है व्यक्ति, और इसमें ज़्यादातर समय जो है व्यक्ति परेशान रहता है। और इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो मान लीजिए किसी दिन आप ऑफिस भाई अच्छे से बाल सेट करके नहीं गए हैं, बगैर आपको जो है ठीक से बाल बनाए अगर गए हैं, और ऐसे में आपको ये लगेगा कि सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं और इसकी वजह से आप सबसे दूर रहने लगेंगे, छुपने लगेंगे, और आपको जो है ये महसूस होने लगेगा कि सब आपको देख रहे हैं और आपको जो है अच्छा फील नहीं करवा रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको महसूस होगा। अब कैसे आपको इसे पहचानना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है। तो देखिए, किसी दिन नया आउटफिट पहनकर बाहर निकले और सारा दिन ऐसा ही लगता है कि ये रहे कि अगर आपको कि नोटिस लोग कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, और ये जो फीलिंग है दिन भर आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सहज नहीं होने दे रही है, नॉर्मल नहीं होने दे रही है, तो इसका मतलब है आप इस इफेक्ट के आप देखिए अंडर हैं और आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं सभी के बारे में कि लोग आपको जज कर रहे हैं, और द स्पॉटलाइट इफेक्ट आपके ऊपर हावी हो चुका है कि आप सभी की स्पॉटलाइट पर हैं, सब आपको नोटिस कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आपको बताऊंगी कैसे इसे आप पहचान सकते हैं। द स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरेच नाउ 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आपको बता दूं, मैं खास जानकारी लेकर के आ जाती हूं। और अभी हम बात करें द स्पॉटलाइट इफेक्ट की। द स्पॉटलाइट इफेक्ट की बात मैं कर रही हूं, कैसे आप इसे पहचान सकते हैं, अपनी किसी आदत को लेकर भी ऐसा लग सकता है जिसके चलते एंजाइटी होना काफ़ी ज़्यादा आम हो सकता है। ऐसा लगना कि सब आपको ही देख रहे हैं और हर छोटी गलतियाँ जो हैं उन पर ध्यान जा रहा है, और ये संकेत बताता है कि कहीं ना कहीं आप स्पॉटलाइट के प्रभाव में हैं। दिमाग में जो पुरानी कुछ बातें हैं, जो पिछली बातें हैं, जो पास्ट की बातें हैं, वो बार बार आपके दिमाग में चलने लगती है। अपनी हर बात पर ध्यान देना, देखिए उस टाइम पर अपने आपने क्या कहा, आपने जो है वो क्या किया था उस टाइम पर, उतना ओवरथिंक करना वो जो है वो नॉर्मल नहीं होता है। और यही होता है कि जब आप पे प्रभाव पड़े द स्पॉटलाइट इफेक्ट का। तो चलिए, ये तो थी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि लोग अक्सर उन्हें देखते हैं, वो छोटी सी छोटी गलती कर देते हैं और उन्हें लगता है कि लोग उन्हें देख रहे हैं। आप घर से तैयार होके आए हैं, अगर आपके ड्रेस में अगर कोई भी गड़बड़ है, जैसे बचपन में ना ऐसा होता है कि अगर कभी आपका जो बकल है वो टूट गया है, स्कूल में अगर टूट गया है तो, और आप जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि सारी दुनिया हमें ही देख रही है कि हमारा जो शू बकल है वो टूट गया है। अच्छा, धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर कोई भी चीज़ है, नोटिस जो है वो ऐसा हमें लगता है कि हमें ज़्यादा किया जाता है और लोगों के मुकाबले ज़्यादा किया जाता है, तो ये सिर्फ आपकी ऐसी सोच है, बल्कि ऐसा असल में नहीं होता है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि असल में चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। और असल में देखिए होता ये है कि लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लोग अपनी अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम एंजाइटी जो है हमें होने लगती है। ये होता है कि जब हम ये समझ लें कि सारी स्पॉटलाइट, सबकी नज़र, सबकी जजमेंट सिर्फ हम ही पर है और किसी पर नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बचना ज़रूरी है। इस चीज़ को पहचानिए और थोड़ा नॉर्मलाइज़ कीजिए कि अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें।

और ये सोच लें कि ऐसा नहीं है और धीरे धीरे करके आप इसको जो है वो नॉर्मल कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मार्ग रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ आपको बता दूँ, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ यानी कि रेडियो मार्ग रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स मिल रहा है रेडियो मानव रचना, आपको देखते ही आपको डाउनलोड करना है. और जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देरी किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बातें हमारी चल रही हैं, खास जानकारी मैं लेकर के आ जाती हूं। आज संडे का दिन है और एक सवाल हमारे पास आया है, सवाल थोड़ा सा गंभीर है। देखिए, मोबाइल और लैपटॉप पर जो लोग काम करते हैं ना, उनकी बैक में ना थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये सवाल आया है हमारे पास हमारे एक लिसनर की ओर से, जिनका नाम है रोहित। रोहित जी की देखिए ये परेशानी है कि लैपटॉप मोबाइल पर इनका डेस्क जॉब है और ये काम करना इनको पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, इनको पीठ में दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता है। देखिए, मोबाइल या टैबलेट हो या लैपटॉप हो, देखते टाइम जब काम कर रहे होते हैं तो इस टाइम पर ना जो हमारा पोस्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना, और हम यही नहीं करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छा सवाल जो है ये हमारे लिसनर रोहित जी ने पूछा है, ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी एक लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूं एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हमारे लिसनर ने रोहित जी ने अभी पूछा है, मोबाइल टैबलेट या लैपटॉप पर काम करते टाइम सही पोस्चर जो है ना होने की वजह से आपके कमर में दर्द रहता है। और ये सच बात है कि बैक इश्यूज काफी ज्यादा रहते हैं, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ रहती है। देखिए अक्सर इस बात को लेकर लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन कोई जरूरी काम निपटाना या देखिए अगर आप लगातार नोटिफिकेशन के कारण मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और घंटों कर रहे हैं, या फिर आपका काम है वो जॉब ऐसी है डेस्क जॉब है, तो आपको परेशानी रहेगी। और ये बात जितनी आसान लग रही है ना कि भाई इतनी छोटी सी तो बात है क्या हो गया, उतनी आसान नहीं है। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आने वाले दिनों में आपको मैं बता दूं कि हो सकता है कि टेक नेक का जोखिम बढ़ जाए। और देखिए इसकी तरह ना इसी तरह लैपटॉप को भी गोद में रख कर अगर आप बिस्तर पर बैठ के काम करते हैं तो वो भी पोस्चर आपका सही नहीं है। लेट कर मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, हाथ ऊपर आपने मोबाइल फ़ोन को पकड़ा हुआ है, वो भी पोस्चर ठीक नहीं है। चाहे आप टैबलेट का इस्तेमाल करें, पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होगी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये सामान्य आदत जो आपकी है ये सिर्फ ना सिर्फ आपकी गर्दन में दर्द लेकर के आ रही है बल्कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो उसमें भी प्रॉब्लम ला सकती है। तो ज़रूरी है कि टाइम रहते आप सावधान हो जाइए। सर्वाइकल जो है जो देखिए डिस्क जो है वो गंभीर समस्या के जो वजह है वो बन जाता है, इसीलिए बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं कि ये टेक्निक होता क्या है। क्यों आज मैंने टेक्निक की बात करी, क्योंकि देखिए ये जो टेक्निक है ना ये होता है जब आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो रही है या आपकी बैक में इश्यूज आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो टेक्निक इसका जोखिम बढ़ जाता है। टेक्निक क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। बात चल रही है हमारी टेक्निक के बारे में। गर्दन में दर्द इन दिनों ज़्यादातर कामकाजी जो लोग होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको ही नहीं बल्कि जो और भी सामान्य लोग हैं उनको भी ये होता जा रहा है। और जितना अधिक आप अपनी गर्दन को उसकी जो है सामान्य स्थिति, जहां आपके कान और कंधे हैं एक सीध में रखते हैं, तो देखिए आराम आपको रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपकी गर्दन ऊपर नीचे या कुछ भी होता है, तो ये गर्दन आपकी जो पूरे सर का जो भार है वो गर्दन पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। जब गर्दन आगे की ओर झुकती है, इसे जो है वो नेक फ्लेक्शन जो है वो कहते हैं और कहा जाता है। और इससे उससे जो है गर्दन पर भार जो है वो आपकी पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि उस ग्रेविटी के प्रभाव को कम करने के लिए गर्दन की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे

सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्दन ही नहीं, कंधा, कलाई और साथ ही आपकी आंखों की तकलीफ बढ़ सकती है। लगातार फोन देखने से भी आंखों के में सूखापन यानी कि ड्राई आईज की समस्या हो सकती है। दरअसल आपकी देखिए जो अपलक यानी जो बिना ब्रेक लिए जो आप स्क्रीन देखते रहते हैं वो आंखों की स्वाभाविक नमी को जो नॉर्मली रहती है उसको कम करती है, सूखापन लेकर के आती है और इससे मांसपेशियों में थकने जो आपकी मांसपेशियां लगती हैं, नज़र आपकी धुंधली हो सकती है। तो इसी तरह फ़ोन का लगातार प्रयोग जो है वो ना सिर्फ आपकी उंगलियों के लिए कलाई के दर्द पैदा कर सकते हैं, फ़ोन को लगातार एक ही अगर आप डायरेक्शन में रखते हैं, पकड़ के रखते हैं हाथों पर, तो हाथों की नसों पर भी दबाव पड़ता है और साथ ही आपकी कलाई भी कमज़ोर होने लगती है, आपको महसूस होता है। अब उपाय क्या है वो आपको साक्षी जरूर बताएगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मारवरज 97.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक लेकर के आई हूँ कि जब भी आप लैपटॉप स्क्रीन देखिए आप देख रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन, तो टेक नेक सबसे पहले होता है। फ़ोन या किसी भी डिवाइस को देखते टाइम अपनी गर्दन को झुकाने की बजाय उसे आप आई के एंगल पे आप रख सकते हैं, आई एंगल पे रख सकते हैं। इस दौरान आपकी जो बाजू है, आपके जो हाथ हैं, आपके कंधे कलाई पर तनाव हो सकता है कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर के लिए, जिन्हें आंखों के स्तर से थोड़ा नीचे रखने की कोशिश आपको करनी है। साथ ही साथ हर 10 से 15 मिनट में थोड़ा सा टाइम निकालकर आपको सीधे बैठने की आपको जो कोशिश है वो करनी है। ऑफिस या घर पर लंबे टाइम तक काम के दौरान अपने शरीर को स्ट्रेच आपको करना है और अपने बैठने की जो पोजीशन है उसे भी ठीक करना है। अपने फ़ोन या टैबलेट को आपको आंखों के स्तर पर रखने के लिए फ़ोन स्टैंड, लैपटॉप स्टैंड, ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। इससे आपके हाथों में कलाइयों में दर्द नहीं होगा और आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बना रहेगा। अब देखिए कसरत की भी बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं जो कि टेक नेक से जुड़ी हुई हैं, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइव।
1: हिमारो विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ बातें हमारी चल रही हैं और ख़ास तौर पर ये जो टेक नेक की समस्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं। गर्दन को आपको जो है, अगर कसरत की बात की जाए तो गर्दन को आपको दाएं बाएं और ऊपर नीचे की ओर घुमाते रहना है और कंधों को आपको ऊपर नीचे करके स्ट्रेचिंग जो है वो करनी है और गर्दन को पीछे की ओर आपको हल्का खींचना है ताकि आपके थोड़ी छाती के थोड़ा सा पास जो है वो आ जाए। इसी के साथ साथ देखिए, बाहों में आपको जो है वो सुनपन या कमज़ोरी अगर महसूस हो या फिर जो नॉर्मल आप एक्टिविटी कर रहे हैं या नींद में अगर आपकी खलल आ रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, नसों में दिक्कत जो है वो आ सकती है। इनफैक्ट देखिए, इंसान का शरीर जो है वो सीधा देखने के लिए बना है, लेकिन कुछ सालों से, कुछ दशकों से अपने स्वाभाविक ढांचा के विरुद्ध हम पोस्चर जो है वो हमारा रहता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है तकनीक पर जो है निर्भरता। और मैं आपको बता दूं कि गर्दन को सीधा अगर रखते हैं तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपकी गर्दन पर इसका प्रभाव पड़ेगा जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। गर्दन को थोड़ा झुकाकर 15 डिग्री आपको रखना है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इससे जो है 15 डिग्री अगर आप रखते हैं तो दबाव जो है कम पड़ता है। तो जो 45 डिग्री देखिए, अगर गर्दन आपकी झुक रही है तो इससे आपको ज़्यादा प्रभाव जो है अपनी गर्दन पे पड़ेगा। अगर आप और ज़्यादा नीचे झुका रहे हैं अपनी गर्दन को, और ज़्यादा झुकाव पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि गर्दन का जो एंगल है वो हमेशा थोड़ा स्ट्रेट रखना है, आपको पोस्चर अपना ठीक रखना है, पोस्चर मेंटेन रखना है, नहीं तो आपकी कमर में दिक्कत आ सकती है। इनफैक्ट देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं या फिर कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आपको काम करते टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आई लेवल पर आपकी स्क्रीन जो है वो हल्की सी आपकी जो है, आपकी गर्दन जो है वो ऊंची होनी चाहिए और स्क्रीन आपकी जो है वो आप नीचे की ओर कर सकते हैं। इससे एक सही एंगल जो है वो बना रहता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, आप मोबाइल स्टैंड का या फिर आप लैपटॉप स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल लैपटॉप स्टैंड आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी गर्दन में दर्द ना हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत देर से आप झुके हुए बैठे हुए, आपकी कमर जो है बिल्कुल बेंड हो रखी है, एक सी कर्व बना हुआ है, कर्व हो रखी है आपकी जो पूरी पीठ है, तो आपको स्ट्रेट करनी है। काम करते टाइम, काम के दौरान आपको वॉक ज़रूर करनी है, थोड़ी थोड़ी देर में आप वॉक करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा से ही मैंने आपको कहा है कि अगर आप वॉक करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप लगातार बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है। मोटापा आपको बैठे बैठे रहेगा और साथ ही आपकी आंखों में भी सूखापन आने लगेगा क्योंकि आप लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं। तो इन बातों पर, इन पे सब पर ध्यान देना है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहां। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम। वेल हेलो नमस्कार सर श्रीकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। ये शो अपने आप में काफी स्पेशल इसलिए भी हो जाता है कि भैया आपको एजुकेट तो करते हैं, साथ साथ आपको ये बताते हैं कि इंडिया को जो हम बोलते हैं कि भैया हमारा देश सेल्फ रिलायंट हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है, उसमें किन किन लोगों का योगदान है, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं या सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग सेल्फ रिलायंट हो पाए हैं। सो टुडे शो इज गोना टेल यू अगेन अबाउट अ कंपनी एन इंडस्ट्री things that you should know, insights, key drivers, growth drivers about the company, USP of that company, founders of that company, background of the founders and so many things. So, आपको अगर अपना कुछ start करना है, it will help you out. तो शुरू करेंगे अपना शो, लेकिन सबसे पहले भैया एक सलाम कबूल करिए, मेरा जरा थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेना होगा, उसके बाद अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। Stay tuned, feel good, feel live.
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव।

का जूट संग है महाराज पधारे, चिमटा चरक चिलम और चेले साथ साथ है सारे, लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हैं रेडियो मधुमेह 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में, हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अब दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे अपडेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry we are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सब ने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो हैं इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,

इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद अ कस्टमर जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जाकर के इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खींच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो ID प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फ़ोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फ़ोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए। होता है ना ऐसे, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड, फील लाइफ।

परिणाम सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्मस्टर 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म

जो है खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीज़ें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए, इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत ज़रूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स का आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी वहाँ पर चाहिए। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जा करके आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज़ अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: फाइनली शो को अपने आगे लेकर चलते हैं और रिवील करते हैं आज की कंपनी के बारे में। सो दिस कंपनी इज हेल्दी श्योर। हेल्दी श्योर एक इंडियन इंश्योरटेक स्टार्टअप है। ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको इंश्योरेंस की पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया है, जिसको आप समझ पाए होंगे इंश्योरटेक एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें जो आपको बतानी चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दिस कंपनी, ये क्या अलग कर रही है। सो ये कंपनी जो है इंडिया का बिगेस्ट जो पेन पॉइंट है ना, इंडिया के खासतौर पर कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का, इसने वहां पर एंटर किया। यहां पर एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस को सिंपल बनाया इन्होंने, अफोर्डेबल बनाया, यूजफुल बनाया। होता क्या था कि पहले भी एम्प्लॉयज को जो है इंश्योरेंसेस प्रोवाइड किए जाते थे, बहुत सारी कंपनीज ऐसे इनिशिएटिव्स लेती थी, लेकिन मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, ऐसी कंपनीज नहीं थी जो उनको केटर कर सके या पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सके। तो होता क्या था, इंश्योरेंस बस एक कंप्लायंस प्रोडक्ट बन गया था। एक्चुअली यूजेबल बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, अफोर्डेबल नहीं था, सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ था। तो यहां पर इस कंपनी ने चीजों को थोड़ा अलग तरीके से जो है पोर्ट्रे किया, और यहां पर इंस्टेड ऑफ मेयरली एक्टिंग एज जस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर, हेल्दी श्योर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ बेनिफिट्स को। साथ साथ एम्प्लॉयज जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं इंश्योरेंस को, वेलनेस सर्विसेज को, डिजिटल क्लेम्स को, टेलीकंसल्टेशंस हैं, पर्सनलाइज हेल्थ केयर है, और ये सब कुछ सिंगल एक प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कस्टमर्स हैं इस कंपनी के, वो हैं स्टार्टअप्स, एसएमईज, मिड साइज बिजनेसेस, लार्ज एंटरप्राइजेस। सो ये कंपनी जो है खुद को पोजीशन करती है एज एन एम्प्लॉई बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म रादर देन जस्ट एन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर। और ध्यान रखिएगा भैया, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से कि कंपनी अपने आप को कैसे देखती है, किस पोजीशन में वो जो है खुद को डालती है, और एग्जैक्टली कैसे खुद को मार्केट में देखती है। दिस कंपनी इज एक्टिंग एज एम्प्लॉई बेनिफिट प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट एन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है इंश्योरेंस बेचना, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करना, मल्टीपल प्लान्स आपको दिखाना, लेकिन यहां पर काम होता है एम्प्लॉयज को कैसे बेनिफिट हो सकता है। दैट इज द विजन ऑफ द कंपनी। आई होप इट हेल्प्स। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये अस्त्राल छुटकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, चाहिए।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आइए दोस्तों बात करते हैं अपनी कंपनी जो हमारी आज की है हेल्दी शोर, उसकी फाउंडिंग स्टोरी क्या है, आइडिया क्या है, कैसे स्टार्ट हुई। तो इसके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ना बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है नोटिस किया कि हजारों कंपनीज जो हैं वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करती हैं हर साल। ठीक है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मतलब एक कंपनी जो है वो अपनी पूरी कंपनी में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो है बाय किया जाएगा वहां पर। उस ग्रुप में जितने भी लोगों को मैप किया जाएगा वो उसमें फर्दर लिस्टिंग होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि जो एम्प्लॉयज थे उनको पॉलिसी समझ में ही नहीं आती थी। तो एचआर टीम्स का स्ट्रगल होता था, भैया पेपर वर्क कंप्लीट करना है, क्लेम्स बहुत स्ट्रेसफुल थे, किसी को क्लेम लेना है तो एचआर के पास जाएगा, एचआर कंपनी के पास जाएगी, कंपनी में अगर चीजें सॉर्टेड नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ तो वो चीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब एचआर का काम बढ़ गया, एचआर डिसअपॉइंटेड है, एम्प्लॉई का जो है डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा होगा, साथ साथ वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत कम होता जा रहा था। ठीक है, एंड इंश्योरेंस जो है यहां पर भी खत्म हो जाता था जहां पर एम्प्लॉई ने रिजाइन कर दिया, इंश्योरेंस खत्म। एंड मोस्टली जो कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस को ट्रीट भी ऐसे ही करती थी एज अ मैंडेटरी एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ एन एम्प्लॉय वेलबींग टूल, क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन जब COVID-19 आया तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा एक्सपोज हुई, थोड़ी उभर के सामने आई, समझ में आया एग्जैक्टली क्या लूप होल्स हैं, क्योंकि लोग बीमार होने लगे, लोगों को क्लेम की जरूरत पड़ी, क्लेम की जरूरत पड़ी, चीजें स्ट्रेसफुल हो गई, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ओके, बिजनेसेस ने रियलाइज किया सडनली कि हेल्थ केयर बेनिफिट जो है वो मोस्टली एम्प्लॉयज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एंड यहां पर ये भी समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉय रिटेंशन टूल बन गया था वो एक तरीके से, लेकिन क्या एक्चुअली वेलबींग के ऊपर काम हो रहा था। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर इंश्योरेंस ब्रोकरेज, इस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया लेट्स बिल्ड एन एंड टू एंड एम्प्लॉय हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जहां पर होगा इंश्योरेंस, क्लेम, वेलनेस, टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, और ये सब कुछ एक डिजिटल इकोसिस्टम में होगा। एंड दैट्स व्हेन दिस कंपनी स्टार्टेड। कंपनी के फाउंडर्स हैं अनुज पारेख एंड सनिल बसुतकर। अब बात करेंगे इनके बारे में, कौन है ये लोग, क्या बैकग्राउंड है इनका, तमाम चीजें आपको बताएंगे, लेकिन कहीं जाइएगा मत, तो ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

ऑल राइट, वेलकम बैक। अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आइए बात करते हैं फाउंडर्स की, क्योंकि आज की हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है हेल्दी शोर। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इसके फाउंडर्स की, कि कौन है वो लोग जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, द माइंड बिहाइंड दिस कंपनी। पहला नाम आता है अनुज पारेख। इस कंपनी के को फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो बैचलर इन कॉमर्स प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है। दैट मींस कि फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, ऑल इंडिया रैंक 12 थी सीए फाइनल में, ठीक है। एमबीए पीजीपी इन्होंने किया था आईआईएम बैंगलोर से। प्रीवियस एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो हेल्दी शोर स्टार्ट करने से पहले अनुज ने काम किया है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, ठीक है, जहां पर उनको अनुभव हुआ बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर उन्हें मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर का मिला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मिला, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का मिला, स्ट्रेटजी का मिला, बिजनेस ग्रोथ का मिला, वेंचर इकोसिस्टम का मिला। सो ही वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स जिनमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी, जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स, रिटेल एनालिटिक्स, हाइपरलूप स्ट्रेटजी, एविएशन इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीटेक इनिशिएटिव्स। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आए, इतनी सारी चीज़ें इन्हें मिली, वो कुल मिलाकर के इनके काम आई। एंड आई ऑलवेज से दिस कि जब भी आप कोई काम करते हो, छोटा बड़ा नहीं होता। आज आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये क्या फ़ायदा हो रहा है इस काम से आपका, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली उसने क्या किया आपकी ज़िंदगी में। चीज़ें काफ़ी बदल चुकी होंगी, वो सारा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। दूसरा नाम है यहाँ पर सनील बासुतकर। सनील इज़ द को फाउंडर एंड प्रोडक्ट हेड। हेल्दी शोर आइडेंटिफाई करता है सनील बासुतकर को एज प्रोडक्ट हेड एंड को फाउंडर। कंपनी कहती है कि यहाँ पर जो है जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब एक ऐसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट ही सबसे बड़ा हीरो है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे का जो माइंड है वो सनील का है। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि जो सनील हैं इनका बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। ओके, फाउंडिंग टीम के मेंबर हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इनकी जो है अवेलेबल नहीं है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा नहीं ढूंढ पाए। बट इनका फोकस जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर है, टेक प्लेटफॉर्म जो है जो बना है उसके पीछे का जो हाथ है वो है सनील बासुतकर का। सो दीज आर द टू को फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी, अनुज पारेख एंड सनील बासुतकर। अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आके बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी बातें आपको बताइए आपको समझ आई है। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

कोई फीडबैक हमारे लिए तो 8010781078 तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल शो को आगे लेकर चलेंगे। आज की हमारी जो कंपनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही है, बहुत अमेजिंग काम कर रही है, एंड हमने अभी तक बात करी है कैसे कंपनी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग तरीके से चीजें लेकर के आई है, नॉट जस्ट एन इंश्योरेंस ब्रोकर बट अ टेक प्लेटफॉर्म जो एम्प्लॉयज की वेलबींग के बारे में सोचता है, हेल्दी श्योर। आइए आगे बात करते हैं, हेल्दी श्योर का मिशन क्या है। सो इस कंपनी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मिशन है, मेक एम्प्लॉय इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अटेनेबल फॉर एवरी बिजनेस इन इंडिया। तो जस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेचनी है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कंपनीज को ये आश्वासन दे कि उनके एम्प्लॉयज को जो है आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है, एक एक्चुअल बेनिफिट लगे उन्हें। ओके, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी इन्होंने, इसको हम तीन कैटेगरीज में देखेंगे। एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में काफी इश्यूज थे, ठीक है, एचआर टीम्स के लिए जो इशू थे वो थे एंडलेस पेपर वर्क, मैनुअल ऑनबोर्डिंग, मैनुअल एम्प्लॉय एडिशंस या रिमूवल्स, क्लेम कोऑर्डिनेशन बहुत एक्टिव होता है यार, ठीक है। इस कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सारी प्रॉब्लम, तो एचआर का काम सिंप्लीफाई कर दिया, एक टेक प्लेटफॉर्म बना दिया, आप सिंपली वहां पर डाटा इंसर्ट करोगे, बाकी काम कंपनी का प्लेटफॉर्म करेगा, कंपनी का टूल करेगा। सेकेंड कैटेगरी आती है फॉर एम्प्लॉयज, बेसिकली किसके लिए बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए प्रॉब्लम ये थी कि कॉम्प्लिकेटेड था बहुत क्लेम प्रोसेस, बेनिफिट्स की अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, बहुत पुअर थी, ठीक है, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट था, इंश्योरेंस डिसअपियर हो जाते थे जस्ट आफ्टर लीविंग द कंपनी। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, क्लेम प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, बेनिफिट्स जो है वो अच्छे से समझाए, सिंपल शब्दों में समझाए, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन अच्छा किया क्योंकि टेक प्लेटफॉर्म है, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो तीसरी जो कैटेगरी है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कंपनी, वो है एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनीज यानी कि जो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता था कि हर साल प्रीमियम बढ़ता था एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत कम था, ठीक है, क्लेम्स में विजिबिलिटी ही बहुत पुअर थी, एंड मल्टीपल वेंडर्स थे हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, तो उनकी इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। सो बेसिकली तीन लोग यहां पर, तीन कैटेगरीज को टारगेट किया गया है, बहुत थॉटफुल तरीके से पूरे प्रोडक्ट पूरा इकोसिस्टम यहां पर बनाया गया है कि कंपनीज को भी अच्छा लगे, एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगे, एचआर का काम भी इजी हो। सो बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन जहां पर सबको फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर्स को, एचआर को, सो वाई नॉट। तो ये है जी हमारी आज की कंपनी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इस कंपनी का नाम है हेल्दी श्योर। अभी तक हमने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम में सॉल्व कर रही है, तीन कैटेगरीज बेसिकली जो है इन्होंने सॉल्व करी है, जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था उसमें तीन कैटेगरीज में प्रॉब्लम्स थी, वो लूपहोल्स थे, वो इन्होंने सिंप्लीफाई किया। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवाष्टम 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ। हेल्दी श्योर का प्रोसेस क्या है ये और समझते हैं थोड़ा सा। तो इंस्टेड ऑफ ओनली इशूइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर स्टेप्स में हम इसको समझते हैं। स्टेप बनाता है कंपनी जो है एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदती है। स्टेप टू, एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड किया जाता है डिजिटली। स्टेप थ्री, एम्प्लॉयज को मिलती है डिजिटल कॉपी, हेल्थ एप्लीकेशन, क्लेम डैशबोर्ड। स्टेप फोर, एम्प्लॉयज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं डॉक्टर कंसल्टेशंस, वेलनेस डायग्नोस्टिक्स, मेंटल हेल्थ रिवॉर्ड्स, हेल्थ चेकअप्स। स्टेप फाइव, क्लेम्स जो है वो डिजिटली ट्रैक किए जाते हैं विद डेडिकेटेड सपोर्ट। स्टेप सिक्स, एम्प्लॉयर्स जो है उनको एनालिटिक्स मिलता है ऑन यूटिलाइजेशन, क्लेम एंड पॉलिसी मैनेजमेंट। ये टोटल 6 स्टेप है जो सिंप्लीफाई करते हुए एचआर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है सिंप्लीफाई करके। बात करते हैं कंपनी की यूएसपी की। बिगेस्ट यूएसपी है इंडिया का पहला फ्लेक्सी टॉप अप इंश्योरेंस। ठीक है, ये आप कह सकते हैं आर्ग्यूएबली हेल्दी श्योर का, मतलब इस कंपनी का स्ट्रॉन्गेस्ट इनोवेशन है। नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉई जो है कंपनी छोड़ता है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस वहां पर खत्म होता है। बट हेल्दी श्योर क्या करता है यहां पर, इन्होंने एक फ्लेक्सी टॉप अप इंश्योरेंस मॉडल जो है वो अलाउ किया एम्प्लॉयज के लिए। ओके, आप अपने इंश्योरेंस को अपग्रेड कर सकते हो, आप उस प्रोटेक्शन को कंटिन्यू रख सकते हो इवन आफ्टर चेंजिंग जॉब्स। आप एक कंटिन्यूटी बिल्ड कर सकते हो अपने इंश्योरेंस में। एंड ये एड्रेस करता है वन ऑफ द बिगेस्ट गैप्स इन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को। तो ये इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफरिंग है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स दोस्तों। जब आप कभी किसी क्लटर्ड मार्केट में जाते हो तो वहां पर आपको एक यूएसपी देनी पड़ती है सो दैट पीपल शुड चूज योर सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म। पेपर वर्क फर्स्ट नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। अपने आप में सिंपल है, इजी है, पीस ऑफ माइंड के साथ है। 24/7 क्लेम्स असिस्टेंस, डेडिकेटेड क्लेम मैनेजर्स हैं, पेपरलेस क्लेम सपोर्ट है। एम्प्लॉई वेलनेस इंटीग्रेशन, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मेंटल हेल्थ, डॉक्टर्स कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक्स, एनुअल हेल्थ चेकअप्स, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। एचआर डैशबोर्ड है, ठीक है, एम्प्लॉयज को कंपनी ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, क्लेम्स को मॉनिटर किया जा सकता है, बेनिफिट्स को मैनेज किया जा सकता है विदाउट हैवी मैनुअल वर्क। एसएमई फोकस्ड है, ठीक है, लार्ज इंश्योरेंस यूजुअली फोकस्ड ऑन बिग एंटरप्राइजेस, बट यहाँ पर एसएमईज के लिए इस कंपनी ने बनाया है ये चीज, ठीक है, कि एसएमईज, स्टार्टअप्स, वो भी यार अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है अपने एम्प्लॉयज को दे पाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूएसपीज ऑफ दिस कंपनी। अब उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आप कंपनी को पूरा समझ पाए हैं सिंप्लीफाई वे में। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आया यहाँ तक शो सुनने में और अभी तक आप समझ पाए हैं। तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं और जो बताई जा सकती है, लेकिन अभी समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए अपने शो को यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने बात करी हेल्दी श्योर की। हेल्दी श्योर प्रूफ है इस चीज का कि इनोवेशन डजंट ऑलवेज मीन इन्वेंटिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू। ये ऑलरेडी कोई चीज है तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है या कोई ब्रोकन एक्सपीरियंस है, उसको फिक्स करना भी एक इनोवेशन है। यहां पर इन्होंने क्या किया, सिंपली एम्प्लॉय इंश्योरेंस को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ फ्रॉम अ पाइल ऑफ पेपर वर्क इनटू अ डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ठीक है, स्टार्टअप जो है वो हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, एसएमईज को हेल्प करते हैं। तो कोई भी आकर यहाँ पर भी उस चीज़ को सिंप्लीफाई में ले सकता है, समझ सकता है, एम्प्लॉयज को भी फायदा हो सकता है। और केवल वहाँ तक सीमित नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा, एडमिट होंगे तब जाकर क्लेम मिलेगा। डायग्नोस्टिक्स के लिए है, रिवॉर्ड्स हैं, आपकी वेलनेस प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, मेंटल हेल्थ के लिए भी ले सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड सब कुछ सिंपल। एंड इवन अगर एम्प्लॉय छोड़ता है उसको, उसके पास तब भी चॉइस होती है, वो अपने इंश्योरेंस को कंटिन्यू रख सकता है। दैट्स ऑल।

अबाउट हेल्दी शो। फिलहाल वक्त अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको शो पसंद आया तो 8010781078 पर बताइए। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए। खैरियत सरिया, दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जहां होती है बातें आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दिन बीमार होते हैं तो मन करता है बस जल्दी से ठीक हो जाएं और वापस उसी रूटीन में चले जाएं जिसमें हम थे। लेकिन जब हम ठीक होते हैं तो हम शायद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं, क्योंकि हम बाकी चीजों में बिजी होते हैं। ऐसे ही आपकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए खास प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, और नॉलेज पार्टनर है SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज के इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, ये जानना भी बेहद जरूरी है प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज का टॉपिक है बहुत कॉमन, एलर्जी जो बच्चों को भी होती है बड़ों को भी होती है। कई बार सिर्फ छींकना खांसना ही एलर्जी में कैलकुलेट होता है, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। स्किन को छोड़कर भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में एलर्जी हो जाती है, लेकिन इस एलर्जी की वजह क्या है और ये वाकई एलर्जी के सिम्टम है या फिर इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसे कुछ सवाल और सवालों के जवाब देंगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि जैन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और साथ ही एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: थैंक यू।
2: तो डॉक्टर अंजलि, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम एलर्जी की बात करते हैं, लोग अक्सर कहते हैं बार बार छींकें आ रही हैं या बार बार खांसी हो रही है, थोड़े रैशेस हो गई, ये एलर्जी है, पर टेक्निकली कई बार वो एलर्जी नहीं होती। सो एलर्जी होती क्या है?
3: बेसिकली एलर्जी बॉडी का एक रिएक्शन है। मैं इसको आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे हमारा एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करता है, इन्फेक्शन लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया।
2: जी,
3: जब यही सिस्टम हमारे नॉर्मल चीज़ों से लड़ना शुरू कर देता है, नॉर्मल कोई फूड हो गया या फिर हवा ही हो गया, हवा में जो कण बह रहे हैं, पराग बह रहे हैं, जब हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, उसका रिएक्शन देती है और वो एक्स्ट्रा एग्जेजरेटेड रिएक्शन है, तो दैट इज एलर्जी।
2: ओके, यानी हमारी बॉडी जब रिएक्ट करती है किसी भी चीज को,
3: नॉर्मल फॉरेन इम्यून रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि ज्यादा है, अनवांटेड है, ज्यादा है, इट्स लाइक दिस।
2: जी, यानी जनरली धूल हमारे आसपास रहती है, पर जब धूल ज्यादा मात्रा में अंदर जाती है सांस के जरिए तो स्नीजिंग होती है, तो इसको एलर्जी बोल सकते हैं। तो ये जब बार बार हो तो एलर्जी कहलाई जाती
3: है, हमारी बॉडी उसे बार बार रिएक्ट करती है और हर बार द रिएक्शन इज नेक्स्ट टाइम पहले बार से ज्यादा।
2: बिल्कुल, यानी एलर्जी जब बॉडी ज्यादा रिएक्ट करती है पहली बार से ज्यादा, तो समझ लीजिए बार बार होने वाली और ज्यादा क्षमता के साथ होने वाली ये प्रॉब्लम एलर्जी कहलाई जाती है। अब ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन कैसे कैसे पता चले कि ये एलर्जी है? सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी एलर्जी को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि एलर्जी जब हमें कहीं रैशेज होते हैं तो हमें लगता है किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं पता चलती और कई बार वो एलर्जी होती भी नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाती है और दोबारा कभी नहीं होती है, तो ये एलर्जी है ये कैसे पहचाना जाए?
3: ओके, सी, जैसे मैंने आपको बताया कि एलर्जी इज नथिंग बट अ नॉर्मल एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स। कोई किसी चीज को इसको रिस्पॉन्स देगा, इसको रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो जिसने दिया दैट इज एलर्जी। और हमारी बॉडी का हर ऑर्गन रिस्पॉन्स देता है, स्किन में होती है, नोज से हो सकती है, लंग से हो सकती है, इनफैक्ट ब्रेन में भी एलर्जी के इफेक्ट्स होते हैं, पेट में होती है, सो एवरी ऑर्गन रिस्पॉन्स दैट इज एलर्जी। लेकिन एक एलर्जी में बहुत चीज होती है, देयर इज ऑलवेज अ सेट पैटर्न।
2: ओके,
3: वही डॉक्टर को पकड़ना होता है, वही हम पेरेंट्स से चाहते हैं कि वो हमें हिस्ट्री में ये बात बता पाए, व्हेन एवर थिंग्स आर ऑकरिंग इन अ सर्टेन पैटर्न व्हिच इज रिपीटेटिव, देन यू हैव टू थिंक फॉर एलर्जी।
2: ओके, यानी बार बार कोई चीज हो रही है, जैसे बच्चों को बार बार छींक आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाने से, जैसे स्टोर रूम के आसपास जाने से या किचन में जाने से, तो हमें समझ लेना चाहिए।
3: बहुत कॉमन हिस्ट्री मिलती है कि बच्चे को कोल्ड कफ तो चल रहा था,
2: हाँ,
3: जी आज, लेकिन मैंने घर की सफाई करी,
2: हाँ,
3: उसके बाद उसका कोल्ड कफ बढ़ गया,
2: हाँ,
3: और हर बार ये होता है,
2: हाँ,
3: तो ऐसे में हम ये काफी हद तक हमें लगेगा कि नहीं, इस बच्चे को शायद डस्ट से एलर्जी है,
2: यानी वो चीज समझ में आने लगती है कि बार बार हो रहा है तो ये एलर्जी।
3: यू कैन बी एलर्जिक टू एनीथिंग अंडर द सन, दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड।
2: ओके, यानी
3: आप किसी से भी एलर्जिक हो सकते हैं,
2: किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है जो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। जनरली हमें लगता है डस्ट से या किसी चीज के खाने से एलर्जी होती है या कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने से एलर्जी होती है, लेकिन एक्चुअली में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनमें से किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। बहुत सारी बातें और भी जानेंगे एलर्जी के बारे में। अगर आप में से किसी को किसी तरीके की एलर्जी से जुड़ी जानकारी लेनी है तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं 8010781078 पर। वक्त है अभी छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और हमें सपोर्ट किया है इस कार्यक्रम में आज नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें बहुत सारी चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में और एलर्जी से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं क्योंकि एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को कभी भी कहीं भी हो सकती है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में एलर्जी होना और एलर्जी से बच्चों को बचा के रखना अपने आप में एक टास्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन अगर पीडियाट्रिशियन स्टूडियो में आए हैं और आपको एलर्जी से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं तो सभी बच्चों के माता पिता को इसको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। डॉक्टर अंजलि जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में एंड न्यूनेटल केयर और साथ ही ये एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं। सो डॉक्टर अंजलि, आप एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं।

0: सिर्फ बच्चों की नहीं बड़ों की एलर्जी भी ठीक करने का काम करती हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, एलर्जी बॉडी के किन किन पार्ट्स को इफेक्ट कर सकती है और कितनी खतरनाक हो सकती है?
1: सी, एलर्जीज बेसिकली ना हमारी लाइफ एक इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर टाइप ऑफ अ थिंग, कि ये एक लंबा क्रॉनिक चीज होती है, ये परेशान करती है। बच्चों का स्कूल मिस होता है, अगर पेरेंट्स सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे को किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है, उसको वो खाना रोक दिया जाता है, उसके फिर अपने दुष्प्रभाव होते हैं, बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो इसलिए एलर्जी शरीर के हर हिस्से को, आपकी हर एक डेली एक्टिविटी को, मैं कहूँगी हर एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। सपोज अगर आपको नोज की एलर्जी है, नाक से, सांस से एलर्जी है, तो वो धूल से जा सकती है, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे उग रहे होते हैं उनके उन पराग से होती है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम है पोल्यूशन इन सब चीज़ों को बढ़ा रहा है। सो रोज उठते ही सुबह अगर कोई बच्चा कंटिन्यूएशन में छींकता है, नाक पूरे टाइम बहती रहती है, कोल्ड कफ लंबा चल रहा है, फीवर के साथ कोल्ड कफ एसोसिएटेड नहीं है,
0: वैसे ही हो रहा है
1: और लंबा चल रहा है, हम एक दो बार तीन बार एंटीबायोटिक्स बदल चुके हैं, तो स्टॉप दिस, दिस कैन बी एलर्जी एंड एंटीबायोटिक्स इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी।
0: जी जी, एंटीबायोटिक्स की आपने बात करी, तो बहुत सारे पेरेंट्स जब जैसे ही बच्चों को कोल्ड कफ होता है, अब वो फीवर से एसोसिएटेड है या नहीं है, वो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से है या नहीं है, बिना देखे बिना जाने एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराना शुरू कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा सा हमें बताएंगे ये क्यों खतरनाक होता है?
1: ये बहुत एक दिस इज अ क्वेश्चन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई रियली वॉन्ट टू आंसर दिस, कि कोल्ड कफ हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक इज बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने की चीज, कोल्ड कफ का मेडिसिन नहीं है वो। अगर कोल्ड कफ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया है तो ही एंटीबायोटिक काम करेगा। कोल्ड कफ कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, एसिड रिफ्लक्स, या सिंपली कई बार हम जब लेटते हैं तो बलगम ज्यादा बनती है तो वो गले में जाती है तो भी हमें खांसी आती है। सो एवरी खांसी का इलाज इज नॉट एंटीबायोटिक। इसलिए अपने डॉक्टर के पास जाइए, कारण जानिए, फिर उसको ट्रीट करना सही रहता है।
0: बिल्कुल, यानी एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है और बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकती है, पेट के अंदर भी हो सकती है, बॉडी में किसी और ऑर्गन में भी हो सकती है, स्किन पे भी हो सकती है, मुंह में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। इसलिए एलर्जी पूरे शरीर को कभी भी कहीं भी प्रभावित कर सकती है, बट इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके पास होनी चाहिए, जो आज हमारी एक्सपर्ट हमें दे रही हैं। अपने सवाल आप पूछ सकते हैं 8010781078 पर, और इसके साथ साथ अगर आप ये जानकारी किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए और उसमें पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर अंजलि जैन के साथ हुई ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. एलर्जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंजलि जैन जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक और साथ ही एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. और इनसे हम जान रहे हैं बच्चों में या फिर बड़ों में होने वाली एलर्जी के बारे में, क्योंकि एलर्जी एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हर कोई यूज़ करता है, कभी ना कभी किसी ना किसी को हो भी जाती है, लेकिन एक्चुअली में इसका सोल्यूशन क्या है और ये कैसे ट्रिगर होती है इसको जानना भी ज़रूरी है. तो डॉक्टर अंजलि, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है. जैसे हम लोगों को जनरली डस्ट में एलर्जी हो जाती है, जब हम बाहर निकलते हैं बहुत धूल मिट्टी है, आंधी आ रही है, तो ऑफकोर्स ऐसा लगता है जैसे नाक चोक हो गई है, गला जो है वो चोक हो गया है, छींकें बहुत सारी आती हैं. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं. कई बार खांसी नॉनस्टॉप आने लग जाती है किसी पेंट से या किसी चीज़ से. लेकिन घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है बच्चों में, ख़ास तौर पर से ये बढ़ जाती है. रात को सोते समय या सुबह उठते ही खांसी या ज़ुकाम एकदम से शुरू हो जाएगा और उसके बाद ठीक हो जाता है. सो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एलर्जी को ट्रिगर कर सकती हैं या जिनकी वजह से एलर्जी हो जाती है?
1: देखिए, घर में एक तो इन जनरल ऑब्वियसली साफ सफाई रखनी होती है, क्योंकि कॉकरोच से भी एलर्जी बहुत कॉमन है.
0: कॉकरोचेस
1: से बहुत कॉमन एलर्जी है.
0: कैसे होती है कॉकरोचेस से एलर्जी?
1: कॉकरोचेस का जो फीकल मैटर होता है, जब भी वहाँ जहाँ घूम रहे होते हैं वो छोड़ के ही वहाँ जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग उसको डस्ट सफाई करते हैं अपने घर में. यूजली इंडियन घरों में झाड़ू से सफाई की जाती है, हम लोग वैक्यूम्स यूज नहीं करते हैं. तो हम उस धूल को उड़ा देते हैं हवा में. फिर जब बच्चा वहाँ चल रहा होता है, सांस लेता है, वो उसके थ्रू चली जाती है. सो बेसिकली हमें अगर अपने बच्चों को एलर्जी से बचाना है तो उसके लिए हमें वेट मॉपिंग करनी है, मतलब कि झाड़ू पोछा नहीं करना है, डस्टिंग सूखे कपड़े से नहीं करनी है, हमें वैक्यूम क्लीनिंग करनी है.
0: ओके.
1: फिर एक सेकेंड सोर्स बहुत कॉमन होता है कि हमारा जो लिनन बेडिंग होता है, गद्दा है, तकिया है, उसमें एक माइक्रोस्कोपिक माइट होता है जो कि हमें एलर्जीज करता है. इसके लिए हर हफ्ते हमें हमारे पिलो कवर्स चेंज करने चाहिए, बेड कवर्स चेंज करने चाहिए, महीने में 15 दिन में मैट्रेसेस को धूप लगानी चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: बहुत जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो ऐसे डस्ट माइट कवर्स भी आते हैं.
0: ओके.
1: दिस इज दैट इज जिनको एकदम एस्टैब्लिश्ड एलर्जी है. तो फिर यूजली घर की डस्टिंग हमेशा जब बच्चा स्कूल से मतलब स्कूल जा चुका है या उसके आने में अभी 4-5 घंटे हैं तब करनी चाहिए. कुछ लोगों को अगर पेट से एलर्जी है, क्योंकि पेट का जो स्किन, डेड स्किन गिरती है, बाल गिरते हैं, उनसे एलर्जी होती है, तो ऑब्वियसली आपको पेट्स नहीं रखने हैं. बहुत से प्लांट्स होते हैं, उनका जो पराग होता है उससे एलर्जी होती है. तो ऐसे केस में अगर बच्चे को इससे एलर्जी है तो जैसे ही बच्चा बाहर से खेल कर आ रहा है, हाँ, एलर्जी का ये मतलब नहीं कि बच्चे को खेलने के लिए बंद कर दीजिए, बाहर ही मत भेजिए, नहीं, वो जैसे ही बाहर से खेल कर आ रहा है उसको नहला दीजिए, उसके कपड़े चेंज कर दीजिए, ताकि उस एलर्जन को उसकी नाक तक जाने का मौका ना मिले.
0: Okay.
1: फिर एक हमारे इंडियन घरों में हम लोग पूजा में अगरबत्ती बहुत जलाते हैं,
0: मस्किटो बहुत ज्यादा,
1: वो बहुत एक रीजन है एलर्जीज को ट्रिगर करने के लिए. फिर दूसरा एक पोल्यूशन इज द रीजन जो एलर्जीज को ट्रिगर करता है. ऑब्वियसली स्मोकिंग वो नहीं होनी चाहिए
0: जी, और बच्चों को सबसे ज्यादा ये ट्रिगर
1: ये सब है.
0: डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ जानना चाहूँगी. खाने की चीज़ों से कई लोगों को एलर्जी होती है. कुछ साल पहले तक हमने ये नहीं सुना था कि किसी को दूध से या किसी को नट से एलर्जी है,

0: कैसे रोका जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्या ये दवाइयों से कंट्रोल हो सकती है?
1: हाँ देखिए, एक्चुअली ना इसमें दो चीजें हैं, एक होता है इनटॉलरेंट होना किसी चीज के लिए, एक है एलर्जी। आपने जैसे बताया, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में ना फूड एलर्जी इतनी कॉमन नहीं है जितनी वेस्ट में है।
0: हाँ जी
1: ठीक है। अब जैसे दूध का ही है, एक होता है दूध का इनटॉलरेंट है कि दूध पीते ही पेट दर्द होता है, इट दिस इज नॉट एलर्जी, दिस इज इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस के दे आर मेडिसिन कि बेसिकली दूध को डाइजेस्ट करने के लिए एक टेबलेट आती है, आप वो लेके दूध ले सकते हो। लेकिन अगर एलर्जी है आपको दूध को तो आप दूध नहीं ले सकते हो। हाँ। जैसे ही आप दूध लोगे तो आपको स्किन पे रैशेज आ जाएंगे, सांस फूलने लग सकता है, पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, तो ये एलर्जी है। इन दिस केस आप दूध ले ही नहीं सकते हो अंटिल एंड अनलेस, हाँ एलर्जी का आप एक ट्रीटमेंट लेते हो जो कि 2-3 साल लंबा चलता है, तो उसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एलर्जीज के लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स तो ऐसे हैं जो उस समय दिए जाते हैं उस रिएक्शन को जस्ट रोकने के लिए। लेकिन अगर जब आप 2-3 साल तक लंबा ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत ज्यादा केसेस में एलर्जी से निजात भी पाई जाती है।
0: यानी ट्रीटमेंट से एलर्जी रुक जाती है, खत्म हो जाती है। जी, यानी एलर्जी को खत्म किया जा सकता है लेकिन सही ट्रीटमेंट के साथ। बहुत सारे लोग ये ट्रीटमेंट जानते ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रिवेंशन ही है जो आपको एलर्जी से बचा सकता है। पर एलर्जी एक ऐसा शब्द है जो घर घर में बहुत धड़ल्ले से यूज किया जाता है, जिसका सोल्यूशन लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सोल्यूशन ऐसा है कि भैया आपको डॉक्टर से मिलना है और वो आपकी मेडिकेशन शुरू करेंगे जो काफी समय तक चलती है, 2-3 साल जैसा डॉक्टर अंजलि ने कहा, और उसके बाद आपकी एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और साथ ही अपने एनवायरमेंट को भी वैसा ही बनाना होगा, जिन चीजों से आपको एलर्जी है उनसे दूरी रखनी होगी। फिलहाल बहुत सारी और भी बातें हैं एलर्जी को लेकर ही, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 8010781078 पर। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक रेडियो रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें ढेर सारी आपकी हेल्थ के बारे में, एलर्जी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं. और एलर्जी चाहे बच्चों को हो चाहे बड़ों को हो, एक्चुअली में काफ़ी दिक्कत देती है, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं रोक देती है. आप अपनी पसंद की चीज़ें जो खाना चाहते हैं वो खा नहीं सकते, जहां जाना चाहते हैं वहां जा नहीं सकते. पर अगर आपने सही ट्रीटमेंट लिया तो आप इस एलर्जी से छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं. पर ट्रीटमेंट से पहले कैसे इसको डायग्नोस किया जाएगा, आइए जानते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि जैन से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिशन और नियोनेटल में, और साथ ही ये एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर अंजलि, दवाई शुरू करने से पहले जैसे ये हमें लगे कि ऐसा कुछ हमें बच्चों को या बड़ों को, घर में जो भी व्यक्ति है, अगर उसमें हमें कोई एलर्जी के ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, अब चाहे वो स्किन पे बार बार कोई चीज़ लग रही है और एलर्जी हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी भी माहौल में जाते ही अचानक से तबीयत खराब होने लगती है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के पास जाने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा. सो क्या होता है ट्रीटमेंट, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या इंजेक्शन होते हैं, क्या चीज़ होती है इसमें?
1: एक तो एलर्जीज मैंने आपको बताया जैसे कि रिकरेंट होती है, इनका एक पैटर्न होता है, ये बार बार सेम सिम्टम जब आ रहा होता है तो एलर्जी सोचना रहता है. तो फिर जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो सबसे पहले हिस्ट्री पे हम यही पता करने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ की वजह से एक रिपीटेड पैटर्न आ रहा है. तो हिस्ट्री हेल्प्स इन डायग्नोसिस. उसके बाद देयर आर फ्यू टेस्ट, लाइक एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें कि हम स्किन पे कुछ एलर्जेंस लगाते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या आपकी बॉडी इनको रिएक्ट कर रही है. स्किन प्रिक टेस्ट होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर एक एक निष्कर्ष पे निकलता है कि शायद हाँ इन इन चीज़ों से आपको एलर्जी है. फिर उन चीज़ों की थेरेपीज होती हैं, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं उसको. इम्यूनोथेरेपी दो तरह की होती है, कुछ उनमें टैबलेट्स भी होती हैं, कुछ इंजेक्शन से भी होता है. ये जब हम लगातार 2-3 साल तक करते हैं तो हमारी बॉडी इन चीज़ों को रिएक्ट करना बंद कर देती है, दैट मीन्स हमारी एलर्जीज रुक जाती हैं. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है या क्रक्स है.
0: जी यानी आपको टेस्ट कराने हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद मेडिकेशन शुरू होगा. डॉक्टर अंजलि, बहुत सारे घरों में कैसे इसको ट्रीट किया जाए या फिर घर की माहौल को कैसे चेंज किया जाए, वो मैं जानना चाहूँगा.
1: एलर्जी के लिए कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं, जनरली हर एलर्जी में ये काम करती हैं काफी हद तक, तो 50% तो इसी से काम चल जाता है, इनफेक्ट ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती. कॉमन चीजें हैं जैसे कि सबसे पहले आपके घर में कहीं पर भी डैम्पनेस आ रही है, यूजली बाथरूमों में हम देखते हैं वॉल्स पे ब्लैक डॉट्स दिखती है, फंगस होती है, उनको ठीक करवाइए.
0: जी
1: ठीक है. कोई भी धुएं वाली चीज जैसे कि अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना या मस्कीटो कॉइल्स, उनको यूज करना बंद कर दीजिए.
0: जी
1: आप एलर्जी किसी भी चीज से हो, ये चीजें लेकिन आपकी उस एलर्जी को बढ़ाएगा. तो ये जनरल मेजर्स हैं.
0: ओके
1: ठीक है. घर में कभी भी डस्टिंग नहीं करनी है, हमें वेट मॉपिंग करनी है, मतलब धूल उड़ानी नहीं है,
0: कपड़े से साफ करने,
1: धूल उड़ानी नहीं है, पोछा लगाना है, झाड़ू नहीं, झाड़ू से धूल उड़ती है, तो ये करना है. देन हमेशा हर हफ्ते बेडिंग को चेंज करना है. ठीक है. जब बाहर AQI बहुत ज्यादा है तो हम उन दिनों, एक तो ऑब्वियसली बच्चे को उस समय के लिए बाहर ना जाने दें, प्लस उन दिनों हम हेपा फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, दे हेल्प कि हमारी एटलीस्ट इंडोर एयर साफ रहे.
0: जी और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स का भी इस्तेमाल करेंगे बेटर रहेगा.
1: एंड खाने में यूजली ना ठंडा गर्म, जो बहुत मदर्स को लगता है कि ये बच्चे ने आइसक्रीम खाई या बच्चे ने जैसे ही ठंडा पानी पिया तो खांसी जुकाम शुरू हो गया, उसको ठंडे से एलर्जी, एक्चुअली ठंडे से एलर्जी नहीं होती, ठंडा ट्रिगर होता है.
0: यानी आपके अंदर कहीं एलर्जेंस कुछ ऐसा है वो बढ़ जाएंगे,
1: वो एकदम वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा. तो इसलिए जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में बैठने दीजिए, फिर उसको नॉर्मल पानी दीजिए, थोड़ा सा ठंडा. सडन जो गर्म ठंडा होता है ना, गर्म सर्द होता है, उससे हमें बच्चे को रुकना होता है.
0: सभी यही कहते हैं कि गर्मी से अंदर आके एकदम से AC के सामने ना बैठे या AC से बाहर निकलने तो एकदम लू में ना जाए, थोड़ा सा आपको
1: उससे प्रोसेसेस ट्रिगर हो जाते हैं.
0: जी यानी
1: अगर आपकी टेंडेंसी है एलर्जी की.
0: जी यानी एलर्जी जो है वो इस चीज़ से एकदम से बढ़ जाएगी और फिर आपको समझ नहीं आएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ. डॉक्टर अंजलि, घर की कुछ चीज़ें, कुछ घरेलू उपाय जो थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं, कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं एलर्जी के मामले में, अगर आप सलाह देना चाहें तो.
1: एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि एलर्जी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से नहीं है, इम्यूनिटी का जो सिस्टम है जब वो ओवर एक्ट रिएक्टिव हो जाता है तो हमें एलर्जीज होती है. तो इसलिए ये है कि हाँ बच्चे को बैलेंस न्यूट्रिशन दे ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छे से काम करे. स्लीप पूरी होनी चाहिए, स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल मोबाइल की दुनिया में ना बच्चों की स्लीप बहुत इनकम्प्लीट हो रही है.
0: बिल्कुल.
1: सो स्लीप कम्प्लीट होनी चाहिए तो इम्यूनिटी अच्छी चलेगी.
0: यानी कम से कम 8 घंटे सोए
1: जी
0: तो इम्यूनिटी ठीक रहेगी और एलर्जी क्या बाकी प्रॉब्लम से भी बचाएंगे.
1: जो चीजें हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं वो हमें एलर्जी से भी बचाएंगी
0: जी.
1: आउटडोर एक्टिविटी, आजकल बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है. रीजन बीइंग एट टाइम्स मोबाइल, एट टाइम्स अब बड़ा बच्चा 10th में आ गया है तो भाई उसके पढ़ाई का टाइम है. नो, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड इम्यूनिटी.
0: बिल्कुल.
1: सो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है
0: जी. जी डॉक्टर अंजलि, चलते चलते एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या ये एलर्जी अगर स्नीजिंग हो रही है, कफ बहुत ज्यादा है, तो क्या ये एस्थमा में बदल सकता है?
1: सी, एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. When allergy of lungs is there, कि बच्चे को सांस फूलता है, वो भागते भागते एकदम उसका सांस चढ़ने लगता है, हंसते हंसते एकदम लास्ट में वो खांसने लगता है, या उसकी बार बार पसलियां चल रही हैं, सांस में आवाजें आ रही हैं, ये लंग्स की एलर्जी है. सो दिस इज अस्थमा.
0: यही अस्थमा होता है, यानी लंग्स में अगर कोई एलर्जी हो रही है.
1: वन ऑफ द रीजन फॉर अस्थमा इज एलर्जी. अस्थमा कैन बी ऑफ अदर रीजन ऑल्सो, बट वन ऑफ द रीजन ऑफ अस्थमा इज एलर्जी.
0: यानी एलर्जी की वजह से अस्थमा, और लंग्स में एलर्जी अस्थमा ही कहलाई जाती है. सो डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई, बहुत सारी जानकारी आपने शेयर करी. उम्मीद है जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो बड़े लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि एलर्जी बच्चों में बड़ों में किसी भी चीज़ से हो सकती है, और वो सब कुछ आपने बताया है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. उम्मीद है बहुत से लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे. थैंक यू.
1: थैंक यू.
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और टाइम है आपसे इजाज़त लेने का. अगर आप ये जानकारी पसंद करें और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसकी हेल्थ आप ठीक रखना चाहते हैं, तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए. पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको डॉक्टर अंजलि जैन के साथ हुई ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, और आप इस पॉडकास्ट को कभी भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड. फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त, फिर से होगी मुलाकात कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज मैंने अपने शो की शुरुआत ये वाला गाना गाकर क्यों की है। वैसे तो मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, इसलिए मैं अपने हर शो की शुरुआत एक गाने से ही करती हूँ। बट यस, आज ये गाना मैंने इसलिए गाया है क्योंकि हमारे शो के जो आज गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस शेफ़ हैं। ये बहुत ही शानदार शेफ़ हैं, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बहुत अमेजिंग मुकाम हासिल किए हुए हैं। So, दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे विजनरी लीडर मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया के फूड इंडस्ट्री में इनोवेशन और एक्सीलेंस का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। ही इज द सीईओ ऑफ फेटर्निटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड मैनेजमेंट कंपनीज एंड द माइंड बिहाइंड आइकॉनिक ब्रांड्स लाइक जोका, सिडेली, तुलसी, नुमाई, फायर्ड अप, मिर्च, ग्रेनॉस, मदुराई, ब्लिंक, योलो एंड हरमनोज। He has also been associated as CEO with Anardana, the biggest Indian restaurant chain in Delhi NCR, and Romeo Lane, the biggest high energy bar in India and Dubai. Iske alawa, inko Face of the Future India aur President Award 2016 se bhi sammanit kiya gaya hai by the Indian Hospitality Congress. He brings over 26 years of rich experience in world-class hotels and premium restaurants. So friends, swagat karte hain a true culinary visionary and business leader, Mr. Manoj K. Rai ji ka. So sir, bahut bahut swagat hai aapka aaj hamare show Creative Manch mein.
1: Thank you very much for calling me.
0: So sir, kis tarike se aapki is journey ki shuruaat hui, sabse pehle to hum ye janna chahenge.
1: तो मेरी जर्नी जो है इस इंडस्ट्री में शेफ़ बनने की और बाद में जो बीच में बदना, दिस वॉज नॉट अ प्लान्ड वन, इट वॉज मजाक में बन गया। मैं आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा मन था, लेकिन स्पोर्ट्स सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी रीज़न से। मेरे साथ के लोग इंडिया के लिए खेले, मैं नहीं खेल पाया। तो जब मैं वॉज लिटिल डिसहार्टन, तो मैं दिल्ली घूमने आया था
0: जी।
1: तो जब मैं घूमने आया तो ट्रेन में कोई मुझे मिल गए, हमारे फौजी अंकल, उन्होंने बताया मेरे बेटे ने होटल मैनेजमेंट किया है और वो बहुत पैसा कमाएगा।
0: अच्छा।
1: तो मैं वापस गया, मैं भी यही करूँगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे मालूम चला कि ये तो कहानी उल्टी थी, यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ता है
0: जी।
1: तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड।
0: ओके, सो जब आपने ये शुरू किया लाइक कॉलेज होटल मैनेजमेंट, और पहली तो बताइए आपने कहाँ से किया?
1: गोवा से।
0: हाँ जी। ओके, और तो फैमिली में किसी ने मना किया? पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंजीनियर, डॉक्टरी, ये चीजें करनी है, थोड़ा सा होता है ना माइंड सेट हर पेरेंट का।
1: मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा। तो मुझे तो बोला अरे पंडित का बेटा खाना बनाएगा।
0: अच्छा।
1: ये और तुमको कोई लड़की देगा शादी करने के लिए? तो ये तो पहले से मुझे मिल गया था कि ये नहीं हो पाएगा।
0: अच्छा।
1: तो जब मुझसे पूछा मेरे मामा ने क्या करते, मैं कहा शेफ हूँ। कह रहे हिंदी बताओ क्या बोलते हैं उसको, मैं बावर्ची। कह रहे यार तुम पंडित होके ये काम करोगे, अब तुम खाना पकाओगे? तो मेरे खानदान ने ही मुझे छोड़ दिया था 6 साल तक। जब तो मैं टीवी पे नहीं आया, जब मैं टीवी पे आया था तो आई थिंक दे स्टार्टेड लाइकिंग मी अगेन। बट हाँ ठीक है।
0: तो वहाँ से लेकर टीवी तक का सफर किस तरीके से आपने किया, उसके बारे में बताएं।
1: बहुत हार्ड वर्क। मतलब जब मैं कॉलेज पढ़ने गया तो समझ में आया कि जो सुन के आया था वो यहाँ पे रियलिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
0: जी।
1: और हमारे टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 97, 98, 99 कॉलेज, अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, रेस्टोरेंट नहीं थे, होटल थे, होटल बहुत लिमिटेड थे। अब तो खैर हर एक कोने में 5-star होटल भी है, 4-star होटल है, रेस्टोरेंट है। हमारे टाइम ऐसा था नहीं, ना गूगल था, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ ये थी। तो व्हाट एवर यू वांट टू डू, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सो वी वर स्केयर्ड कि एट लीस्ट जॉब मिल जाए हमारे को, मतलब कुछ कर लें। तो मैं बोला यार शेफ बनते हैं। मेरे को तो शेफ बोलने में भी एक दिन लग गए थे। मैं बोलता सेफ, ठीक है। तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई स्कूल में कि क्या शेफ बोलो, मैं सेफ बनूंगा सेफ। तो जब पता चला कि करना है तो वो बहुत ही हार्ड वर्क था, लेकिन जब आँख खुली समझ में आया कि यार अब आगे हैं तो पीछे हटेंगे नहीं
0: जी।
1: तो मैंने डिसाइड किया कि जो जर्नी मुझे 8 साल में करनी है, जो अगर कहते हैं कि ये इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको 7 साल 8 साल लगेंगे, मैं इतनी मेहनत करूँगी, मैं 4 साल में पहुंच जाऊँगा। तो मैंने मेहनत को डबल किया अपने, और बहुत दिन रात मेहनत की, दिन रात मतलब 18 घंटे 19 घंटे। मुझे याद है वो टाइम भी आया था जब मैं बहुत कम एज में आई बिकम लिटिल बिगर पोजीशन पे आ गया था, मैं नंबर 2 पे आ गया था। नंबर 2 पे आने के बाद भी आई हैड गोरा शेफ फ्रॉम कैनेडा, जिसकी जो उसके टाइम पे मैंने 9 महीने तक आई वर्क विदाउट टेकिंग अ डे ऑफ। तो वो मुझे बोलता था, भाई तू क्या करता है? बोला, सर मुझे बड़ा बनना है। तो वो जोश था बड़ा बनने का उस टाइम पे
0: जी।
1: और फिर आई थिंक 2000 में मैंने करियर शुरू किया था, और 2004 में आई बिकम एग्जीक्यूटिव शेफ। 4 साल में जर्नी पूरी कर ली मैंने अपनी, मतलब पोजीशन वाली
0: जी।
1: तो वो स्ट्रगल था बस, बट मजा ही बताया स्ट्रगल करने में।
0: मतलब अब जिस मुकाम पर आप पहुंच गए हैं, तो जब ये वक्त याद करते हैं तो कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा होता है। इट्स साउंड्स वेरी इंस्पायरिंग व्हेन आई थिंक अबाउट कि मैंने ऐसे मेहनत की। व्हेन आई सी आज के जो लड़के हैं, तो मैं उनको इसे इतना बोलता हूँ, भाई अगर तुम मेरी मेहनत के 30% भी काम कर लोगे ना, तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे।
0: बिल्कुल।
1: देखो मैं ये नहीं कहता हमने जो किया बहुत अच्छा किया, हमने जो किया अपने नॉलेज में किया, गलत भी किया सही भी किया, गाइडेंस नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, ना कोई रेफरेंस था जैसे आज है। तो उस वक्त पे मेहनत बहुत की, आज तो हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छे मेंटर्स भी हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इंस्टा है, गूगल है, प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैज बिकम वेरी चीप, तो यू गॉट लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बहुत सबसे अच्छी बात, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों को आज उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती
0: जी। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो सर, जैसे हम देखते हैं आजकल, आपने बताया आप प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली आपने कॉलेज से, उसके बाद इतना स्ट्रगल किया, बट अब जो ये रील्स का एक ज़माना चला हुआ है, हम देख रहे हैं बहुत लोग खाना बनाने की रील्स डाल डाल के फेमस हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक, किस हद तक सही है आपके अकॉर्डिंग?
1: मैम देखो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ भी और नहीं भी हूँ। हूँ इसलिए कि शायद ठीक है, वो अपने पैशन को दिखाते हैं, बट मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि जो जो दिखता है वही सच नहीं होता। मतलब जो मैंने दिखाया या किसी ने दिखाया वो सच नहीं होता। सच के पीछे बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद वो रील बनी, अच्छा कंटेंट है तो वो चल जाती है, बट वो कंटेंट को यू कैन नॉट टेक एज अ नॉलेज। मेरा ये मानना है, नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अब ये मुझे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जिस बिजनेस में मैं हूँ, जब मेरे क्लाइंट मुझे भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैं क्या बन जाएगा, नहीं मुझे ये चाहिए, तो मैं कहा ये है क्या, एंड दे हैव नो क्लू कि वो उन्होंने मुझे क्या भेजा।
0: ओके,
1: ठीक है। सो नाउ इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग मी एंड टीचिंग मी कि दिस इज व्हाट दे वांट। जिसको इस इंडस्ट्री का अता पता नहीं था, जिसने अपने ही रेस्टोरेंट को खोलने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर किया या कंसल्टेंट हायर किया, वो आपको एक महीने बाद सिखाता है। तो मैं आपको ये सुना कहानी, बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कैसे। तो मेरा एक बॉस था, जब मैं इंडिया आया तो मैंने कंपनी ज्वाइन की, उस कंपनी के बारे में बताऊंगा नहीं भाई आपको
0: जी।
1: तो उसने मुझसे पूछा ये क्या है, किसी बहुत ही स्पेशल महंगी सब्जी के बारे में पूछा जो उसने, और वो बहुत वो मेरा बॉस था
0: जी।
1: तो मैंने कहा ये इसको ये बोलते हैं, एस्पैरागस बोलते हैं। करे क्या होती है? मैंने कहा ये इंग्लिश वेजिटेबल है, बहुत अच्छी होती है, ऐसा है वैसा है। थैंक यू मनोज भाई, सिखाया मुझे आपने। चार दिन का वो मुझसे पूछता, मनोज भाई आज ना अच्छा पका नहीं एस्पैरागस।
0: अच्छा,
1: आज एस्पैरागस अच्छा पका नहीं है
0: जी।
1: तो मैं खूब हंसा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि सीख के सिखाओ मत,
0: बिल्कुल
1: सीख के बताओ।
0: बहुत ही एक फनी मोमेंट भी है आपका।
1: ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट हैं, ऐसे तो बहुत सारे फनी मोमेंट लाइफ के अंदर हमने किए हैं, देखे भी हैं, बहुत है देखे। मतलब मैं आई वॉज वेरी क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत ही बिगड़ा हुआ वो था मैं, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट।
0: अच्छा,
1: मैंने बहुत लोगों की रैंक की अपने हाथ काम करते वक्त।
0: अच्छा, तो सर आपका जैसे 26 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, आप बताइए।
1: 26 साल का ही है।
0: 26 साल का ही है, चलिए। सो हम तो कहते हैं इंशाल्लाह बहुत आगे और बढ़े, लेकिन इसमें कोई कोई पल ऐसा हो जो जहाँ पर आपने एकदम हार मान ली हो, कुछ ऐसा समय आया आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगे कि नहीं वो चीज़ जो मैंने सोची है वो नहीं हो पाएगी?
1: 3 बार।
0: अच्छा,
1: अपने करियर के स्टार्टिंग में जब मैं करना, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। वो टाइम हार्ड वर्क इसलिए था क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कमाना मजबूरी थी। लेकिन एक टाइम ना ऐसा लगा कि यार नहीं हो पाएगा ये मेरे साथ के लोग ना, उस टाइम पे ये आपके कॉल सेंटर का बड़ा वो चल रहा था।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: एंड दे वर पेड वेरी हैंडसमली, मतलब अब हम जहाँ 2-2.5 हज़ार पे काम करते वो 10,000 पे काम करते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे लगा यार मैं भी छोड़ दूँ नौकरी एक बार, मैं भी कहाँ फंस गया, क्या बाबूची उनके लगा हुआ हूँ, ना जिंदगी है, रात दिन सुबह शाम लगा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आई थॉट, तो मैं एक बार किसी बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू चला भी गया लाइन छोड़ के, मतलब टू बी रेस्टोरेंट मैनेजर
0: जी।
1: फिर मैं बैठा इंटरव्यू में तो उसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उससे बायोडाटा मांग लिया, बोला भाई 6 रुपये खर्च किए, लाया बायोडाटा दे, मैं जहाँ था वहीं ठीक हूँ। देन अगेन आई केम बैक एज अ शेफ। इमैच्योरिटी, मोर ऑफ इमैच्योरिटी दैट आई कुड सी। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि एक बार मैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए गया, शायद मुझसे कुछ गलती हुई। व्हेन आई वाज एट माय प्राइम आई टुक अ डिसीजन टू ओपन माय रेस्टोरेंट। बोलते ना सेलिब्रिटी शेफ बनने के बाद रेस्टोरेंट खोलने का मजा लगा था
0: जी जी।
1: तो वो एक विश्वास किया किसी के ऊपर, और फिर जब रेस्टोरेंट खोलने बैठे तो मन चला कि उसके पैसे नहीं थे और मैं खुद हो गया बैंकक्रप्ट। तो हुए, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप किसी ब्रांड को बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी एस्पैरागस का
0: जी,
1: वो ब्रांड आज इंडिया का टॉप ब्रांड है।
0: अच्छा,
1: और उस ब्रांड को बनाने वाला आदमी मैं ही हूँ, और मैं एक खुल के बोलता हूँ क्योंकि जब मैं आया तो वो ब्रांड वॉज नो वेयर। आज लोग उस बारे में बात करते हैं, आज की 400-500 करोड़ की वेरिएशन लगाते हैं, तो मुझे पता है वो ब्रांड कहाँ से कैसे पहुँचा,
0: ठीक
1: है। लेकिन जब वो ब्रांड बनना शुरू हुआ, जब उस ब्रांड पे पूरा काम किया, जब वो ब्रांड बन चुका था ना, तो मुझे ये बताया गया कि यार अब नए स्टाफ की जरूरत नहीं है, अब हम पुराने जो लोग थे ना थॉट प्रोसेस वाले वही कराएंगे। सो वो पुराने और नए लोगों के कॉम्पिटिशन में ना वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो बना के उस ब्रांड को खड़ा करने की थी वो ख़राब हो गई। और जब वो ख़राब होने लगी ना, तो आपका आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए, देयर हैज़ टू बी इमोशनल अटैचमेंट दैट यू डू, और हमें कौन करेगा मोटिवेट इस एज के अंदर, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार जिस ब्रांड को मैं खड़ा कर रहा था, एंड आई कुड हैव डन मच बेटर, शायद मैं इसको बीच में छोड़ चला गया बिकॉज आई वॉज मेड द सर्कमस्टेंसेस वेयर आई हैड टू कम एंड लीव द जॉब दो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी बिकॉज जो ओनर थे ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टॉप मी इन द कंपनी बट ओनर फर्क क्या होता है ना कि ओनर के साथ डेली काम नहीं करते
0: जी.
1: आप काम करते हैं टीम के साथ
0: बिल्कुल.
1: और अगर आपकी टीम के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे. मैंने कहा कि हर काम के लिए लोग करते हैं वेट एंड वॉच. हमारी जो इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री ये वेट एंड वॉच नहीं होती बिकॉज आप जो भी काम करते हैं ना उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप काम करते हैं वो करते हैं आप किसी भी गेस्ट का इमोशन बाय करते हैं. कोई भी गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में आया है वो अपना वो पैसे उसके हैं वो अपने इमोशन के एक्सपीरियंस लेने आया है. अगर आपने वहाँ गलती कर दी वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा. मैं क्यों चाहूँ कि जो भी गेस्ट मेरे रेस्टोरेंट में आ रहा है वो उसका एक्सपीरियंस गलत हो मेरी वजह से या मेरी टीम की वजह से या मेरे अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से. ऐसा क्यों नहीं है जो मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर कैलिबर है दिखाने का या करने का वो मैं हर उस किस को दिखाऊँ वो बोले यार दिस इज व्हाट इज अ प्लेस. ऐसे बनता है ब्रांड. तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप चाहते हैं बहुत कुछ करना बट आपके हाथ शायद नहीं हो पाते उस काबिल. अच्छा इसलिए मैंने रिटायरमेंट ले लिया जल्दी.
0: जी मनोज जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप हमें बता रहे हैं इस फील्ड के बारे में. सो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब जो एक सेलिब्रिटी शेफ का जो टैग है आपके साथ जुड़ा हुआ, ये किस तरीके से आपके पास आया या आप खुद इस तक पहुंचे, आपने कितनी मेहनत की, इसके बारे में हमें बताइए।
1: देखो मैं ना, मुझे ये पता भी नहीं कि ये टैग मुझे कब लग गया।
0: अच्छा,
1: मुझे नहीं आइडिया इसका, मुझे टैग कब लगा। आई थिंक 2014-13 में शायद चीज़ें शुरू हो गई थी, मतलब नॉट एज सेलिब्रिटी शेफ बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। वो सेलिब्रिटी शेफ बोलना क्योंकि मैं कुणाल, हम इकट्ठे काम करते थे, कुणाल मैं रणवीर इकट्ठे काम करते थे, तो वो तो हमें भी नहीं मानते कि ऐसा भी कुछ टैग होता है। वो किसी दिन किसी जगह छप गया और वही चीज़ रेप्लिका होती गई, सेलिब्रिटी शेफ हर पेपर के कटिंग पे या कहीं भी आपको इंट्रो किया। तो वो किसने दिया मुझे, आज मैं ढूंढ रहा हूँ मंदे को कि किसने मुझे टैग दिया। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, खुद ढूंढ रहा हूँ कि भाई तू कौन था जिसने मुझे सेलिब्रिटी शेफ बोला। मैं इस वर्ड से बहुत अहमियत नहीं रखता। सेलिब्रिटी शेफ बहुत अच्छी चीज़ होती है बनना, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं एक जो वर्ल्ड शेफ आई थी, मैं उससे बहुत बड़ा खुश हूँ। डॉक्टरेट में डिग्री से अच्छा वही है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका काम ही आपकी, जो डॉक्टर है वैसे शेफ है। तो आप शेफ बोले या सेलिब्रिटी शेफ बोले, शेफ बोलेंगे तो आई विल बी वेरी ग्राउंडेड। डोंट टेल मी सेलिब्रिटी शेफ, देन आई हैव टू बी, मेरे को अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छी गाड़ी चलानी पड़ेगी, टीवी पे आना पड़ेगा, 1 मिलियन फॉलोअर होना चाहिए मेरे पास,
0: बिल्कुल
1: है ना। वो मैं उसे पीछे हट चुका बहुत पहले। अब
0: मतलब आपका उसमें इतना,
1: मैंने 6 साल पहले आई हैव बिकम वेरी लो प्रोफाइल जानबूझ के।
0: अच्छा, हाँ। सो सर कभी ऐसा, मतलब आप बहुत हैंडसम लुक के हैं, तो कभी कुछ मॉडलिंग या इन चीजों में इंटरेस्ट रहा आपका, या कभी कुछ ऐसा मौका मिला करने के लिए? क्योंकि एक जब टैग जुड़ता है ना सेलिब्रिटी शेफ, तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे निकल के आती हैं, कभी कोई एड ब्रांड।
1: मैं आपको बड़ी एक ऐसी इंटरेस्टिंग बताऊं जो शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे बोली नहीं आज तक। जब मैं दुबई था तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम, मेरा बहुत टाइम था अपने लिए, तो मैंने बहुत अच्छी फिटनेस भी बॉडी बनाई थी, मतलब आई वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग एंड लकली आई वाज डूइंग टीवी। तो मैं जी सोनी पे काम कर रहा था, वहाँ पे आई डिड अबाउट 45-50 एपिसोड किए मैंने उसके ऊपर। तो जी के जो सीईओ थे मनोज जी, आई थिंक ही मेट मी एट वन ऑफ द इवेंट एंड मुझे बोला कि यार तू ना यू मेक योर पोर्टफोलियो एंड अप्लाई फॉर अ मॉडलिंग। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खाना पकाता हूँ। तू कर एक बार, तू कर
0: जी।
1: तो मैंने आई डिड माई पोर्टफोलियो, आई सेंड इट टू फ्यू, ही गेव मी सम कॉन्टैक्ट, मैंने उनको दिया। तो मुझे ना बड़े सारे ऐड के और मॉडलिंग के वहाँ लगे, तो मैं जब आने लगा तो मैं हंसने लगा कि मैं करूँगा मॉडलिंग। खैर जो भी है, तो आई डिड सम प्रिंट मॉडलिंग, जिसमें बैंक से ज़ारा है, दूध की कंपनी थी, सब चीज़ों की। इस बीच में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि आई वॉज इंजर्ड और मेरे को एक फ़ोन आता है कि आर यू अवेलेबल फॉर द शूट फ्रॉम दिस अप्रैल, टाइम था 2021 मुझे, 2021 का, फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स।
0: अच्छा,
1: ठीक है। और मैंने उनको ना बोल दिया, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि गेम ऑफ थ्रोन होता क्या है, ठीक है। और जब मैंने मैसेज दिखाया बेटी को, तो उसने मुझसे एक तरह बात नहीं की।
0: ओह माय गॉड,
1: 10 मिनट का फाइटिंग शॉट ऑन डेजर्ट विद द मेन एक्टर, वो सपोज टू बी मी, और मैंने उसको 1 मिनट बोला नहीं मैं आई एम नॉट फ्री। तो चीज़ें हुई भी, बट आई डोंट टेक थिंग्स एज दैट, जो है वो है, काम आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो
0: जी जी जी। मतलब आप थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल टाइप के भी है ना, कि आपको नहीं पता वो चीज़ें क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में भी नहीं पता था।
1: नहीं, नहीं तो मैं बिहार के लड़के को क्या पता होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या होता है, आप उसे पंचायत क्या बता देंगे, पंचायत क्या भी।
0: और जैसे आप बोल रहे हैं कि जो ये सेलिब्रिटी टैग है आपको पता ही नहीं है कैसे दे दिया, किसने दे दिया,
1: मुझे नहीं पता
0: बिल्कुल। यही तो खासियत है ना फिर आपकी,
1: एक तो आप सेवा करो ना, लोगों की सेवा करो आप सोसाइटी को दो, जिससे मेरी एनजीओ चलती है,
0: बिल्कुल,
1: गरीब बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए वाइफ करती हैं,
0: अब
1: वहाँ करो ना जहाँ पे आपको मन शांत रहे, जहाँ चीजें देख के लगे कि यार हमने कुछ सोसाइटी को वापस दिया है,
0: बिल्कुल
1: लाके।
0: मतलब आप इस चीज के अलावा आपका एनजीओ भी है और बहुत बच्चों की आप सेवा भी कर रहे हैं।
1: जब मैंने गरीबी देखी तो किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा
0: जी,
1: तो हमें लगा कि जब हम कुछ लायक हो जाएंगे तो हम शायद 2 बच्चों की किसी वक्त की रोटी खरीद लें या दे पाएं, तो शायद थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी खुशी मिलेगी हमारे को।
0: बिल्कुल, और अगर ईश्वर ने इस काबिल बनाया तो डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत से लोग मतलब सोचते भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने सोचा और आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, वेरी इंस्पायरिंग।
1: थैंक यू मैम।
0: सो मनोज जी, आप बहुत से ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से इन सबको मैनेज किया जाता है? मतलब रेस्टोरेंट्स और बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो
1: हाँ, तो बेसिकली अभी करंटली जो एक कंपनी है फर्टिनिटी फूड्स का मैं CEO
0: जी,
1: इस बिना भी ईयर नाउ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था इनके साथ, मेरे दोस्त ही हैं अच्छे, वेरी यंगस्टर, वेरी डायनेमिक पीपल, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका एक ब्रांड है ज़ोका, इन्होंने 87-90 के करीब खोला था, देन दे हैड अ प्लान, सो व्हाट दे डू इज दे क्रिएट अ ब्रांड एंड दे सेल द फ्रेंचाइज, और इसके बाद जब मैं ज्वाइन किया तो आई थिंक दे ऑलरेडी हैड बिल्ड अ ब्रांड का है, तुलसी है, नमई है, फायर अप है, उसको हमने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब इट केम आउट रियली वेल, तुलसी हैज बीन डूइंग फिनोमिनली वेल, फायर अप इज डूइंग वेरी गुड, नमई इज डूइंग वेरी गुड, अब तुम तुलसी को लेके जा रहे हैं इंडिया के बाहर, नमई ओपनिंग इन US, नाउ ओपनिंग ज़ोका इन US, नाउ वी आर ओपनिंग नमई पैन इंडिया, तुलसी पैन इंडिया, ये सारे ब्रांड को मैं मैनेज करता हूँ विद अ टीम, एंड अच्छा था, मतलब दिस इज एक्सपर्टीज, दिस इज नॉट अ वेरी बिग रेस्टोरेंट, 70-80 का रेस्टोरेंट है, छोटे रेस्टोरेंट चलते अच्छे हैं, लो कॉस्ट हैं, तो उतना फर्क है नहीं, मतलब आई कीप एंजॉयिंग व्हाट आई डू,
0: मतलब इंडिया में तो बहुत आपने सेटल कर दी चीजें, अब बाहर उन्हें ले जाने का भी प्लान,
1: अब US साइन कर चुके, काम शुरू हो गया
0: जी, जी, हाँ, जी जी जी, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। सो इसमें कैसे ये जैसे कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी मेंटेन किस तरीके से आप लोग करते हैं?
1: देखो मैम, ये ना ये बहुत ही बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है,
0: अच्छा
1: समझाने के लिए, तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेसिपी होती है, आप पहले व्हेन यू मेक मेन्यू, तो मेन्यू आने के बाद आप देखते हो कि किसके लिए बेस्ट शेफ कौन होगा, देन आई हैव अ कॉर्पोरेट शेफ, देन आई हैव अ रीजनल शेफ, जो सडन यू नो प्री ओपनिंग से लेके पोस्ट ओपनिंग तक उनके साथ खड़े हुए ट्रेनिंग करते हैं, देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेसिपीज, एंड देन वी कीप डूइंग लॉट ऑफ ऑडिट्स, मतलब कॉर्पोरेट टीम्स कीप मूविंग आउट, वी कीप वेरी क्लोज आई ऑन कमेंट्स, कि जो कमेंट आते हैं रिव्यूज़ गेस्ट के, चाहे जोमेटो पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे वो कमेंट्स कार्ड पे हो, वी कीप थिंक क्या होता है,

0: तो
1: 100 खुलते हैं 110 बंद होते हैं।
0: बिल्कुल, तो मतलब इसमें आप क्या सलाह देंगे हमारे
1: सलाह ये दूंगा कि भैया अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो प्लीज उससे खोल के ना घर की रोटी ना चलाएं।
0: ओके,
1: यू शुड हैव अनदर बिजनेस टू रन योर फैमिली, रन योर हाउस। रेस्टोरेंट खोले, हायर अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट। आपके पास साल 6 महीने का फंड होना चाहिए टू इन्वेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट कि आपने आज खोला आज ही पैसे कमा रहे हैं लेके चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू शुड हैव अ गुड बैकअप, क्योंकि जो पैसे आप लगा रहे हैं वही आपके हार्ड अर्न मनी है। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है फंड, उसके इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और थर्डली आप कहाँ खोल रहे हैं
0: जी।
1: आपकी जेंट्री क्या है, आपने क्या उस जगह के बारे में लोगों से पता किया कि वो लोग खाते क्या हैं, क्या है, कैसे है। हमें तो जगह मिलती है एंड यू जस्ट ओपन द रेस्टोरेंट। आजकल तो हिंदुस्तान में रियल एस्टेट हैज़ बिकम अ बिगेस्ट स्कैम। आप ये मेरा दुकान खोलिए मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है। अब वो पैसे तो दे देगा दुकान खोलने के, लेकिन वो वहाँ फुटफॉल नहीं है, तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट वो कौन देगा फिर?
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री।
0: और जब तक मतलब साइड बाय साइड आप इसे कर सकते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। एक और बात मेरे जहन में ये आ रही है कि हमारे सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे, लाइक शिल्पा शेट्टी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इन लोगों ने भी अपने रेस्टोरेंट्स की चेन स्टार्ट की हुई है। सो क्या सेलिब्रिटीज का इसी में इंटरेस्ट ज्यादा क्यों आता है, इसका क्या रीजन है?
1: देखो इंटरेस्ट तो शायद इंटरव्यू तो ये बोलते हैं कि हमें खाने का बड़ा शौक है। अब सेलिब्रिटी तो योगा की इतनी बड़ी टीचर हैं तो खुद ही खाना कम खाती हैं, ठीक है, फेम है, लोग अपना फेम यूज़ करते हैं। आई थिंक सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट बेस्टियन इज डूइंग वेरी गुड। सचिन सर का रेस्टोरेंट क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ ही हैज़ अ रेस्टोरेंट, वो तो गॉड ऑफ है तो उस पर तो मैं कमेंट कभी नहीं करूँगा। विराट का रेस्टोरेंट है वनट कम्यून, आई थिंक कुछ रेस्टोरेंट के हैं जो दे मैनेज बाय देमसेल्फ, बाकी दे रन ऑन फ्रेंचाइजी। सो आई एम श्योर विराट एज अ बिग नेम, वन इट कम्यून उसकी जर्सी का नाम है, वन इट कम्यून पे एनीबडी कैन पुट मनी ऑन हिम, सो दे गेट ऑल इन्वेस्टर्स, दे गॉट ऑल फ्रेंचाइजी, सो दे मेक ऑल मनी आउट ऑफ दिस, दे डोंट ऑपरेट, दे डोंट ऑपरेट बींग 100%। आई थिंक मुझे नहीं पता विराट कोहली अपने रेस्टोरेंट में आखिरी बार खाना खाने कब गया होगा।
0: बिल्कुल
1: अभी अब देखें तो बेस्टियन बॉम्बे था सिल्वर शेट्टी का, गॉट क्लोज फॉर फ्रॉड, 55 करोड़ का फ्रॉड हुआ उस रेस्टोरेंट में।
0: अच्छा
1: तो क्यों हुआ ये मैं नहीं बताता ना, आई एम वन टू, ठीक है लोग खोलते हैं चलता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि अजीत सिंह ने एक रेस्टोरेंट खोला है कैकड़ा में जो 40 रुपये का खाना बेचता है। That's a genuine celebrity who has done this.
0: जी।
1: चाहे गौतम गंभीर हो।
0: अच्छा।
1: जब वो थी सांसद तूने एक कैंटीन खोला जहाँ पे 10 रुपए में खाना मिलता है।
0: 10 रुपए में बिल्कुल।
1: आपने मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, आप रेस्टोरेंट खोलें, बिजनेसमैन है उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक वी ऑल फील गुड अबाउट थिंग्स। अभी युवराज सिंह ने रेस्टोरेंट खोला गुड़गांव में, उसी उनका नाम लिया गया, पैसे किसी और लगाए, बट रेस्टोरेंट युवराज सिंह के नाम पर चलता है, बट व्हेन यू गो एंड सी द बिजनेस इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट।
0: जी।
1: सो मैंने समझा ना कि ये बिजनेस उतना आसान है नहीं। अब सेलिब्रिटी है, एट योर नेम इट माइट क्लिक एट सम टाइम, बट टू सस्टेन द रेस्टोरेंट यू रियली नीड टू हैव अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट कॉन्सेप्ट।
0: जी, तभी वो एक मुकाम तक पहुंचेगा।
1: एंड अ ग्रेट प्रोडक्ट।
0: बिल्कुल।
1: अगर अच्छा खाना अच्छा ड्रिंक नहीं है तो
0: हाँ फिर तो कोई क्यों ही जाएगा। बिल्कुल। और सर अभी जैसे आपने रेस्टोरेंट्स का बताया, बिजनेस की भी बात हो गई यहाँ पे, अब अगर किसी को एक्चुअल में शेफ बनना है, तो हमारे लिसनर्स अभी सुन रहे हैं काफ़ी, हो सकता है इसमें कई लोग इसमें करियर ढूंढ रहे हों, सो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करें कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं कुछ ऐसे, और क्या रास्ता है 12th के बाद, क्या किस तरीके से वो जाएं इसमें?
1: देखिए बेस्ट कॉलेज का तो मैं किसी के लिए नाम नहीं लूँगा, आई थिंक जो इंडियन गवर्नमेंट के IHM इंस्टीट्यूट्स हैं पूसा वाले, इनके साल में एक बार इसकी इंटरेस्ट होती है, पैन इंडिया इनके इंटरेस्ट होते हैं, अच्छे सारे अच्छे कॉलेज ही हैं, फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, ग्वालियर, सब अच्छे कॉलेज हैं। डिपेंड ये नहीं करता किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। ऐसे भी कॉलेज हैं जैसे औरंगाबाद IHM है और महंगे महंगे कॉलेज भी हैं। आई थिंक शेफ बनने की इंडस्ट्री में जो भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं ना शेफ बनने के लिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैशनेट है। आई थिंक जो हमारे टाइम में नहीं था, जो इनके टाइम पे है, कि हमारे टाइम पे शेफ वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, दिस टाइम दे आर रिकग्नाइज्ड, ऑलवेज दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट एज अ बिग करियर बूस्ट। मतलब जब से टीवी शो आए हैं और सब शेफ बड़े बने हैं, तो इनके पास तो बहुत बड़ा करियर है, और जिस लेवल के रेस्टोरेंट्स इंडिया में खोल रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं या इंटरनेशनल चीन इंडिया हमारी, स्कोप बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। बट मेरा एक मानना है कि आप शेफ बने, ये करियर बहुत अच्छा है, बहुत ही हार्डवर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा बताता है। मतलब यू नो खाना पकाना अपने आप में एक कला है,
0: कला
1: है। मैं तो बहुत इसको एंजॉय करता हूँ। पेशेंस रखें, अपने बेस को बहुत क्लियर करें। आजकल लड़के बहुत जल्दी बहुत बड़ी पोजीशन के लिए सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ, पहुँचें बिल्कुल पहुँचें, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करें कि आप जब वहाँ पहुँचें तो आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग हो।
0: जी,
1: क्योंकि आगे पहुंचने में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पहुंचने के बाद जो कंपटीशन बढ़ता है, 10,000 से 1,00,000 की सैलरी बहुत आसान है, 1 से 2 लाख सैलरी बड़ी आसान है, 2 से 3 लाख सैलरी थोड़ी डिफिकल्ट है, 3 से 4 लाख सैलरी बहुत डिफिकल्ट है।
0: जी।
1: तो हर उस मुकाम में पैसे बहुत हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, इंडियन शेफ को तो बहुत डिमांड मार्केट में।
0: अच्छा।
1: मतलब आपको बताऊं कि इंडियन शेफ्स हैज बिकम द टॉप प्रायोरिटी फॉर द वर्ल्ड, मतलब उनसे टैलेंटेड बंदा, हार्ड वर्किंग बंदा वर्ल्ड में कोई नहीं है.
0: अच्छा.
1: हाँ जी.
0: और ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक ज्यादा डिमांड है.
1: बहुत डिमांड है.
0: ओके. सो सर, खाने की भी यहाँ पे बात हुई, शेफ के बारे में आपने बताया और डिमांड करी. आपका अपना फेवरेट कुजीन कौन सा है?
1: मेरे दो हैं. मेरे बेसिक घर वाला जो है वो दाल चावल चोखा, बिहारी हूँ तो बिहारी वाला खाना, दाल चावल चोखा, आलू की भजिया देसी घी डाल के. और व्हेन आई गो टू रेस्टोरेंट आई वांट टू ईट फूड, जापानीज फूड.
0: अच्छा.
1: आई लाइक जापानीज फूड अ लॉट.
0: और आप ऐसे घर में बहुत सी बार ऐसा तो होता होगा आप बनाते हैं, या लास्ट कब बनाया था आपने कुछ?
1: लास्ट कब बनाया था मतलब महीने में एक बार,
0: कभी फैमिली को खुश करने के लिए?
1: नहीं, फैमिली महीने में एक बार, महीने में तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट भी और भी रेस्टोरेंट हैंडल करता हूँ. तो अभी रेस्टोरेंट हैंडल कर रहा हूँ मैं दिल्ली में ही है, आईवरी नाम से, उसका नया मेन्यू है. उसके नए मेन्यू का ट्रायल भी मैंने खुद ही करवाया था, उसको कुछ दिन में लॉन्च है.
0: अच्छा.
1: तो अभी मैं यहाँ से जाके वहीं खाना पकाने वाला हूँ.
0: अच्छा.
1: सो मैं महीने में एक बार अपना हाथ पक्का किचन में ले जाता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैं
0: जी
1: व्हाट्स माय बैकग्राउंड.
0: बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत अच्छी बात आपने कही.
1: जरूरी भी है ना, वरना हाथ नहीं चलेगा फिर.
0: जी जी जी. और सर, आपका फ्यूचर विजन क्या है?
1: मेरा तो मैंने ना अभी अभी एक मार्केटिंग कंपनी खोली अपनी.
0: अच्छा.
1: मैंने अपनी एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट. मेरा लोगों ने मैंने देखा लोग ना आजकल एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे रील डालनी डालनी.
0: बिल्कुल.
1: तो मैं कहा मैं भी ये काम खोलता हूँ.
0: अच्छा.
1: तो हमने अभी 4 महीने पहले कंपनी खोली है कथा लैब के नाम से, एंड वी आर डूइंग सोशल मीडिया फॉर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉर्पोरेट्स. और मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने समझा कि जो बाकी लोग सोशल मीडिया संभाल रहे हैं उनके पास एफ एंड बी का एक्सपीरियंस नहीं है. मतलब वो कर रहे हैं लेकिन दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस एफ एंड बी. मेरे पास क्या है कि मैं वो एक्सपीरियंस है तो मैं शायद वो काम अच्छा कर पाऊंगा. और मैं अब वैसे कंपनी की ओनर मेरी बेटी है, मैं उसके ब्याह पे जॉब करता हूँ उसी कंपनी में. ठीक है. मतलब उसके ब्याह पे काम करता हूँ मैं. मेरे दो कोफाउंडर और भी हैं. तो ये मैंने स्टार्ट किया, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट. प्लस फर्टनिटी के जो भी नए ब्रांड चल रहे हैं, तुलसी वगैरह वगैरह लॉन्च के लिए रेडी हैं, उसके लिए मैं कर रहा हूँ. इस साल शायद मैं अपना ब्रांड भी लेके आऊँ.
0: अच्छा.
1: हाँ, शायद इस साल के मिड तक मैं अपना ब्रांड भी लेके आ रहा हूँ.
0: वाओ, हमें वेट रहेगा.
1: बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत ही इतिहास इतिहास को वापस लेके आने की थोड़ी सी कोशिश है. मतलब इतिहास तो नहीं बोलूंगा लेकिन
0: मतलब मुझे लग रहा है कुछ आपके अपनी साइड का,
1: लेकिन वेज. हाँ, हाँ, हाँ वेज. तो मेनली आप मान लीजिए बनारस, लखनऊ और बिहार का कुछ कुछ लेके आ रहा हूँ मैं.
0: अमेजिंग. हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा सर
1: जी.
0: और हम तो गॉड से यही प्रे करेंगे कि जल्दी ये आए. और
1: नहीं नहीं, अभी बेसिकली नाम हम सब रजिस्टर हो गया है, सब पे काम चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली मेरा जो को फाउंडर, मेरा जो पार्टनर है, ही मेट एन एक्सीडेंट. तो उसका आई एम वेटिंग फॉर रिकवरी टू हैपन. आई थिंक मई जून जुलाई तक आई विल बी एबल टू स्टार्ट माई फर्स्ट रिटेल. सो बहुत छोटी सी जगह बनाएंगे. और जो असली चाट, तो बेसिकली इज अबाउट चाट. जो चाट खाने की मिलती है आपको बनारस में या बिहार में या
0: लखनऊ में,
1: तो वही के कारीगर, वही के पत्तल में, वही के सकूरे में सब कुछ, इवन चाय बनेगी अंगीठी के अंदर. तो वी वॉन्ट टू गेट दोस एरा ऑफ 1780s का एरा वापस लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग देखेंगे कि पहले कैसे खाना बनता था.
0: बिल्कुल.
1: लोग खड़े हों, उस चीज़ को बनते हुए देखें, पेशेंस रखें, ताकि चीज़ अच्छी है. और ये सबके लिए है. दिस इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दिस इज़ फॉर एवरी वन हु इज़ ऑन द रोड. चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो करोड़पति लेडी हो, बस ये सबके लिए है यहाँ पे ऑप्शंस.
0: अमेजिंग कंसेप्ट, वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा सुन के कि कुछ ऐसा आने वाला है. बिकॉज NCR में मुझे ऐसा लगता है जो ये चाट है ना वो कुछ अलग ही कर देते हैं. छोले प्याज सब कुछ डल जाता है, वो एक फील खत्म हो जाती है.
1: मैं ना मेरे बचपन की कुछ टेस्ट मेरे अभी तक दिमाग में हैं जो मैं शायद बस बिहार जी जा गया नहीं है, खा नहीं पाया है. और मैं अब चाट नहीं खाता. आई डोंट ईट चाट.
0: अच्छा.
1: मतलब मैं खाना भी नहीं खाता, चाट तो छोड़ दिया. ठीक है. तो बेसिकली मुझे लगा कि शायद वो एक चीज है जहाँ पे हिंदुस्तान को वो चीज़ से आप अलग नहीं कर सकते
0: जी.
1: और मुझे लगता है कि मैं शेफ होने के बाद भी इतना छोटा सा काम क्यों खोल रहा हूँ. मुझे लगता है कि जहाँ भीड़ है वहाँ खाना है, और अच्छा खाना जहाँ है वहाँ फिर से भीड़ आएगी.
0: बिल्कुल.
1: ठीक है. तो भीड़, अच्छा खाना और वो पुराना इतिहास दिखाना का जो संगम है वो आएगा इलाहाबाद से, जहाँ मैं रहने वाला हूँ.
0: बिल्कुल, बहुत मतलब ये सुन के बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि आप एक ऐसी चीज लाने वाले हैं और हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा।
1: नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे आपको,
0: बुलाएंगे उसके बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब एक लास्ट में, मतलब लास्ट तो नहीं कहूंगी, बहुत मजा आ रहा है, मन करे ये चलती रहे बातें। बहुत डिफरेंट टॉपिक है आज। आज बहुत ही आप जैसे आपने समय निकाला हमारे लिए, क्योंकि अभी तक मेरे शो में यहाँ पे म्यूजिशियंस, मॉडल, फैशन डिजाइनर, इवन डांसर्स आल्सो, तो सब आ चुके हैं, बट सेलिब्रिटी शेफ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। शेफ, यस। तो सर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे जो रियलिटी शोज हैं, तो अभी हमने देखा मास्टर शेफ ही आई थिंक है ना शेफ के लिए, तो आपको क्या लगता है ऐसे और शोज होने चाहिए, क्योंकि सिंगिंग डांसिंग के तो हम बहुत देखते हैं, नहीं होने चाहिए? अच्छा, ऐसा क्यों?
1: वो रियलिटी में रियलिटी नहीं है ना।
0: बिल्कुल, अच्छा, मतलब वहाँ भी सेम ही चीज है, जो म्यूजिक डांस में वही उधर भी है।
1: वो रियलिटी नहीं होती है।
0: अच्छा,
1: इट्स जस्ट अ शो, एंजॉय लाइक अ नॉर्मल डेली शो।
0: जी,
1: क्या था? डेली शो,
0: डेली शो, मतलब नॉर्मल टीवी सीरियल की तरह हमें उसे एंजॉय करना चाहिए ज्यादा।
1: मैं पार्ट रहा हूँ चीज का, इसलिए मुझे पता है,
0: तभी मैंने आपसे पूछा ये।
1: मैं इसके पार्ट रहा हूँ
0: जी,
1: तो इसके ऊपर मैं बहुत चीजें नहीं बोलूंगा।
0: हाँ जी,
1: मतलब मेरे दोस्त यार हैं, वो अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझे रिमांड पे ले लेंगे।
0: जी जी जी, चलिए ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं। और सर आपको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं, हमें उनके बारे में बताइए।
1: नहीं, मुझे ना इसके बारे में बात करने में बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि जो भी अवार्ड मिले, कई फ़ोन आया सर आपको अवार्ड मिल रहा है, मैं दे दे भाई। तो मैं बॉम्बे था तो मुझे किसी ने फिर से फ्यूचर अवार्ड दे दिया, मेरे साथ दो तीन बड़े शेफ भी थे, एक हरपाल था, सारांश था, बहुत अच्छे लोग थे। तो मुझे आया कि सर आपको ना, वी वांट यू टू कम एंड टू बॉम्बे टू टेक द अवार्ड, दीपा पाटिल का था अवार्ड। तो ना मुझे क्यों दे रहे फिर से फ्यूचर में, तो मैं तो नहीं सर, आप तो अभी यू आर कमिंग आउट रियली वेल, पीपल नो अबाउट यू। आप 2014 की बात है, मैं रेस्टो खोल रहा था अपना, तो मैं कहा ठीक है अवार्ड दे देते हैं अवार्ड, अगर कोई अवार्ड दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेने में कोई दिक्कत होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: एज लॉन्ग एज आपने पैसे नहीं पे किए तो।
0: जी,
1: फिर मैं दिल्ली आया तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है, मैंने कहा ठीक है जी, कहाँ मिल रहा है, मैं कहा यहाँ मिलते हैं। तो मैं इसके बारे में इसलिए बात नहीं करता कि रिकग्निशन, मुद्दा ये कि जितने भी अवार्ड मिले उसमें लोगों ने बुलाया आपको और अवार्ड दिए, तो जब आपको अवार्ड मिल रहा है ना तो आपको लगता है कि हाँ शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा
0: जी,
1: जिसके लिए आपको लोग फोन करके बुला रहे हैं अवार्ड लेने के लिए। मैंने कभी किसी से अवार्ड नहीं मांगा कि भाई मुझे अवार्ड ला के दो तो मैं आऊँगा। मतलब ठीक है, वो अवार्ड आएगा, एक दिन आप फोटो लेके डालोगे इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे या अपने उस पर, उसके बाद वो इट्स अ शो मोमेंटम एट योर हाउस, नोबडी इज गोइंग टू लुक एट थिंग्स। मेरे घर पे तो मेरे अवार्ड दिखते भी नहीं मेरी बीवी के सामने, मतलब शी हैज़ गॉट सो मच अवार्ड। तो ठीक है, मतलब हाँ, यू फील गुड, बट जैसे होता है, मतलब द वे इट कम्स आई टेक इट, आई डोंट फील वेरी गुड अबाउट द सेम, मतलब I feel good about same, but ऐसा नहीं कि मुझे हर साल अवार्ड मिल रहा हो या मैं यहाँ जाऊँ उसको जिसने याद किया दे दिया दे लिया हमने अवार्ड।
0: जी, बट आपकी इन बातों को सुन के लग रहा है कि आप सच में बहुत ही जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने जैसे बताया आप बिहार से हैं, तो वहाँ के लोग हम देखते हैं बिहार यूपी के बहुत ही ऐसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा उन्हें चमक धमक का शौक भी नहीं होता।
1: नहीं, मुझे तो है।
0: अच्छा।
1: मुझे है, अब हो गई है
0: जी,
1: अब हो गई है। अब ना अभी क्या है, अब बच्चे बोलते हैं, बेटी बोलती है, अब जा रही है बहंगे जाना, ये बहंगे जाओ, ये बहंगे जाओ, ये घड़ी पहनो, ये लेके जाओ, तो अब लगता है हाँ यार ठीक,
0: मतलब वो आपको स्टाइल करते हैं।
1: नहीं शायद मैं खैर आई वॉज डूइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर, तभी बना था, मैं मॉडलिंग के भी कर नहीं पाता, बट ठीक है, अच्छा लगता है करने में।
0: नहीं बिल्कुल, जैसा बच्चे बोले फैमिली बोले वो तो जरूर उनके लिए करना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: सो आपने अभी अपनी वाइफ का भी जिक्र किया, सो उन्हें कैसा लगता है कि उन्हें भी शौक है खाना वाना बनाने का? अच्छा,
1: शी इज बेटर कुक देन मी।
0: अच्छा,
1: शी इज बेटर देन, शी इज बेटर देन मी,
0: मतलब वो आपसे ज्यादा बढ़िया।
1: हाँ, अच्छा खाना पकाती है। मैं रेस्टोरेंट का खाना पकाता हूँ जिससे, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं वो कमाता हूँ जिससे घर का घर चलता है
0: जी,
1: वो खाना पका जिससे घर वाले खुश होकर
0: खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर अब लास्ट में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस शो को सुन रहे हैं उसमें हर एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे?
1: क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं क्या मैसेज दूँ लोगों सुनने के लिए। जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी को करियर बनाना है तो आई एम श्योर आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, जो यंगस्टर जिनको हु वांट टू परस्यू, हु वांट्स टू गो एंड डाइन एट द रेस्टोरेंट, अंडरस्टैंड कि जब हम बोलते हैं कि जल्दी ला खाना ये नहीं है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है.
0: जी.
1: तो वी एज अ गेस्ट शुड बी एबल टू एड्रेस देम वेरी नाइसली. वी शुड बिहेव नाइसली. रेस्टोरेंट में जाके वी आर नॉट किंग एंड देयर आर नॉट आवर स्लेव्स. मेरा ही मानना है हिंदुस्तान में बहुत कमी है, हिंदुस्तान में बहुत कमी होती है, हिंदुस्तान में लगता है वी आर किंग एंड देयर आर स्लेव्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्डली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. खाना खाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट जाइए, रील कम देखिए.
0: जी.
1: रील रील को अपना वो ना बनाए, क्या बोलते हैं, ट्यूटर.
0: जी.
1: ठीक है, रील इज नॉट ए ट्यूटर. एंड आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ स्टाफ ऑन वेब वेर यू कैन अंडरस्टैंड एंड लुक एंड सर्च फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फूड कि क्या खाना कहाँ से आया है. मेरे लिए शेफ के लिए इतना ही बोलना काफ़ी. मैं किसी को क्या ही बोलूँगी क्या क्या करें क्या नहीं करें.
0: नहीं नहीं, आपने जो ये बात बोली है ना कि रेस्टोरेंट में जाके एक अच्छा बिहेव, मतलब देखा जाए तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने आप को, किंग में नहीं समझे, ये झलक आता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त निकाला और इतना हमें इंस्पायर किया आपने. सो थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी.
0: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट के साथ. तब तक

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइफ।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ, एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो 107.8 एफएम। नाउ दिस शो इज रियली स्पेशल फॉर अस बिकॉज़ यहां पर हर बार हम एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी लेकर के आते हैं आपके लिए, जो अपनी लाइफ की यात्रा में से चीजें हमें बताते हैं, स्किल्स हमें दे करके जाते हैं, एक नई दुनिया का एक्सपोजर हमें मिलता है हर बार, क्योंकि एक नए गेस्ट होते हैं, हर बार एक नई बात होती है, नया डोमेन होता है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नरेश ठाकुर। नरेश ठाकुर हैं सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप के फाउंडर एंड थिएटर एक्टर हैं, खुद बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, फरीदाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं, थिएटर को समझेंगे, अभिनय को समझेंगे, वे तमाम चीजें हम यहाँ पर जान रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा नरेश जी का। नरेश जी स्वागत है
2: जी। नमस्कार, धन्यवाद।
1: मैं सबसे पहला प्रश्न ही पूछना चाहूंगा नरेश जी, थोड़ा सा अपने डोमेन के बारे में हमें बताइए, आप एग्जैक्टली करते क्या है?
2: एक्चुअली मेरा क्या है कि सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप है और रंगमंच में ही कार्यरत हूँ मैं, और काफी समय से 10 वर्ष हो गए मुझे आगे करते हुए, और अभी हाल ही में मैं अपने ग्रुप में काम कर रहा हूँ और फुल टाइम थिएटर करता हूँ मैं।
1: ओके, सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे लगा थिएटर करना चाहिए?
2: थिएटर की कहानी मेरी कुछ इस प्रकार है कि बचपन में रामलीला का बहुत शौक था मुझे, और मेरे गली में रामलीला होती थी, तो तकरीबन 15 वर्ष पहले की बात है। तो रामलीला होती थी तो उसमें मुझे हनुमान बनाया जाता था, और हनुमान का किरदार मैंने किया था उस समय। तो हनुमान का किरदार जो किया था, आप सोचेंगे नहीं कि किस प्रकार मेरी कॉस्ट्यूम थी उस समय, और मैं आपको बता ही देता हूँ। उस समय मात्र एक, आप कह सकते हैं गमछा, लाइक साफी भी कहते हैं जिसे, वो और एक गधा के साथ मैंने वो किरदार निभाया था, और उस किरदार का इतनी अहम भूमिका रही मेरे जीवन में कि अभी भी मैं बड़ा होकर बालाजी का भक्त हूँ, और उनकी कृपा दया दृष्टि से बड़े होकर अभिनय के क्षेत्र में भी मुझे अभी भी 3-4 जगह हनुमान के किरदार मिल चुके हैं।
1: तो रामलीला करते थे आप, रामलीला करने के बाद आपको लगा कि ये एक चीज है जो आपको करनी चाहिए?
2: जी, उसके बाद मैंने स्कूल में भी मिमिक्री की शुरुआत की, और मेरे प्रिंसिपल थे दुलीप चंद अग्रवाल जी, अग्रवाल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी में, तो उनकी मिमिक्री की मैंने। पहले स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही, और उन्हीं के समक्ष मैंने प्रस्तुति दी तो उनको काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज अटेंड किया, कॉलेज में देखा, पता चला यूथ फेस्टिवल के बारे में, तो कॉलेज कॉम्पिटिशन होता है, यूथ फेस्टिवल जो होता है उसमें सारे कॉलेज कंपटीशन करते हैं ड्रामा में, तो मैंने नेहरू कॉलेज से देखा, नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहां से पता चला मुझे कि थिएटर रंगमंच भी ऐसी कोई चीज होती है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं।
1: जी जी, अगर मैं पर्सनल लेवल पर यहाँ पर बात करना चाहूँ तो नरेश ठाकुर के जीवन में क्या बदला है रंगमंच से?
2: रंगमंच अगर नरेश के जीवन की बात करो तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ही अपोजिट हो चुका है नरेश का जीवन। कहीं ना कहीं नरेश जो पहले था रंगमंच से पहले, काफी चिड़चिड़ापन अंदर रहता था, काफी गुस्सा आता था, चीजों को सहन शक्ति करने की मतलब कि इतनी इच्छुकता नहीं थी, कि मतलब कि देखते ही गुस्सा आने लगता था, किसी चीज को कंट्रोल नहीं होता था अपने ऊपर। सबसे बड़ी बात कंट्रोल अपने ऊपर होना आ गया है, और दूसरी बात कहूँ तो मैं, रंगमंच जो है आपको जीवन जीना सिखाता है, ये नहीं कि आपको रंगमंच में आप कार्यरत हैं तो आप ओनली एक्टिंग करेंगे या थिएटर करेंगे या फिर ऐसे एक्टिंग सीखकर आप फिल्मों में काम करेंगे या सीरियल में काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार और बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, टीवी सीरियल फिल्मों में काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने निजी जीवन में काफी बदलाव देख सकते हैं, जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे परिवार को भी इस बात पर गर्व है कि जो नरेश थिएटर करने से पहले जो नरेश था, थिएटर करने के बाद जो नरेश है, उसमें काफी बदलाव है।
1: जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि थिएटर तो सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनको एक्टर बनना है, बड़े पर्दे पर जाना है।
2: ये तो जी गलत फहमी है लोगों में कि भाई ओनली एक्टिंग के लिए थिएटर करना चाहिए या बड़ा स्टार बनने के लिए थिएटर करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत ही होगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपकी मन की इच्छा है कि आपको बड़ा स्टार बनना है या बड़ा एक्टर बनना है तो थिएटर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इस सोच के साथ आप एक सोच भी साथ में लेके चलें, आप अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए रंगमंच थिएटर, आप इससे जुड़ें और जुड़कर आप अपनी काफी मतलब अंदर की जो बुराइयां हैं, जो आपकी सहन शक्ति है, उसको आप अपने अनुसार धारण कर सकते हैं।
1: बहुत उम्दा बहुत उम्दा। उम्मीद करूँ दोस्तों यहाँ तक नरेश ठाकुर जी से जितनी हमने बात करी है उतनी आपको समझ आई है और आपको मजा आ रहा है संवाद सुनने में। तो एक काफी मजे हुए, काफी एक्सपीरियंस, काफी अनुभवी एक थिएटर कलाकार हैं, रंगमंच से जुड़े हुए एक कर्मी हैं जो रंगमंच की पूजा करते हैं, उनसे आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहे हैं यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ, आप लोग जुड़े हुए हैं 107.8 FM के साथ। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर नरेश ठाकुर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रंगमंच की, थिएटर की, अभिनय की, कैसे बना जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। अभी तक हमने जाना है नरेश के बारे में कि वो क्या करते हैं एग्जैक्टली। आइए थोड़ी आपकी बात करते हैं कि आप कैसे बन सकते हैं। नरेश, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा थिएटर के बारे में कि थिएटर अगर किसी को शुरू करना है, पहले चीज तो बताइए कैसे शुरू किया जाए।
1: देखिए, कहीं ना कहीं आपको पहले ये जानना होगा कि आप जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ रंगमंच होता भी है कि नहीं। अगर होता भी है तो आपको पहले वहाँ जाना चाहिए और वहाँ के माहौल को देखना चाहिए। जो आपको वहाँ के डायरेक्टर हैं जो डायरेक्शन दे रहे हैं आपको, उनकी डायरेक्शन को समझना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो पावर है, माइंड पावर, लाइक उसको ओपन करके जाएं। इतना आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं कि हम जहाँ जा रहे हैं कि वो जगह आपके लिए थिएटर के लिए प्रभावित है क्या, आप सच में वहाँ थिएटर सीख पाएंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं बस ऐसे ही घुमाया जा रहा है। क्योंकि आजकल काफी थिएटर ग्रुप खुल चुके हैं, जैसे कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दुकानें खुल चुकी हैं। आप जाकर देखेंगे, बाहर मार्केट में निकलेंगे, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो लोगों ने कहीं ना कहीं थिएटर ग्रुप की दुकानें खोल रखी हैं। आपको साल दो साल ओनली नुक्कड़ नाटक कराया जाता है, उसके पैसे ऊपर से मिलते हैं आपके, आपसे जो आपकी वो बनती है, क्या नाम है, आपकी फीस वो ले लेते हैं और कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक में आपको घेरे रखते हैं। तो ये चीज आपको स्पेशल समझनी होगी कि आप जहाँ सीख रहे हैं वो जो डायरेक्टर हैं वो उस काबिल हैं कि वो आपको सिखा पा रहे हैं, और या फिर वो जो माहौल है, क्या वो माहौल ऐसा है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल माहौल जो है बहुत डिपेंड करता है एक कलाकार को एक्टिंग सीखने में। और कहीं ना कहीं आजकल आप देखेंगे कि एक्टर बनने से पहले ही कुछ लोग बहुत बड़े एक्टर और स्टार बन जाते हैं, और लोगों ने कहीं ना कहीं धूम्रपान से एक्टिंग को जोड़ रखा है, जिस कारण कई स्टूडेंट आते एक्टर बनने हैं लेकिन नशे के आदि होकर वो कहीं ना कहीं उस लाइन को भूल जाते हैं और नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको माहौल को समझना होगा, आपके आसपास वाला जो माहौल है जहाँ आप जा रहे हैं सीखने या सीखना चाहते हैं, तो इस चीज को आपको पहले जानना होगा।
0: बहुत सुंदर। अगर किसी के पास वो माहौल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो कैसे सीख सकता है?
1: माहौल नहीं है तो वो अपने आप से भी खुद, आजकल काफी यूट्यूब चैनल है उस पर आप सीख सकते हैं, और कहीं ना कहीं खुद आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि आप कंट्रोल करना सीखें। सबसे पहले कोई चीज है, कोई आपके सामने सीन क्रिएट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं हम घर में रहते हैं तो मम्मा हमारी कहीं ना कोई बात होती है तो वो चिल्लाती हैं, तो आप उस चिल्लाने को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ना चिल्लाएं, उनका जवाब ना दें, तो उस तरीके से आप एक्टिंग का कहीं ना कहीं पार्ट बन सकते हैं कि देखो मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया और मैं इस तरीके से उसको ड्रामा का पार्ट समझें कहीं ना कहीं, कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक ड्रामा चल रहा है तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो ये चीज। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप के जीवन में अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपको अपने को एक्टर को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किन किन चीजों के ऊपर काम किया जाता है थिएटर में?
1: काम सबसे पहले तो अपने वे ऑफ टॉक पे वर्क करना चाहिए एक कलाकार को, आपको बोलना आना चाहिए, आपको खड़े होना आना चाहिए, ब्लॉकिंग समझनी चाहिए, आपको आपकी सहन क्षमता बहुत होनी चाहिए आपके अंदर एज ए आर्टिस्ट, कंट्रोल पावर आपकी बहुत हैवी होनी चाहिए।
0: क्या क्या वो स्किल्स हैं, मानकर चलिए इस टाइम कोई बच्चा आपकी आवाज सुन रहा है और उसके पास एक्सेस नहीं है थिएटर ग्रुप में जाने का किसी में, और वो थिएटर करना चाहता है, उसको एक्टिंग से प्यार है, तो अपने घर पर रह करके वो क्या क्या कर सकता है, किन किन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है?
1: उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉइस एक्सरसाइज है, काफी योग है, योगासन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूंगा, एक हमारा खुद का चैनल है सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप, आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं।
0: ओके ओके ओके, तो इनका चैनल है, आप वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं सबका रंगमंच ग्रुप नाम से, जिसमें आपको आपके अगर कोई सवाल है आपके जहन में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। नरेश भाई, कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग हमने हमेशा ही डिफरेंस सुना है, इनमें क्या फर्क होता है?
1: इसमें काफी डिफरेंस होता है, जो थिएटर होता है ये आपको लाइव स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, और एक बार अगर टेक लग गया तो फिर उसका डी एंड ही होना है, लेकिन आप टेलीविजन की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वेब सीरीज की है जलेबी, जो स्टेज ऐप पे आने वाली है। तो अगर आप टीवी की बात करें तो उसमें बहुत सारे कट होते हैं, अगर आपको एक बारी में आप उस तरह की एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा रीटेक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थिएटर की बात करें, अगर वो चालू हो गया तो फिर वो एंड ही होगा उसका, उसमें कोई रीटेक की संभावना नहीं होती।
0: तो ये फर्क होता है कि बस लाइव जो होता है थिएटर, उसमें आप लाइव होते हैं, आपके पास कोई रीटेक की संभावना नहीं बचती है, वहां पर गुंजाइश नहीं बचती है। कैमरे एक्टिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है, कैमरे में आपको करना होता है तो आपको उतना स्कोप वहां पर मिल जाता है, लीनियंसी मिल जाती है। मोर ओवर कैमरा आप के पास आता है, कैमरे के थ्रू लोग आपके चेहरे के पास आते हैं, रंगमंच पर आपकी आवाज के थ्रू आप लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। वो थोड़ा लाउड होता है, वो थोड़ा सटल होता है, दैट्स हाउ थिंग्स डिफरेंशिएट्स। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

0: हर बार की तरह मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है शो में, आपको मजा आ रहा है इस म्यूजिकल वाइब के साथ। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ है मिस्टर नरेश ठाकुर जो कि सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप के फाउंडर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आइए शो को आगे लेकर के चलते हैं। नरेश, अब मैं बात करना चाहूंगा पैसों की। रंगमंच में पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे जिया जाता है, दाल रोटी का जुगाड़ कैसे होता है?
1: रंगमंच में अगर पैसे की बात करें तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं घर फूक थिएटर हमें दिखाना पड़ता है। इनकम का सोर्स बहुत ही कम होता है, लेकिन आत्मिक संतुष्टि बहुत होती है। लेकिन उस आत्मिक संतुष्टि से घर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आजकल काफी संस्थाएं खुल चुकी हैं, आपको नाम बताना चाहूंगा, जैसे हरियाणा में हरियाणा कला परिषद है, आर्ट एंड कल्चर अफेयर चंडीगढ़ है, और संस्कार भारती है, और सूचना जनसंपर्क विभाग है फरीदाबाद में। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कला के क्षेत्र में काफी कला को बढ़ावा दे रही हैं और अच्छा खासा मानदेय कला को, कलाकार को देती हैं कला के लिए, चाहे वो नाटक की कला है, चाहे वो नृत्य की कला है, चाहे वो संगीत की कला है। तो आप इन संस्थाओं से जुड़ के आप कार्य कर सकते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रयोग करती है, जिसका लाभ मैं काफी समय से उठा रहा हूं और जिस कारण से मैं आज इस फील्ड में डटा हुआ हूं।
0: बहुत सुंदर। नरेश भाई, मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि अगर किसी को थिएटर कर लिया, उसने चार चीजें सीख ली, तो मूवीज तक पहुंचने का रास्ता क्या होता है, बॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता कैसा होता है?
1: एक्चुअली मूवी तक तो यही है कि सबसे बेस्ट है कि आप कहीं ऑडिशन तैयार करें और ऑडिशन के थ्रू ही आपको वर्क मिलेगा। वो बात और है कि लोगों ने लिंक से कहीं ना कहीं जोड़ रखा है फिल्मों को, इसलिए लोगों के लिए लिंक होते हैं, लिंक होते हैं, लिंक से लोग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी पर्सनैलिटी है, आपका लुक अगर जा रहा है करेक्टर के लिए, तो किसी लिंक की आपको जरूरत नहीं है। आप ऑडिशन के द्वारा फिल्म सीरियल कर सकते हैं।
0: ऑलराइट। एक अभिनेता बनने के लिए क्या चीजें हैं जो डेली करनी चाहिए, भले आप थिएटर कर रहे हो ना कर रहे हो?
1: आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन है, आपको जो किरदार है उस किरदार को आपको बार बार रिपीट करना चाहिए, जो भी आपके डायलॉग्स हैं, और कहीं ना कहीं आपको रियाज की बहुत जरूरत रहती है जब आप रंगमंच करते हैं। और रंगमंच के सामने यही नहीं है कि आपको एक्टिंग ही करनी होती है, रंगमंच का पार्ट सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है। तो इन सभी चीजों पे एक कलाकार को काम करना चाहिए और अपने आप को दिन प्रतिदिन बदलना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए।
0: बहुत सुंदर। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं नरेश जी। कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट दोस्तों, हमने आज नरेश ठाकुर जी से बात करी और थैंक यू सो मच नरेश जी हमारे से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त है दोस्तों अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा, आपको कुछ वैल्यूज मिली होंगी। आज के हमारे मेहमान रहे मिस्टर नरेश ठाकुर जो कि सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप के फाउंडर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अगर आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो अपनी कला के ऊपर काम करिए, एक्सरसाइज डेली करिए, डेली रियाज करिए, हर रोज का यही तरीका होता है, जरूर करिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज बात हो रही है मेस्टा के बारे में। अब भाई देखिए, फसल कोई भी हो, आप चाहते हैं कि उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो सबसे पहला काम होता है किस्मों का ख्याल रखना, यानी वो कौन कौन सी किस्में हैं जिससे पैदावार हमें अच्छी मिल सकती है। हिबिस्कस सब्दारिफा, AMV1, AMV2, AMV3-4, HS4288, HS7910, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में उपयोग होने वाली किस्में हैं। इसके अलावा दूसरी किस्म है हिबिस्कस कैनाबिनस, ये HC583, जो कि पश्चिमी बंगाल में उगाने योग्य किस्म है। इसके अलावा किसान भाइयों, दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें तो हिबिस्कस कैनाबिनस MT150, ये किस्म सारे मेस्टा उत्पादक राज्यों के लिए सहायक है। इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया होती है और इस किस्म को मुख्य रूप से अखबार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी औसतन पैदावार 13 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। और एक और किस्म है जिसका नाम है JRM3, इसको स्नेहा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे देश में उगाने योग्य किस्म है, ये कीटों और बीमारियों की रोधक किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 10.5 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। एक और किस्म है जिसको जाना जाता है JRM5 के नाम से, और इसको श्रेष्ठा भी कहा जाता है। इसकी औसतन पैदावार 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसके अलावा एक और किस्म है जिसको जाना जाता है AMV7 के नाम से। ये किस्म 130 से लेके 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और ये नमी की कमी को सहने योग्य, कीटों और बीमारियों की रोधक किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 10.5 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाती है। लेकिन जब बात आती है जमीन की तैयारी की, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, मेस्टा की फसल को बेहतर बनाने के लिए इसकी जमीन की तैयारी कैसे की जाए, आपको जरूर बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: देखिए किसान भाइयों, अगर आप मेस्टा की फसल बेहतर हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जमीन की तैयारी बेहतर से बेहतर करनी है। मानसून आने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और जुताई के बाद मिट्टी को नदियों और अन्य बचे खुचे पदार्थों से मुक्त कर दें। फिर जमीन को अच्छी तरह से समतल कर लें। खेत की तैयारी के समय मिट्टी में 2 से 4 टन गली सड़ी रूड़ी की खाद जरूर डालें। और बिजाई की जब बात आती है तो बिजाई का समय जरूर याद रखें। मेस्टा की बिजाई के लिए मई जून महीने का समय उचित माना जाता है, लेकिन बढ़िया विकास और पैदावार के लिए फसल में 30x10 सेंटीमीटर का फासला रखने की सिफारिश की जाती है। बीज की गहराई की बात करें तो बीजों की बिजाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर करें। बिजाई का ढंग भी सुन लीजिए। इसकी बिजाई आमतौर पर बुरकाव विधि द्वारा की जाती है, लेकिन पंक्तियों में बिजाई करना भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है किसान भाइयों। लेकिन बात जब बीज की आती है तो बीज का सबसे पहले उपचार करना जरूरी होता है। अब बीज का उपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में भी आपसे बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: किसान भाइयों, मेस्टा के बारे में आज आपसे बात हो रही है। पीछे मैंने आपको बताया था कि जमीन की तैयारी कैसे की जाती है, लेकिन अब बात आती है बीज की, बीज के उपचार की। तो बिजाई से पहले मैन को जेब 3 ग्राम प्रति किलो से बीज का उपचार करें और बीज की मात्रा का भी ख्याल रखें। हिबिस्कस सबदारिफा के लिए 6 किलो प्रति एकड़ और हिबिस्कस कैनाबिनस के लिए 5 किलो प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करें। अब बात आती है खाद की। भाई देखिए, खाद अच्छी डालेंगे तो फसल अच्छी होगी, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। किसान भाइयों, ज्यादा पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन 16 किलो यानी यूरिया 36 किलो, फास्फोरस 8 किलो यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो और पोटाश 8 किलो यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 14 किलो प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद फास्फोरस और पोटाश का सारा हिस्सा और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा बिजाई के समय डालें। बाकी बची नाइट्रोजन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दें। पहला हिस्सा बिजाई से 21 दिन बाद और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा बिजाई से 35 दिन के बाद गुड़ाई करने के समय डालें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो फसल बेहतर होगी, फसल बेहतर होगी तो दाम भी तो अच्छा मिलेगा किसान भाइयों। चलिए खरपतवार के बारे में भी बात करूंगा जो कि हमारी फसल को नेस्त नबूद कर देती है। सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, अगर हम उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते तो उसका परिणाम हमें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। हम बड़ी मेहनत से अपनी फसलों को तैयार करते हैं, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, हम हर तरह के संकटों को झेलते हुए अपनी फसलों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब खरपतवार का आक्रमण होता है फसलों पर, फिर फसलें बर्बाद होनी शुरू हो जाती हैं और आपकी जो मेहनत है वो भी जाया हो जाती है। आपकी फसल बर्बाद ना हो, मेहनत जाया ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खेत को साफ और नदीन मुक्त करने के लिए गुड़ाई करें और पौधों को विरला करें। पहली गुड़ाई बिजाई से 21 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई बिजाई से 35 दिन के बाद करें और साथ साथ कमजोर पौधों को बाहर निकाल दें। नदियों को रासायनिक ढंग से रोकने के लिए बिजाई से 2 से 3 दिन पहले फ्लूक्लोरालिन 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ डालें या ब्यूटाक्लोर 1200 मिलीलीटर प्रति एकड़ या पेंडीमेथालीन 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़ को बिजाई के तुरंत बाद डाल दें। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर चुका हूं मैसरा के बारे में, लेकिन अब बात आती है सिंचाई की। भाई देखिए, सिंचित फसल होने के कारण इसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जरूरत हो तो मौसम और मिट्टी की किस्म के अनुसार इसकी सिंचाई करना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि जब हमारी फसल तैयार होने लगती है तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं हमारी फसल के लिए। उनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए और वो कीट कौन से हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा उस कीट की जिसको जाना जाता है चेपा के नाम से। अगर खेत में इसका नुकसान दिखाई दे तो डाइमेथोट 2 मिलीलीटर या एम्डाक्लोफ्रिड 0.25 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें, या थाई ओमेथो कसम 0.2 ग्राम या एसिटामीप्रिड 0.2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। ये तो हो गई चेपा को रोकने की बात। इसके अलावा एक कीट और होता है जिसको जाना जाता है हरी सुड़ी के नाम से। अगर इसका नुकसान दिखाई दे तो थाई ओडिकार्ब 1 ग्राम या इंडोक्साकार्ब 1 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इसके बाद बात आती है उस कीट की जिसको जाना जाता है मिली बग के नाम से। जब नुकसान कम हो तो इसकी प्रभावशाली रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। अगर नुकसान ज़्यादा हो तो प्रोफेनोफॉस 2 मिलीलीटर या ट्राइजोफोम 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये बात मैंने बता दी है आपको कुछ कीटों के बारे में, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हो जाती है। कई तरह के कीट होते हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, और वो कौन कौन से कीट हैं उनके बारे में भी बात होगी और उनसे रोकथाम कैसे की जा सकती है वो उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, आज हम उस फसल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मेस्टा। मेस्टा की फसल के लिए बहुत सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी बात चल रही है उन कीटों के बारे में जो कि हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा कीट जिसका नाम है तेला, इसकी रोकथाम के लिए एमिडाक्लोफ्रिड 0.25 मिलीलीटर या थाई ओमेथोकसम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से जो आपका तेला नाम का कीट है इसका समाधान हो जाएगा और आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ बीमारियों की और उनकी रोकथाम की। एक बीमारी है जिसका नाम है जड़ और तना गलन। नाम से ही पता लगता है कि ये हमारे पौधों की जड़ को और जो तना होता है उसको गला देती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत में अच्छे निकास का प्रबंध कर लें और पानी को खड़ा बिल्कुल ना होने दें। बिजाई से पहले प्रति किलो बीजों को 3 ग्राम मैकोजेब के साथ उपचार करें और अगर इसका हमला दिखाई दे तो रिडोमिल 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। तो ये बात तो हो गई जड़ और तना गलन के बारे में, लेकिन एक और रोग है जिसको जाना जाता है पत्तों का झुलस रोग के नाम से। अगर इसका हमला दिखाई दे तो 3 ग्राम मैकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। जरूरत पड़ने पर 7 दिनों के फासले पर दोबारा स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रोग और होता है जिसको जाना जाता है नाड़ियों का पीला चितकबरा रोग के नाम से। ये रोग सफ़ेद मक्खी से फैलता है और सफ़ेद मक्खी के हमले की जांच जरूर करनी चाहिए। बिजाई से 50 दिन के बाद थाई ओमेथोकसम 0.1 ग्राम या एमिडाक्लोफ्रिड 0.25 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है फसल की कटाई की, तब हमें क्या करना चाहिए और कटाई के बाद क्या करना चाहिए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा थोड़ी देर के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता अपने दोस्त फहीम के साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आधुनिकता के दौर में ज्ञान विज्ञान के विकास से समाज और व्यक्ति में कई भौतिक एवं वैचारिक प्रकट हुए हैं। इन परिवर्तनों से उत्पन्न मानवीय संवेदना से आठवें दशक की प्रमुख रचनाकार यानी मधु कांकरिया का साहित्य जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनका अध्ययन, चिंतन और लेखन न केवल साहित्य, संस्कृति और शिक्षा तक व्यापक है, बल्कि आज की राजनीति, मीडिया और समाज व्यवस्था के सूक्ष्मतम अंतर्ध्वनियां भी उनके मानस पटल में पूरी तरह से रची बसी हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण यानी कि इस तरह के साहित्यिक रूपों में अपनी अनुभूति की प्रमाणिकता और बोध प्रवणता को अभिव्यक्त किया है अब तक उनके द्वारा रचित चारों कहानी संग्रहों बिताते हुए 2004 और अंत में ईशु 2008, युद्ध और बुद्ध 2014, जलकुंभी 2020 में भाषा, धर्म, रूढ़ी, दरिद्रता, उजड़ते गांव, स्त्री समस्या, नक्सलवाद की समस्या, बुद्धिजीवी वर्ग, पीढ़ियों के बीच के अंतर यानी कि इनसे जुड़े अनेक ज्वलंत सवालों को प्रकट किया है। ये कहानियां आज के समाज की प्रतिच्छवि हैं और इनसे झांकती आम आदमी के मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता मधु कांकरिया की पहचान है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, साहित्य के विकास और समाज की पहचान को समझने में युग बोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक साहित्यिक और दार्शनिक अवधारणा है जो साहित्यकार के समय और समाज की समझ को व्यक्त करती है और जिससे रचना में उस समय की संवेदनाओं, समस्याओं और विचारधाराओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। युग और बोध शब्दों के योग से बना युग बोध एक यौगिक शब्द है जिसका तात्पर्य किसी युग के प्रति हमारी समझ, दृष्टिकोण यानी कि इससे जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है जो विशेष समय अवधि में घटित सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यवसायिक घटनाओं को यथार्थ रूप में केंद्रीभूत रखता है। युगबोध वास्तविकता से परिचित कराता है। इसका ना वर्तमान के साथ कोई संबंध है और ना भविष्य से कोई ताल्लुक है। ये समय सामायिकता पर जोर देता है। एक ही युग में प्रत्येक व्यक्तियों का चेतन अलग अलग होने के कारण हर किसी की युगबोध को लेकर धारणा अलग अलग हो सकती है और उसका प्रभाव भी अलग अलग पाया जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, जो एक बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनका कहना है, युगबोध को किसी एक विशेष परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदल जाता है। समाज का संपूर्ण रूप साहित्य में समाहित है और युगबोध का पूर्ण रूप रचना में देखने को मिलता है। अतएव युगीन परिवेश को रेखांकित करने के लिए एक रचनाकार को संपूर्ण युग का ज्ञान होना चाहिए। महान कलाकार अपने युग का पूर्ण प्रतिनिधि, पूर्ण व्याख्याता होता है। उसकी वाणी में युग के सारे संघर्ष, सारे राग विराग, समस्त प्रश्न और संदेह मूर्तिमान होकर बोलते या ध्वनित होते हैं। एक समय सापेक्ष होने के कारण कुछ विशेष समय अवधि तक युग बोध का महत्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन परवर्ती युग में उसे महत्व मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा वो और क्या कहना चाहती हैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, रचनाकार मधु कांकरिया का कहना है कि किसी भी रचना को पूरी तरह समझने, उसका मूल्यांकन करने के लिए वो रचना कब लिखी गई थी, उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस तरह का था, यानी कि इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे युगबोध कहा जाता है। युगबोध को सिर्फ आधुनिकता, समसामायिकता ही प्रभावित नहीं करती। आधुनिकता के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, परंपरा भी उसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग के पीछे उसकी पृष्ठभूमि रहती है। इतिहास के किसी भी युग का साहित्य उठाकर देख लिया जाए तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण अवश्य देखने को मिलता है, जिसकी भावधारा मनुष्य चेतना, समाज और उसके परिवेश से बंधी हुई है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का कहना है कि साहित्य जीवन का दूसरा नाम है। साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है। समाज का वो परिधान है जिसमें समाज के सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, आकर्षक विकर्षक यानी कि सारे ताने बाने बुने जाते हैं। उसमें मानव जाति की आत्मा का स्पंदन होता है। और दूसरी बात, समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और साहित्य से परिचित हुए बिना हम समाज को समझ नहीं पाते हैं। साहित्य सृजन के लिए जो भाव विचार चाहिए वो सब समाज से ही मिलते हैं, जिसे युग बोध कहा जाता है। मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य के द्वारा ही होता है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और भी कहना चाहती हैं। उन सारी बातों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था मधु कांकरिया के बारे में, उनका कहना है कि मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य द्वारा होता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि युग बोध साहित्य का धर्म है। बोध एक आंतरिक प्रक्रिया होने के कारण किसी विषय, परिवेश, परिस्थिति के प्रति हमारी धारणा का निर्माण करता है। बोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के मुताबिक ये बदलता रहता है। अपनी बोध शक्ति के मुताबिक हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ये एक प्रकार का अनुभव है जो हमें अपने जीवन को सहज करने के लिए सहायक होता है। हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन दोस्तों, मधु कांकरिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें थीं, आपके साथ साझा कर सकता था पर समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में आपसे और भी बातें साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश। हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आ जाते हैं हम आपके लिए, चाहे बात हो देश की या बात हो विदेश की, या बात हो हमारी सोशल मीडिया की या हमारी सोसाइटी की। हर टॉपिक को ना हम यहाँ पर कवर करते हैं, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ ही आपके लिए लेकर आ जाती हूँ बेहद ही खूबसूरत गाने भी, जिसे हम एंजॉय करते हैं, साथ ही इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। तो आज भी मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक खास टॉपिक, और वो क्या है, वो है हमारा यूथ। जी हाँ, आजकल हम सब सुन रहे हैं यूथ जो हमारा फ्यूचर है, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए, हमारा फ्यूचर है यूथ। तो आज क्यों ना हम उसी पर बात करें, इसलिए मैं आपके लिए आज ये यूथ स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आई हूँ। आज क्यों ना हम यूथ के ऊपर ही बात करें कि यूथ आखिर कर क्या रहा है और आगे क्या फ्यूचर वो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक ना इसलिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उस जनरेशन की जो हर जगह कुछ नया करने, कुछ अलग सोचने और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो है हमारा यूथ। जी हाँ, यूथ एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एनर्जी, ड्रीम्स, एक्साइटमेंट्स और पॉसिबिलिटीज जुड़ी होती है। लेकिन यूथ को हम अक्सर एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं कि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, यूथ फ्यूचर है, लेकिन क्या वो सिर्फ फ्यूचर है? बिल्कुल नहीं, यूथ आज का प्रेजेंट भी है। आज स्टूडेंट्स नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू नए सॉल्यूशंस को क्रिएट कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स में नाम बना रहा है, तो कोई म्यूजिक और आर्ट्स में अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, तो कोई सोशल इश्यूज के लिए आवाज उठा रहा है। मतलब यूथ सिर्फ कल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि वो आज भी सोसाइटी को शेप देने के लिए अपनी आवाज उठाता है। इस इंपॉर्टेंट डे को हाईलाइट करने के लिए हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। जी हाँ, इस दिन का जो मेन पर्पस होता है वो यूथ से जुड़े इश्यूज, उनकी पार्टिसिपेशंस और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन पर अटेंशन देना होता है। ये एक रिमाइंडर भी है कि यंग पीपल की बात सुनना, उनकी आइडियाज को इम्पोर्टेंस देना और उन्हें अपॉर्चुनिटी देना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, और अगर हम अपने आसपास देखें तो यूथ की जो प्रेजेंस है वो हर जगह नज़र आती है। आज का जो यंग पर्सन है सिर्फ क्लासरूम या फिर ऑफिस तक ही लिमिटेड नहीं है, वो सोशल मीडिया पर भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहा है, नए स्किल्स को सीख रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और अपने करियर के नए ऑप्शंस को डिस्कवर भी कर रहा है। लेकिन यूथ की स्टोरी सिर्फ अचीवमेंट्स की नहीं है, बल्कि ड्रीम्स के साथ साथ चैलेंजेस की भी है। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ प्रेशर भी होता है और फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आज ये खास ट्रेंडिंग तड़का ना हमारे यूथ के लिए है, जिस दिन को मैंने आपको बताया कि हम 12 तारीख को, जो हम 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट करते हैं, वो आज हम ना उनकी बात करने वाले हैं, उनके लिए एक दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और साथ ही उनके लाइफ को ना थोड़ा सा और क्लोजली समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर यूथ है क्या, क्या चाहता है और आगे क्या फ्यूचर है और प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है। क्योंकि यूथ सिर्फ फ्यूचर ऑफ द कंट्री नहीं है, बल्कि यूथ इज़ द एनर्जी, आइडियाज़ और वॉइस ऑफ प्रेजेंट। तो आपको क्या करना है, जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, क्योंकि आज ना बात होने वाली है बहुत खास, और इसी के साथ ही बहुत ही प्यारे प्यार से गाने भी। तो सुनिए अभी बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूँ अर्जित स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ दोस्तों, हर संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम जिसपे हम बहुत सारी ट्रेंड की बातें करते हैं। उसी के साथ ही हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कोई डे स्पेसिफिक होता है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि ना क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को और अच्छे से जान लेते हैं ना, तो शायद उसे समझना बहुत ईजी हो जाता है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं हमारे यूथ की, जी हाँ आज हम यूथ की बात कर रहे हैं, हमारा आज का यूथ, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे यूथ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी। लेकिन अब जरा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कर लेते हैं कि आज का यूथ और कुछ साल पहले का यूथ, क्या सच में दोनों में इतना डिफरेंस आ गया है? सोचिए, अगर हम अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से उनके यूथ के बारे में पूछे तो उनकी स्टोरीज में एक अलग ही दुनिया नजर आती है कि करियर के ऑप्शंस लिमिटेड थे, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज लिमिटेड थे और टेक्नोलॉजी आज की तरह लाइफ का पार्ट नहीं थी। आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज का जो यूथ है वो एक ऐसी दुनिया में ग्रो कर रहा है जहाँ पर इंफॉर्मेशन उसके फ़ोन के स्क्रीन पर अवेलेबल है। किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, कोई स्किल सीखनी हो, ऑनलाइन कोर्स करना हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहे या फिर किसी ट्रेंड को समझना हो, इंटरनेट ने सब कुछ काफ़ी एक्सेसिबल बना दिया है। और सबसे बड़ा चेंज शायद करियर चॉइस में आया है। पहले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, गवर्नमेंट जॉब या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे ऑप्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। आज यंग पीपल जो है, हमारे यंगस्टर्स जो है, उनके पास काफी सारे ऑप्शंस है, काफी वाइड ऑप्शंस है, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग में एप डेवलपर है, फ्रीलांसर है, एंटरप्रेन्योर है, पॉडकास्टर है, फिटनेस प्रोफेशनल है, ऐसे कितने ही सारे और भी ऐसे प्रोफेशनल्स है जो कुछ साल में और भी ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। पर बात करें अगर पहले, ये सब चीजें इतनी कॉमन नहीं थी क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सिर्फ करियर ऑप्शन ही नहीं बढ़ाए हैं बल्कि करियर स्टार्ट करने का तरीका ही बदल दिया है। आज के जो यंगस्टर्स हैं वो अपने रूम से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या दुनिया के किसी भी पार्ट के क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन आज के जो यूथ की स्ट्रेंथ है सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं है बल्कि एक्सपोजर भी है, एक मेजर स्ट्रेंथ भी है। यंगस्टर्स जो है वो डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज और पर्सपेक्टिव के बारे में जान रहे हैं, इस वजह से उनमें अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। आज का जो यूथ है वो क्वेश्चंस को पूछता है, अपनी चॉइस को एक्सप्लोर करता है और ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करने से भी नहीं डरता। और ऑफ कोर्स हर चेंजेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी को देखे तो आज के जो यूथ है उसके पास आइडेंटिटी और करियर क्रिएट करने का बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। तो क्या आज का जो यूथ है वो बेटर है या फिर पहले का यूथ बेटर था? शायद इसका सिंपल आंसर है नहीं। हर जनरेशन अपने टाइम के हिसाब से यूनिक होती है। शायद जो रिसोर्सेस आज है अगर वो पहले होते तो शायद उनमें भी बहुत सारे चेंजेस होते, पर वो चीज़ें पहले नहीं थी तो इसलिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। और ऐसा नहीं था कि वो नहीं बढ़ रहे थे, वो भी आगे बढ़ रहे थे, वो भी काम कर रहे थे, वो भी अपना नाम कमा रहे थे। और आज के जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, उनके पास ऑप्शंस है तो इसलिए वो आज टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों के साथ, रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कौन बेटर है कौन नहीं है, तो मैं ये कहूँगी हर जनरेशन अपने टाइम के हिसाब से यूनिक होती है, हर जनरेशन टाइम के हिसाब से बेटर है, बेस्ट है। डिफरेंस बस इतना है कि आज के यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, चॉइसेस ज्यादा है और दुनिया तक पहुंचने के जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी ज्यादा है। लेकिन जब चॉइसेस बढ़ती है तो कंफ्यूजन भी बढ़ सकती है, जी हाँ। और इसी से जुड़ी है यूथ के कुछ रियल चैलेंजेस, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, संडे शाम 4 से 5 करते हैं हम ट्रेंड की बातें और इस हर हफ्ते कुछ नया लेकर आ जाती हूँ। हाँ, और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारे यूथ। जी हाँ, आजकल बहुत चर्चा चल रही है यूथ के बारे में, जेन जी के बारे में, नई जनरेशन जो आ रही है उनके बारे में। तो सोचा क्यों ना आज आपसे इन्हीं के बारे में बात कर ली जाए। तो दोस्तों, अभी हमने बात की जैसे कि आज की यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, करियर ऑप्शंस पहले से ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक्सेसिबल बना दिया है और यंगस्टर्स के पास अपनी आइडेंटिटी बनाने के कई प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ जाता है। जी हाँ, आज का यूथ सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि मुझे क्या बनना है, बल्कि उसके माइंड में ना कई और क्वेश्चंस भी चल रहे होते हैं कि क्या मैं सही करियर चूज कर रहा हूँ, मुझे जॉब कब मिलेगी, क्या मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे तो नहीं निकल रहे, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब बनूंगा। और कभी कभी इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं कि खुद को समझना भी मुश्किल लगने लगता है। और इन सब के बाद शुरू होता है करियर कन्फ्यूजन। जी हाँ, यूथ के लिए एक कॉमन चैलेंज बन गया है कि ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ऑप्शंस ज्यादा होने की वजह से का मतलब ये भी है कि डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो सकता है। कभी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होती है, तो कभी सोसाइटी के ऑप्शंस और कभी खुद के ड्रीम्स। जी हाँ, इन सब के बीच यंगस्टर्स ये फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि एक्चुअली उसके लिए सही डिसीजन क्या रहेगा। और फिर उसके बाद आता है कॉम्पिटिशन। जी हाँ, आज हर फील्ड में देखे तो कॉम्पिटिशन है, कॉलेज में एडमिशन लेकर जॉब तक। और हर जगह यंग पीपल को लगता है कि उन्हें कंसिस्टेंटली प्रूव करना है। और सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को और इजी बना दिया है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और स्क्रीन पर कोई आपको सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख जाए, फॉरेन ट्रिप पर जाते हुए दिख जाए, या फिर ड्रीम जॉब अचीव करते हुए आपको दिख जाए, फिर उसके बाद माइंड में थॉट आ सकता है कि सब मुझसे आगे तो नहीं जा रहे, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। लेकिन रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया पर हमें किसी की कंप्लीट लाइफ नहीं पता, सिर्फ उसका सिलेक्टेड पार्ट ही दिख रहा है हमें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करना और फैमिली को सपोर्ट करना और अपने ड्रीम्स के लिए अर्न करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर भी यंगस्टर फील करते हैं। और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पेरेंट्स यूजुअली अपने बच्चों का बेस्ट ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके एक्सपेक्टेशंस और यंगस्टर के पर्सनल ड्रीम्स के बीच का डिफरेंस ला सकती है। तो यूथ की प्रॉब्लम को देखकर उन्हें जज करने की बजाय उन्हें समझने की जरूरत है। उनसे बात करिए, उन्हें समझिए। हर यंगस्टर की जर्नी ना डिफरेंट है। किसी को सक्सेस 22 में मिल जाती है, तो किसी को 30 में या उसके बाद शायद। लाइफ कोई रेस नहीं है जिसमें हम सबको एक ही टाइम पर फिनिश लाइन को क्रॉस करना है या किसी से जीतना है। तो बस मेहनत करिए, काम करिए, हार मत मानिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप भी अगर कभी कंफ्यूज्ड हो या फिर प्रेशर फील करते हो, तो याद रखिएगा कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। और इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड वाली। और आज का हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है हमारे यूथ। जी हाँ, हमारे यूथ के बारे में हमने अभी तक उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनकी चेंजिंग लाइफ स्टाइल और उनके चैलेंजेस की बात की। और अगर आज के यूथ की लाइफ की जब बात हो ही रही है तो एक चीज को इग्नोर करना ऑलमोस्ट पॉसिबल है, वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये यूथ की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बन चुका है। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि सोशल मीडिया यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर प्रेशर। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो सोशल मीडिया ने यंगस्टर्स को वो प्लेटफॉर्म दिया है जो शायद पहले इजिली अवेलेबल नहीं था। आज अगर किसी यंगस्टर में सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, कॉमेडी, राइटिंग या किसी भी फील्ड का टैलेंट है तो वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाकर रख सकता है। एक सिंपल फोन और इंटरनेट कनेक्शन से कोई अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता है और ऑडियंस बिल्ड कर सकता है और धीरे धीरे उसे करियर भी बना सकता है। और आज अगर हम यंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलेंसर्स और आर्टिस्ट को देखते हैं तो जो सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम प्रमोट कर रहे हैं वो हमें सही लगता है, बिल्कुल उसमें कुछ गलत नहीं है। स्मॉल बिजनेस भी इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया ने यूथ की वॉइस को विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी भी दी है। लेकिन दूसरी साइड भी है कि कभी कभी हम सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, किसी के फॉलोअर्स ज्यादा है तो किसी का करियर सक्सेसफुल लग रहा है, कोई एक्सपेंसिव वेकेशन पर जा रहा है तो कोई परफेक्ट बॉडी के साथ फोटो पोस्ट कर रहा है और फिर हम अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं, यहीं से प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स कभी कभी सेल्फ वर्थ से कनेक्ट होने लगते हैं हमारी। अगर पोस्ट पर लाइक्स कम आते हैं तो मूड ऑफ हो जाता है, अगर फॉलोअर्स स्लो ग्रो कर रहे हैं तो लगता है कि शायद हम सक्सेसफुल नहीं हैं दूसरों की तरह। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफ किसी की कंप्लीट लाइफ नहीं होती है। फोटोज एडिटेड हो सकती है, मोमेंट्स केयरफुली सिलेक्टेड हो सकते हैं और स्ट्रगल्स यूजुअली कैमरे के सामने नहीं आते हैं। इसलिए सोशल मीडिया को कम्प्लीटली अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि बेटर है कि हम इसे स्मार्टली यूज करें, कुछ नया सीखे, अपने टैलेंट शोकेस करें, यूजफुल इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और जरूरत पड़ने पर स्क्रीन से ब्रेक भी लें। जी हाँ, तो अब सवाल आपके लिए कि आपके लिए सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी है या फिर प्रेशर। आप अपना आंसर ना हमें मैसेज के थ्रू या हमें कॉल करके जरूर बताइएगा। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर मैं वेट करूंगी आपके मैसेज का। और अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम चल रहे हैं यूथ के साथ। जी हाँ, हमारी जो यूथ है, हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, अभी जब हमने सोशल मीडिया की बात की है तो चलिए अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक पर अब हम जो आज ऑलमोस्ट हर यंग पर्सन की कॉन्वर्जेशन का पार्ट बन चुका है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं AI। आज AI सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी की चीज़ नहीं है, बल्कि हम अपनी डेली लाइफ में भी AI का यूज़ कर रहे हैं। सर्च करने से लेकर कंटेंट क्रिएट करने तक, स्टडीज से लेकर वर्क तक, AI ग्रेजुअली हमारे काम करने का तरीके को चेंज कर रहा है। और यूथ के लिए ये चेंज काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज जो स्किल्स यूजफुल है, फ्यूचर में उनका नेचर और भी चेंज हो सकता है। और स्टूडेंट्स जो AI टूल की हेल्प से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को समझ सकते हैं, आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं, यंग प्रोफेशनल्स रिसर्च कर सकते हैं, राइटिंग, डिजाइनिंग, डेटा एनालिसिस और डिफरेंट टास्क में AI टूल्स का सपोर्ट ले रहे हैं। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर फील्ड में हर इंसान AI का यूज़ कर रहा है। एंटरप्रेन्योर के लिए भी AI नई पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर रहा है। स्मॉल बिजनेस अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, कस्टमर्स नीड को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। लेकिन AI की बात आते ही क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आता है कि क्या AI हमारी जॉब ले लेगा? ये कंसर्न को हम समझ सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जब भी चेंज होती है, कुछ ट्रेडिशनल रोल्स चेंज होते हैं और कुछ नए रोल्स क्रिएट भी होते हैं। इसलिए फ्यूचर को सिर्फ AI जॉब्स रिप्लेस करेगा, इस एंगल से देखना शायद कंप्लीट पिक्चर नहीं है। जी हाँ, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम AI के साथ काम करना सीखेंगे या नहीं। फ्यूचर में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इनफ नहीं होगी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसे ह्यूमन स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि AI इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस दे सकता है, लेकिन आइडियाज़ को समझना, सिचुएशन को फील करना और डिसीजन लेना और लोगों के साथ कनेक्ट करना अब भी ह्यूमन की एक पावर है जो सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। इसलिए यूथ को AI से डरने की बजाय AI को समझने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। AI को शॉर्टकट की तरह यूज करने की बजाय एक टूल की तरह यूज क्यों ना करें हम। अगर आप स्टूडेंट है तो AI से कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिसर्च और प्लानिंग में इसका सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि AI का यूज करें, लेकिन अपनी थिंकिंग को रिप्लेस मत होने दीजिए। टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, टूल्स बदलते रहेंगे, लेकिन सीखने की एबिलिटी जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज की जो यूथ है उनके लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि AI से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है, AI को समझकर उसके साथ ग्रो करने की जरूरत है। और जब यूथ अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी दोनों को यूज करता है तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि सोसाइटी का फ्यूचर भी शेप कर सकता है। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं यूथ के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हमने यूथ के बारे में डिफरेंट साइट्स पर बात की है, उनके ड्रीम्स, उनके चैलेंजेस सोशल मीडिया पर और AI जैसे चैलेंजिंग ट्रेंड्स पर। लेकिन अब एक पॉजिटिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या यूथ सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है या सोसाइटी के फ्यूचर को भी शेप कर रहा है। आंसर है, बिल्कुल कर रहा है। हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं, वो सिर्फ जॉब और करियर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत से यंगस्टर्स अपने आइडियाज, अपने स्किल्स और अपने टाइम का यूज सोसाइटी में भी पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कर रहे हैं। कोई एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू नए बिजनेस क्रिएट कर रहा है, तो कोई अपने स्टार्टअप के थ्रू किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। कोई एजुकेशन के एरिया में काम कर रहा है, तो कोई एनवायरमेंट से लेकर अवेयरनेस तक क्रिएट कर रहा है। और चेंज हमेशा किसी बड़े प्रोजेक्ट से ही आए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा एक्शन भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। जैसे कोई यंगस्टर अपने एरिया में क्लीनिनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को पढ़ा रहा है, कोई ब्लड डोनेशन या फिर वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया के थ्रू इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहा है। स्पोर्ट्स और आर्ट्स में भी यूथ का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यंग एथलीट्स है, वो अपने टैलेंट से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यंग म्यूजिशियंस है, फिल्म मेकर्स है, राइटर्स है और आर्टिस्ट नए आइडियाज के थ्रू सोसाइटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। आज की जनरेशन की एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ये भी है कि वो क्वेश्चंस पूछती है। अगर किसी इशू को लेकर कुछ गलत लगता है, तो यंगस्टर्स उसके बारे में बात करते हैं, डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करते हैं। टेक्नोलॉजी ने एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है कि एक आइडिया जो पहले सिर्फ कुछ लोगों तक ही लिमिटेड था, आज सोशल मीडिया के थ्रू थाउजेंड्स और या फिर कहे तो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच सकता है। लेकिन चेंज मेकर बनने के लिए फेमस होना जरूरी नहीं है। आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आस पास क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट की स्टडी में हेल्प कर रहा है, अगर एक यंगस्टर वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करता है, अगर कोई पर्सन किसी कॉज के लिए वॉलंटियर करता है, ये भी चेंज बहुत बड़ा है। इसलिए यूथ को ये समझना जरूरी है कि चेंज

लाने के लिए किसी स्पेशल एज का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि चेंज के लिए एज नहीं इंटेंशन मैटर करती है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमने बात की हमारे यूथ की, जी हां, उनके सपनों की, उनके चैलेंजेस की, अपॉर्चुनिटीज की और उनकी चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में। हमने जाना कि यूथ सिर्फ फ्यूचर ही नहीं है बल्कि वो हमारे आज का प्रेजेंट भी है, एक पावरफुल वॉइस है। आज के यूथ नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। हाँ, इस जर्नी में चैलेंजेस भी है, करियर प्रेशर है, कंपटीशन है और कंपैरिजन जैसे इश्यूज भी यूथ के सामने हैं। लेकिन हर चैलेंजेस के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है और जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। सोशल मीडिया और AI जैसे टूल्स ने यूथ के लिए नए प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट भी किया है, बस जरूरी है कि इनका यूज स्मार्टली करें और अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। इंटरनेशनल यूथ डे हमें याद दिलाता है कि यूथ की आइडियाज और उनकी आवाज को इम्पोर्टेंस देना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप यंगस्टर हैं एक और अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं ना, तो अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर मत कीजिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि यूथ की असली पावर सिर्फ उनकी एज में नहीं होती है बल्कि उनकी सोच में, उनके आइडियाज में और कुछ नया करने की जज्बे में होती है। इसे पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आरजे स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से किसी और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर। इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और इस कार्यक्रम की सीरीज में हम ऑलरेडी बहुत सी बातें कर चुके हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में, बच्चों की सेफ्टी के बारे में और साथ ही हमने ट्रैफिक के बारे में भी बात करी है। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं है तो वो ट्रैफिक का, लेकिन ट्रैफिक में बहुत सारी भूल चूक हो जाती है। कई बार लोग जानबूझ के रूल्स तोड़ते हैं तो कई बार रूल्स गलती से टूट जाते हैं, बट ये रूल्स तोड़ना कितना नुकसानदायक हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से कावड़ यात्रा को लिए गए रूट के बारे में। कुछ ऐसे रूट्स जो फरीदाबाद शहर में खास तौर पर से बनाए जाते हैं क्योंकि हरिद्वार से सावन के महीने में कावड़ यात्राएं कर रहे हुए कावड़ियों की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और साथ ही यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे ये भी प्रयास होता है। फरीदाबाद पुलिस अपने बहुत सी प्लानिंग कर चुकी हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं सावन महीना चल रहा है और कावड़िये जो हैं वो अपनी यात्रा को शुरू भी कर चुके हैं और आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अपनी ईष्ट की आराधना के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं। कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बाइक्स पर हैं तो कुछ बड़ी गाड़ियों पर भी हैं, लेकिन भावना वही है, प्यार वही है, अपनापन अपने ईष्ट के साथ वही है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रशासन की, फरीदाबाद पुलिस की, क्योंकि हमारे अपने शहर फरीदाबाद से बहुत से कांवड़िए जो हैं जाते हैं और इसे क्रॉस करके पलवल की तरफ भी जाते हैं। सो हमें बहुत सी बातें करनी है आज हमारे खास एक्सपर्ट के साथ। अनुज कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं, SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद पुलिस में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू
0: सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम कांवड़ियों के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और काफ़ी जो हमारे भाई बंधु हैं वो जा रहे हैं, कई बार तो पूरा पूरा परिवार जाता है, छोटे छोटे बच्चे साथ में जाते हैं तो एक अलग ही सावन में माहौल नज़र आता है
1: जी।
0: लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस और प्रशासन बहुत सतर्क रहता है। जिन जिन शहरों से ये गुजरते हैं, जैसे मेरठ जाने के रूट्स को बंद कर दिया गया है, हरिद्वार की तरफ जो रूट जा रहा है उनको बंद कर दिया गया है कि वो कांवड़ियों के लिए सेफली जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद में भी बहुत से कांवड़िए हजारों की लाखों की तादाद में यहाँ से गुजरते हैं। कुछ इसी शहर के होते हैं, कुछ आगे पलवल की तरफ जाते हैं, आगरा की तरफ जाते हैं, मथुरा की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर सेफ्टी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना सतर्क रहना पड़ता है।
1: कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है और इसमें सभी अपने धर्म के इससे वहाँ पर यात्रा के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार से, गंगोत्री से वो जल लेके आते हैं पवित्र जल, और अपने जो है मंदिरों में ले जाते हैं, अपने गाँव के मंदिरों में वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमारा जो है प्रशासन बहुत सतर्क रहता है कि कहीं भी इनके साथ कोई कांवड़ियों के साथ कोई टच ना हो जाए, कोई खंडित ना कर दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
1: बहुत ध्यान
0: जल अपने कंधों पर लेकर आते हैं।

0: से
1: इतनी दूर से लेके आते हैं, इतनी मेहनत करके लाते हैं, इतने धार्मिक उससे लेके आते हैं, तो कोई भी इनकी कावड़िया को कोई हाथ ना लगा दे, कोई खंडित ना कर दे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है।
0: जी जी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, और ऐसे में कावड़िए तो देखिए सतर्क रहते ही हैं, साथ में प्रशासन और पुलिस भी बहुत सतर्क रहती हैं।
1: प्रशासन और पुलिस पूरा ध्यान रखता है, कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी इनको जो है टच नहीं हो जाए।
0: जी जी, सो बहुत सारी बातें दोस्तों चल रही हैं अनुज कुमार जी से, जो कि इंस्पेक्टर हैं और SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद के, और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कावड़ यात्रा के दौरान भी माहौल को एकदम शांत और ट्रैफिक को एकदम सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इस पर बहुत सी चर्चा करी, हमने जानकारी आपके साथ साझा की है, बातें और भी ट्रैफिक के बारे में करेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक. रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम है सुरक्षा संवाद. मैं हूँ दीक्षा आपके साथ. आज हमारे कार्यक्रम में हमारे गेस्ट हैं अनुज कुमार जी, इंस्पेक्टर फरीदाबाद पुलिस, SHO ट्रैफिक फरीदाबाद. और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं कि शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, क्या प्रबंध किए जाते हैं और क्या क्या रूल्स बने हुए हैं ट्रैफिक को सही रूप से चलाने के लिए और साथ ही एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए. बहुत सारे शिविर हमने लगते हुए देखे हैं, वो उनके रेस्ट के लिए होते हैं, उनके खाने पीने के लिए होते हैं. बहुत जगह पर उनका इलाज भी किया जाता है अगर कोई चोट लग गई, पैरों में तकलीफ आ गई. लेकिन मैं आपसे अब जानना चाहूँगी सर, फरीदाबाद पुलिस द्वारा क्या खास इंतज़ाम किए गए हैं? हर बार हम देखते हैं कि बहुत से इंतज़ाम होते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, इस बार क्या इंतज़ाम किए गए हैं?
1: इस बार हमने आगरा कनाल जो मार्ग है वो कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रखा है, उस पर सिर्फ कांवड़ी यात्री ही चलेंगे. दुर्गा बिल्डर से सेतपुर पल्ला और खेड़ी पुल, सेक्टर 17 पुल, सेक्टर 14 पुल, तिगांव पुल, बड़ौली पुल होते हुए IMT पुल, चंदावली पुल, सोतई पुल और वहां आगे जाके साहूपुरा से जाट चौक, मलेरना पुल होते हुए जाजरू चौक, फिर केली, फिर साहूपुरा मोड़, साहूपुरा खुर्द मोड़, फिर प्याला और फिर सीकरी मोड़ और इधर आगे डीग पुल तक हमारा जो है रूट है फरीदाबाद का. तो इस पर हमने सभी में जो है 25 नाके जो हमने लगाए हैं, उजीज में हमारे 300 के करीब ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी और बाकी 2000 समथिंग पूरी जो है पुलिस रहेगी हमारी, जिनमें हमारी क्राइम ब्रांच भी सादा वर्दी में रहेंगी, महिला पुलिस भी रहेगी, ERV और हमारी राइडर भी तैनात रहेंगी.
0: यानी 2000 की तादाद में जो संख्या में पुलिस कर्मी
1: टोटल हमारे 2000 के करीब रहेंगे, जिनमें 300 हमारे ट्रैफिक पुलिस के रहेंगे.
0: 300 सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो तैनात किए गए हैं
1: और इसमें जो है हमारे 25 नाके जो है लगाए गए हैं, हर चौक चौराहे पर नाके लगाए गए हैं पुलिस के.
0: सो अनु जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से, जिनको रूट्स नहीं पता कि कहाँ से जाना है, खासतौर पर से वो लोग जो गाड़ियों से जाते हैं इन जगहों पर या ये आगरा कैनाल रूट का लाभ उठाते हैं हर रोज़ ऑफिस आने जाने के लिए, और कभी कभी जो लोग पहुँचते हैं उनको कैसे गाइड किया जा रहा है? क्या वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो हाथ से इशारे करके या किस तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है?
1: पहले तो हमने उनको ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है दो तीन दिन पहले हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी और बाकी अभी बीच में भी 1-2 दिन बाद भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेंगे और अखबार में भी और इनमें भी हमने सभी में लिया है. और वहाँ पे जो हमारी ट्रैफिक पुलिस तो रहेगी, बाकी ये रोड हमने सारा बंद किया हुआ है बैरिकेटिंग करके. अच्छा. इस रोड पे कोई जो है वैसे प्राइवेट वाहन नहीं चले. हम सभी से अपील भी कर रहे हैं और माइक से भी हम उनको बता रहे हैं कि इस रोड को जो है प्रयोग ना करें, आप जो है बाईपास रोड या अन्य रास्ते से जो है वैकल्पिक जो मार्ग है उनसे जाएं. बाकी हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं वो हाथ से इशारा करके भी उनको बता रहे हैं.
0: जी जी, यानी जानकारी दी जा रही है. क्या ये गूगल पे भी मिल जाएगी अगर कोई गाड़ी
1: गूगल
0: निकला?
1: हाँ, गूगल पे भी हमने जो डाली हुई है ट्रैफिक एडवाइजरी, गूगल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी हमने डाली हुई है ट्रैफिक, उस पे भी हमने डाला हुआ है.
0: जी जी, अगर कोई गूगल मैप पे सर्च करता है तो वहाँ पर उसे वो रास्ता बंद दिखाई देगा अगर वो गाड़ी लेकर आता है तो, पूरे तरीके से वो बंद रहेगा सिर्फ कांवड़ियों के लिए. या सर, इसमें ये भी जानना चाहूंगी कि कई लोग पैदल वैसे भी आ रहे होते हैं, क्या उनके लिए भी अलाउड है ये?
1: नहीं, वो हमने अभी तो फिलहाल ये कांवड़ यात्रियों के लिए 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रियों के लिए रिजर्व रखा हुआ है. बाकी और भी हैं जो पब्लिक वहाँ से है तो हम उनको इशारा कर रहे हैं डाइवर्जन के लिए कि आप दूसरे रूट को प्रयोग करो.
0: जी, यानी अगर कोई पैदल या साइकिल पे भी आना चाहता है तो उसके लिए वो रास्ता नहीं है, वो ये सिर्फ कांवड़
1: यात्रियों के लिए सुरक्षित है.
0: जी जी, सो कोई भी व्यक्ति, कोई कांवड़ यात्री है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि फरीदाबाद में से अगर गुजरना है तो आगरा कैनाल वाली जो रोड है उसी का ही इस्तेमाल करें, वो आपके लिए रिजर्व की गई है. इसके अलावा भी सर, अगर कोई ऐसा रूट, कोई ऐसी सड़क जो खासतौर पर से इनके लिए रखी गई है, ये तो एक लंबा पैसेज है जो सीधा सीकरी तक जा रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होकर, शहर के बॉर्डर से शुरू होकर दूसरे बॉर्डर तक है. क्या इसके अलावा भी कोई और ट्रैक बनाए गए हैं?
1: और ये बनाए गए हैं, अगर कोई बदरपुर बॉर्डर आश्रम की तरफ से जैसे आ रहे हैं तो बदरपुर बॉर्डर से आउटर बाईपास होते हुए मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे के नीचे जो सर्विस रोड बनाई हुई है वहां से भी निकल के और वो अपने कैली होते हुए, चंदावली कैली होते हुए और जो है सीकरी अपने जा सकते हैं.
0: जी, अगर कोई शहर में एंटर कर रहा है, फरीदाबाद NIT की तरफ आ रहा है या सेक्टर्स की तरफ जा रहा है, तो वो कहाँ से आए, उसके लिए कोई रास्ता?
1: वो है हमारा यहाँ 28-29 से होते हुए बड़खल चौक, बड़खल चौक से अपना अनखीर होते हुए और बड़खल गांव होते हुए भांकरी पाली ध्वज होते हुए सोना की तरफ वो जा सकते हैं.
0: जी जी, यानी जहाँ भी जाना चाहते हैं वो फिर बीच में शहर में से जा सकते हैं, लेकिन अगर वो शहर को क्रॉस करना चाहते हैं,
1: जिनको सोना की तरफ जाना है वो पाली ध्वज होते हुए वहाँ जा सकते हैं मेडिकल चौक से।
0: जी जी।
1: और जो अगर जिनको सीधा जाना रहो हाईवे पर आ जाते हैं नेशनल हाईवे, तो बदरपुर बॉर्डर से और सीकरी तक नेशनल हाईवे से उनके लिए हमने अलग से एक लेन बनवाई है, तो उस लेन से वो जाके जा सकते हैं।
0: जी जी। ये थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप लेन के बारे में हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं जिनको नहीं जानकारी होगी, कहाँ से एग्जैक्टली शुरू होकर कहाँ तक ये लेन?
1: ये बदरपुर बॉर्डर से वैसे हम उनको कोण लगाएंगे, नेशनल हाईवे से मिलकर हमने उनको किया है कि वहाँ कोण लगाएंगे उसके साथ साथ, और कोण लगा के रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगा के, और ये सीकरी तक जो है लगाएंगे।
0: जी। और दिन रात यहाँ पर
1: ट्रैफिक पुलिस और वैसे लोकल थानों की पुलिस दिन और रात ड्यूटी पे रहेगी।
0: जी।
1: शिफ्टों में रहेगी, दिन में अलग शिफ्ट रहेगी, रात को अलग शिफ्ट रहेगी।
0: जी जी। यानी 24 घंटे यहाँ पर
1: 24 घंटे 11 अगस्त तक ड्यूटी रहेगी।
0: तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट रेडियो मानव रचना। और इस ऐप में पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको फरीदाबाद पुलिस के साथ हुए ये संवाद यानी सुरक्षा संवाद कार्यक्रम के काफी एपिसोड्स मिल जाएंगे, जिनको आप कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने शहर की सुरक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद सपोर्टेड बाय फरीदाबाद पुलिस। और फरीदाबाद पुलिस से आज हमारे बीच हैं एसएचओ ट्रैफिक फरीदाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार जी, और इनसे जान रहे हैं हम ट्रैफिक के कुछ खास रूल्स, चालान और एक्सीडेंट्स को कम करने के बारे में, उठाए गए प्रयासों के बारे में।
1: सर, आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी काफ़ी लगाए गए हैं, और महिला पुलिसकर्मी जो है वो एक, मुझे लगता है कि एक जो अगर कोई महिला जा रही है, वैसे तो बहुत कम होती हैं महिलाएं जो जाती हैं कांवड़ यात्रा में, पर फिर भी अब जागरूकता बहुत बढ़ गई है, बहुत सी महिलाएं जाने लग गई हैं, बच्चे बहुत जाने लग गए हैं, सो उनको किस प्रकार की सेफ्टी सिक्योरिटी दी जा रही है, महिला पुलिस के साथ क्या सुविधा दी गई?
2: महिला पुलिस भी उन पर जैसे शिविर लगे हुए हैं, ये सामाजिक संस्थाएं जो अपने लगा रही हैं शिविर, तो वहाँ पे हमारी महिला पुलिस भी वहाँ रहेंगी, और उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी और उनकी हेल्प के लिए भी, कोई इस तरह की है तो उनकी जो पूरी हेल्प भी हो देते हैं। और बाकी हमारी ईआरवी भी है, राइडर भी हमने वहाँ पर लगाई हुई है
1: जी, किसी तरीके की आपात स्थिति में मदद उनको जाएगी।
2: बाकी उन पे हमने फायर ब्रिगेड भी जो शिविर है उनके पास हमने फायर ब्रिगेड लगाए हैं, फायर ब्रिगेड है, क्रेन है, एम्बुलेंस भी वहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि उनको किसी को कोई दिक्कत भी होती है तो उनको जो दवाइयाँ उसी टाइम पे मिल जाए।
1: जी जी, यानी किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए आपकी तैयारी पूरी तरीके से है। सर, ये तो बात हो गई कांवड़ यात्रा की, जो अपने आप में पूरे, मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे साल भर का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक बहुत बड़ा पर्व होता है जिसको कई दिनों तक मनाते हैं, जैसे 30 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक आपने कहा ही है, और यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन अब आम जनता की बात करते हैं, शहर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये रूट तो आपने विस्तार से बता दिया, तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो ऑफ़ कोर्स ये जान गए होंगे कि कौन कौन से रूट जो है वो बनाए गए हैं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत आ रही है तो 112 पर आप कॉल कीजिए, आपको तुरंत सहायता मिल जाएगी। लेकिन अनुज जी, अब मैं जानना चाहती हूँ फरीदाबाद की ट्रैफिक के बारे में। फरीदाबाद का ट्रैफिक ऐसा है जो आज से कुछ साल पहले, अगर हम 20 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, तो इस शहर में ट्रैफिक जाम लगता ही नहीं था, लोगों को दिल्ली जाकर ट्रैफिक जाम मिलता था, लेकिन फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम नहीं मिलता था। बट अब ट्रैफिक की स्थिति यह है कि हर फ्लाईओवर पे ज़रा सी बारिश आ जाती है तो ट्रैफिक मिल जाता है, और घंटों का ट्रैफिक मिलता है। तो आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, एक पुलिस ऑफिशियल के तौर पर आपसे जानना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा क्या स्थिति है जो परेशान करती है ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक के मामले में?
2: अब जैसे ये बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी भर जाता है रोड पे, तो उसी पानी से बचाने के लिए लोग जो है एक ही लेन में गाड़ी जो है चलाते हैं, जिससे ट्रैफिक जो है धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल जाम तो नहीं होता लेकिन स्लो ट्रैफिक हो जाता है, वो धीरे धीरे चलता है, वो पानी में कोई भी अपनी गाड़ी जो है लेके नहीं चलता। और अब से 10-15 साल पहले की बात करें तो फरीदाबाद में इतने ज्यादा व्हीकल नहीं थे, अब हर घर में शायद 2 या 3 गाड़ी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अब वो सारी गाड़ी जब चलेंगे रोड पर तो आएंगी तो
1: ट्रैफिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन स्लो ट्रैफिक है, जाम यहाँ फरीदाबाद में है नहीं कहीं भी,
1: इतना ज्यादा नहीं मिलता है जैसा आप गुड़गांव से आते हुए या फिर दिल्ली में देखते
2: हैं। स्लो ट्रैफिक है, स्लो तो हो जाएगा लेकिन ये एक जाम नहीं है कहीं पर,
1: बहुत ज्यादा जाम नहीं मिलता। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, बारिश की आपने बात करी तो अभी हाल ही की कुछ पिक्चर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल सी परेशानी भी है। फुट ओवर ब्रिज के नीचे बहुत से बाइक सवार व्यक्ति जो हैं वो खड़े हो जाते हैं नेशनल हाईवे पे बारिश से बचने के लिए। अब वो तो अपना बचाव करते हैं, लेकिन पीछे जो ट्रैफिक आ रहा होता है उनके लिए एक लेन भी नहीं बचती है निकलने के लिए।
2: ये है, इसमें बारिश जब आती है, बिल्कुल ये आपने सही कहा, बारिश जब आती है तो फुट ओवर ब्रिज है उनके नीचे जो बाइक वाले हैं वो खड़े हो जाते हैं, और वो जो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उसके लिए जगह नहीं बचती। तो वैसे हमने अपनी विक्टर छोड़ी हुई है, हमारी 6 विक्टर हैं।

0: आईडी उनको जाती है, उनको जाके साइड में करा के उनको जो है साइड करती है कि अपनी यहाँ से साइड से इनको पीछे वाला जो व्हीकल है उसको जो है जाने दो। हमने अपनी छह गाड़ी लगाई हुई है
1: जी,
0: विक्टर बोलते हैं हम उनको, हमारी जिप्सी है, ट्रैफिक की है तो वो हमने लगाई हुई है
1: जी। सर एक चीज़ बहुत कॉमन है हमारे शहरों में, पूरे भारत की बात करूँगी, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के मामले में अगर घर से थोड़ा सा पास कहीं जाना है तो हर व्यक्ति यही कहता है अरे हेलमेट क्यों लेके जाना है, यहीं तक तो जा रहे हैं, मार्केट तक तो जा रहे हैं, या गाड़ी अगर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते कि ये साथ वाले गली में ही तो जाना है या बाहर तक ही तो जाना है, सीट बेल्ट क्यों लगानी है, दिल्ली में लगाएंगे सीट बेल्ट या गुड़गांव में लगाएंगे सीट बेल्ट, तो ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, मैंने बहुत लोगों में देखी, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए।
0: यहाँ तो ये है कि वो जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में बल्कि बहुत दुर्घटना होने की वो रहती है, जो ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं ये सबसे खतरनाक है, ये अपनी तो जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरे सामने वाले की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, ये एक मिनट जल्दबाजी के चक्कर में इनको अपनी जान की कीमत का नहीं पता, जान कितनी कीमती है
1: गलियों में इधर उधर सब
0: गलियों में। हाँ ये अपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वैसे तो हम इनके जो है चालान कर रहे हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के, और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान करके बल्कि हम उन पर डेंजरस ड्राइविंग के भी वो लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग इससे बाज नहीं आ रहे, बहुत जो है यहाँ है जो हमारे रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो करते हैं।
1: तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग आपके हिसाब से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम?
0: रॉन्ग साइड बहुत ज़्यादा ये समस्या है यहाँ की। अभी हमने जून के महीने में 4,075 रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान करे हैं,
1: सिर्फ जून जून में
0: 4,075 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान करे हैं, और उनके साथ हम अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो हमारे मुंबई वडोदरा पे और इन पे हैं उसमें भी डीजी साहब ने मीटिंग में भी कहा था कि उनमें जो है उनको जो है इम्पाउंड करो व्हीकलों को, तो हम इम्पाउंड भी कर रहे हैं उनको।
1: जी जी, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी,
0: व्हीकल को इम्पाउंड भी कर रहे हैं हम उनको
1: जी,
0: जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, डेंजरस ड्राइविंग भी हम उन पर जुर्माना भी लगा रहे हैं और उनको इम्पाउंड भी कर रहे हैं
1: जी। जुर्माने की बात सर आपने करी है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में रेड लाइट्स पे इतनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, इतनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है कि हर इंसान इससे कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है कि देखता है वो अपनी नज़रों से, जो ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है वो देखता है कि साथ वाला रॉन्ग साइड निकल गया है और थोड़ी देर के लिए भी उसमें क्षमता नहीं है रुकने की, सब्र नहीं है, तो इसका क्या चालान है सर?
0: वैसे तो हमने अभी यहाँ पे रेड लाइट जंप के जो है चालान भी हम कर रहे हैं और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के भी चालान कर रहे हैं। पहली बार में अगर कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो 500 रुपए का उसका चालान है,
1: सिर्फ 500।
0: और वो दूसरी बार अगर वो जुर्माना वो करता है ऑफेंस करता है तो फिर वो 1500 रुपए का है, लेकिन हम उस पर डेंजरस ड्राइविंग हम लगाते हैं तो उसका 5,000 रुपए का चालान है।
1: अच्छा, जैसे
0: एक्सप्रेस वे पर अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग में आपके, तो उसके साथ हम डेंजरस ड्राइविंग लगाएंगे तो 5,500 रुपए का चालान होगा पहली बार।
1: यानी थोड़ा सा कट बचाने के लिए कि थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे चलें, यू टर्न लें, उसकी जगह 5,500 रुपए आप लगा देंगे। और ये कितना डेंजरस है वैसे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग अपने आप में सबसे ज़्यादा डेंजरस ड्राइविंग है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर 80-90-100 से नीचे कोई गाड़ी नहीं चलती है,
0: 100 से 120 के उसमें स्पीड में गाड़ी चलती है, तो उसमें अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेंगे तो वहाँ आपको एक्सीडेंट का पूरी संभावना और वहाँ भी जान भी जा सकती है
1: जी, बिल्कुल।
0: ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से वहाँ बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं
1: जी, एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं, और इनसे बचने के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि स्ट्रिक्टनेस हर जगह होनी चाहिए। 5,500 रुपए का मिनिमम चालान है अगर आप एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप शहर में कहीं कर रहे हैं तो पहली बार पकड़े जाते हैं तो 500 रुपए, और दोबारा पकड़े जाते हैं तो 1,500 रुपए, और गाड़ी भी आपकी इंपाउंड हो सकती है अगर आपने बार बार यही गलती दोहराई तो। अगर एक्सप्रेस वे पर आप रॉन्ग साइड लेकर जा रहे हैं और ये डेंजरस ड्राइविंग में आता है तो आपकी गाड़ी को पुलिस इंपाउंड कर सकती है, उनके पास पूरा अधिकार है।
2: तो दोस्तों बातों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 8010781078 पर। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: हमारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम होनी चाहिए और यही प्रयास रहता है फरीदाबाद पुलिस का भी। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर एज अ नॉलेज पार्टनर। और आज सुरक्षा संवाद में हमारे बीच हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार, SHO ट्रैफिक फरीदाबाद, और मैं हूं दीक्षा। आपके साथ बातें चलनी है आप ही की सुरक्षा के बारे में। जब आप सड़क पर निकले तो आपको सुरक्षा महसूस हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था को कई बार खराब कर देते हैं। तो क्या कदम उठाती है फरीदाबाद पुलिस, ऐसे ही कुछ सवाल और जवाब भी।
1: सर, अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हेलमेट की बात हम कर रहे थे, बहुत सारे लोग टू व्हीलर पे जाते हैं, खासतौर पर से आजकल जो ईवी चल गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इनमें इनकी स्पीड बहुत तेज नहीं होती है, या लोगों को लगता है पास ही जा रहे हैं तो हेलमेट की क्या जरूरत है, ये बाजार तक ही तो जा रहे हैं, क्या ऐसे में भी चालान काटा जा सकता है? ऑल्दो काटते नहीं हैं, ज्यादा चालान किया नहीं जाता है क्योंकि सबको ही पता है आसपास है, बहुत तेज नहीं चला रहे हैं, बट चालान की प्रावधान तो रखा गया है।
2: नहीं, वो तो अगर हेलमेट नहीं लगा के चलेंगे तो चालान का तो प्रावधान है, क्योंकि वो अगर वो चलने, वो भी तो उनके सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो जो है हेड इंजरी से ही होते हैं, और हेड इंजरी जानलेवा है, तो हेलमेट तो सभी के लिए जरूरी है।
1: जी,
2: हेलमेट तो सभी के लिए जरूरी है, और फिर कुछ लोग तो हेलमेट को ऐसे हाथ में टांग लेते हैं, या फिर पुलिस को देख के वो हेलमेट लगा लेते हैं, जबकि हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए।
1: मुझे एक्चुअली मैं आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते, इतनी उलझन क्यों है? जिंदगी बचाना जरूरी है या बालों को बचाना जरूरी
2: है? जिंदगी बचाना जरूरी है, जिंदगी बचाना। ये हेड इंजरी का कारण जो है, सबसे पहले सड़क पर गिरने से हेड इंजरी होती है, और उसी से जान जा सकती है,
1: मतलब ज्यादातर एक्सीडेंट्स इन चीजों से रोके जा सकते हैं। सर, बहुत सारी लेडीज नहीं लगाती हैं हेलमेट, बहुत सारी लड़कियां जो हैं कॉलेज की बहुत तेज चलाती हैं, और आजकल तो लोगों ने फोन भी साथ साथ देखना शुरू कर दिया, फोन उठाना, बात करें, एक हाथ से स्कूटी चल रही है, एक हाथ फोन पे कान पे लगा हुआ है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे?
2: ये जो मोबाइल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक मोबाइल यूज भी है, उस पे मोबाइल से बात करेंगे तो उसका ध्यान जो है भटक जाएगा, उसका ध्यान अलग हो जाएगा। मोबाइल उसके यूज के हम जो है वो चलान भी करते हैं, जो कोई हम ऐसे देखते हैं तो उसका मोबाइल यूज के भी चलान जो करते हैं।
1: कितना कितना चलान?
2: 2000 रुपए तक जो है इसका चलान है,
1: 2000 रुपए तक मोबाइल यूज का चलान है। और मोबाइल तो मैंने सर देखा है कि ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा बंदा गाड़ी में यूज कर रहा होता है या बाइक पे यूज कर रहा होता है।
2: उसका हम अगर फोटो ले लेते हैं और जो उसका चालान करते हैं, गाड़ी को रुकवा के फिर उसका चालान करते हैं।
1: अच्छा, और चालान वहाँ पर भी दे सकते हैं या सीधा कोर्ट में जाकर देना?
2: सीधा वहाँ 3 महीने तक हमारे यहाँ रहता है चालानिंग ब्रांच में, सेक्टर 12 में, और उसके बाद हम 3 महीने बाद उसको वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं कोर्ट में।
1: जी जी जी। तो ये तो अपने आप में देखिए, 2000 रुपये आप सिर्फ एक हेलमेट ना लगाने का दे रहे हैं, उससे अच्छा आप 2000 रुपये का हेलमेट खरीदें, उसका इस्तेमाल करें, खुद भी सेफ रहें और बाकी लोगों को भी सेफ्टी प्रदान करें। सर, एक और बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है स्कूल के बच्चे जो 18 साल के नहीं हुए हैं, वो बाइक या गाड़ियाँ चला रहे हैं, और ऐसे में वीडियोज़ आती हैं बहुत सारी, पुलिस वीडियो पर एक्शन भी लेती है, उनको पकड़ती भी है। हाल ही में थोड़े टाइम पहले ही अभी बच्चे गाड़ी में हुड़दंग करते हुए जा रहे थे, ऐसी वीडियोस वायरल हुई बहुत ज़्यादा, उनको आपने पकड़ा भी, बच्चे जो थे कॉलेज के या स्कूल के बच्चे, अभी 18 साल के नहीं, और अपने घर से बड़ी बड़ी गाड़ियां लाके इस तरीके से चला रहे थे। सर, इसका क्या चालान है? क्या बच्चों पे एक्शन लिया जाता है या पेरेंट्स पे एक्शन लिया जाता है?
2: ये तो जो नाबालिग बच्चों को जो अपने गाड़ी दे रहे हैं, ये तो हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को जो है गाड़ी ना दें। अब तो ये प्रावधान आया है कि उसमें जो पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी, अगर पेरेंट्स बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अपने को देंगे तो उनको पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये कानून आया है।
1: क्या कार्रवाई होती है सर पेरेंट्स?
2: इसमें वही जुर्माने का ही प्रावधान है।
1: क्या ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स को अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचता है, एक्सीडेंट हो जाता है सपोज, तो ऐसे में पेरेंट्स को भी जो है जेल वगैरह जाने का?
2: हाँ, पेरेंट्स को भी जो जिनकी गाड़ी है और जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को, ये देखते हुए भाई ये नाबालिग हैं, ये गाड़ी नहीं चला सकेंगे, और फिर भी उनको बच्चों को गाड़ी दी है, तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी फिक्स करेंगे और उनको जो है उसमें जो है दोषी माना जाएगा।
1: जी जी जी। सर, स्कूल वैन के बारे में बात करना चाहूँगी, ऑटोज के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि इनमें जब बच्चे जाते हैं स्कूल के तो बहुत ज़्यादा भर के जाते हैं, क्या इसमें कितने बच्चे बैठने चाहिए और क्या इन पर भी कोई चालान होता है? क्योंकि ये CNG या LPG से चल रही होती हैं, सिलेंडर लगे होते हैं, फिर भी छोटे छोटे बच्चे उन गाड़ियों में भरे हुए होते हैं।
2: वैसे तो ये है कि ये जो इको वैन है ये कॉमर्शियल यूज में आती है, कॉमर्शियल यूज में जो है ये इनके चालान होते हैं 10,000 रुपये का चालान है, इसका, मतलब अगर जो कमर्शियल यूज में अगर इस तरह बच्चों को ऐसे भर के लिए जाएंगे तो उसमें कमर्शियल यूज का 10,000 रुपए का चलान है।
1: 10,000 रुपए का चलान है और गाड़ी उनकी पर्सनल नंबर पे,
2: गाड़ी उनकी पर्सनल नंबर पे होती है, ये कमर्शियल यूज करते हैं तो उस पर 10,000 का चलान है,
1: जो अपने आप में बड़ा चलान है।
2: हाँ, अपने आप में 10,000 रुपए कोई मामूली नहीं है। और उनके जो हम चलान करते हैं, जो ये अपने इको वगैरह में जो बच्चों को लेकर जो चलते हैं, वैसे तो उनकी जो बस है, बस में अपने बच्चों को लेकर जाएं, स्कूल की बस जो
1: है ज्यादा सेफ है, ऑफ कोर्स।
2: ये तो नहीं है, और ये इसमें टू टूस के जो भर लेते हैं बच्चों को, तो इस पर जो हम चलान करते हैं तो इसका 10,000 का चलान है कॉमर्शियल यूज का, इको का।
1: यानी अगर आपने पर्सनल गाड़ी ली हुई प्राइवेट नंबर है और आप उसको कमर्शियल में इस्तेमाल करें बच्चों को लाने ले जाने के लिए, तो 10,000 रुपए का चलान आपका, चाहे उसमें 4 बच्चे बैठे हो चाहे 14 बच्चे बैठे हो, वो चलान
2: आप उसको आप कमर्शियल यूज में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो आपकी पर्सनल की है।
1: जी जी जी, तो इसको कमर्शियल में लेंगे तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। सर, एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है, वो आती है सीट बेल्ट को लेकर। मैं सीट बेल्ट की बात सर इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सीट बेल्ट चाहे थोड़ी देर के लिए हटाया हुआ हो, एक्सीडेंट होने पर वो इतना गंभीर हो जाता है कि जानलेवा भी साबित हो जाता है। सीधा सिर जो है वो टकराता है सामने शीशे से,
2: बिल्कुल,
1: और लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है रूफ खोल के, सनरूफ खोल के और खड़े हो जाते हैं और एक्सप्रेसवेज पे गाड़ियां चल रही होती हैं। सीट बेल्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए सर, क्यों लोग नहीं लगाते, क्या धारणा होती है उनकी मानसिक?
2: वैसे तो देखो, सीट बेल्ट लगानी चाहिए सबसे पहले, जब अगर आपकी गाड़ी कहीं टकराएगी तो आपका, अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी तो आप सेफ हैं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो सबसे पहला आपका सिर जो है उसमें लगेगा डैशबोर्ड में, और जो वहीं उसमें जो है बहुत ज़्यादा चोट लगने की रहेगी। हाँ, तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा सभी को कि भैया अपनी गाड़ी में बैठें, गाड़ी में बैठते टाइम सबसे पहले सीट बेल्ट ही लगाएं।
1: आजकल तो गाड़ियों में अलार्म भी बजता है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
2: गाड़ी में सब वो तो अलार्म बजता रहता है, तो आप उसको देख के भी, अगर आपने नहीं भी लगाई है तो भी अलार्म देख के आपने कुछ सही नहीं किया तो अपना सीट बेल्ट जो है लगाएं।
1: बिल्कुल, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने अच्छे पैसे देकर आपने खरीदी है तो उसकी सीट बेल्ट का लाभ उठाएं।
2: और सनरूफ जो अपने खोल के जो चलते हैं, जिसे आउट ऑफ बॉडी पार्ट्स जो ऐसे चलते हैं, तो हम तो उनके जो स्टंट करते चलते हैं, हम तो उनके जो है चलान करते हैं।
1: कितना चलान करते हैं? अभी हाल ही में भी हुआ है कुछ वीडियोस,
2: अभी वीडियो जो वायरल हुई है उसमें 10,000 रुपए का चलान,
1: 10,000 का
2: टोटल, 10,000 के चलान हमने किए हैं।
1: जी,
2: जो स्टंट करते हुए जो चल रहे हैं और ऊपर सनरूफ में अपने जो बच्चे खड़े किए हुए हैं या और एक्शन करते चलते हैं, स्टंट करते हैं, तो हमने 10,000 तक के उनके चलान किए हैं।
1: तो काफी बड़ा चलान हो,
2: काफी बड़ा चलान हो जाता है, लोगों को सुधारने के लिए भी है और कि ये जुर्माने से जो है आगे से ऐसा ना करें।
1: जी बिल्कुल,
2: ये जानलेवा हो सकता है।
1: बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। और हाल ही में सर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक्सप्रेस वे पर एक गाड़ी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ के गया था, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं कि ऐसे जो स्टंट करते हैं आजकल के बहुत सारे लोग, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए स्टंट करते हैं, कुछ तो मजबूरी में चलिए ऊपर बैठ गए, पर वो भी एक कोई सेफ तरीका नहीं है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासतौर पर से उन यंगस्टर्स को, उन जवान बच्चों को जो करते ही रहते हैं इस तरीके के स्टंट?
2: देखो, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी इस तरह के जो स्टंट ना करें, जो भी अपने जिसमें गाड़ी अपने चलानी है या बैठ के आना है, तो अपने सही से सीट बेल्ट लगा कर आराम से चलें। ये उस पर जो खड़े होंगे चलेंगे या गाड़ी के जो उससे बाहर जो खड़े होंगे तो उन पर चलान होगा। और अभी हमने KGV पे भी इस तरह का आदमी बैठ के जा रहा था, उन पर मुंबई वडोदरा पे भी मैंने जो है चलान किए हैं उनके।
1: आपने चलान किए 10,000 के?
2: हाँ, उनकी वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो हमारे पास आई है, हमने फिर उनके जो चलान करे।
1: तो आप जैसे कभी वीडियो देख रहे हैं और आपको पता चल गया ये तो फरीदाबाद की वीडियो है, तो आप फिर उस गाड़ी को ढूंढते हैं नंबर से?
2: हाँ, उस गाड़ी को हम नंबर से सर्च करते हैं और उसके देखते हैं कहाँ से ये वीडियो वायरल हुई है, फिर उसकी लोकेशन और टाइमिंग लेके फिर उसका चलान करते हैं।
1: तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, कृपया करके चलान से बचने के लिए ऐसे स्टंट करिए ही मत। क्यों आप अपने 10,000 रुपए लगा रहे हैं?
2: हम इनको सर्च करते हैं किस डेट का है, कब इन्होंने ये स्टंट किए हैं, तो उसके डेट, टाइम और लोकेशन लेके उसकी उस दिन का फिर हम चलान करते हैं।
1: क्या बात है, मतलब ये थोड़ी कोशिश है सुधारने की लोगों को।
2: जी,
0: बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम है सुरक्षा संवाद और सुरक्षा संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमारे साथ जुड़ते हैं फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी और बात करते हैं आप ही की सेफ्टी के बारे में, चाहे वो हो ट्रैफिक से जुड़ी हो, चाहे वो महिला सेफ्टी हो या फिर बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात हो या फिर साइबर फ्रॉड को रोकने के बारे में। हमारे एक्सपर्ट ऐसे ही हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार जो कि SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद पुलिस में। आइए जानते हैं और भी बहुत सी बातें रोड सेफ्टी के बारे में।
1: सर मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं सुधार के बारे में, लेकिन शहर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ट्रैफिक सिग्नल में कैमरे लगे हुए मिल रहे हैं, क्या ये कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं?
2: हमारे यहाँ 1300 कैमरे हमारे लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के रेड लाइट पे लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ कैमरे अभी कुछ खराब क्यों आ रही है उनके लिए हमने पत्राचार किया हुआ स्मार्ट सिटी को, और बाकी वैसे
1: ज्यादातर
2: कैमरे ठीक हैं। जो हमें पता लगता है कि भाई यहाँ रेड लाइट खराब है या यहाँ कैमरे खराब है तो हमको स्मार्ट सिटी से जो है ठीक कराते हैं।
1: जी जी, स्मार्ट सिटी से वो कैमरे आप ठीक कराते हैं और मतलब वो सारे काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अक्सर हमें ये कहते हैं मैडम ये कैमरे काम नहीं
2: उनको,
1: करते हैं।
2: उनके दिमाग में ये है कि गलतफहमी है उनको कि भाई कैमरे बंद हैं या कैमरे काम नहीं कर रहे, जबकि ज्यादातर कैमरे चालू हैं
1: और सब दिख रहा है,
2: सब दिख रहा है। मान लिया अगर कोई हो भी ज्यादा खराब तो हम उनके लिए लेटर लिख के उनको ठीक कराते हैं।
1: जी जी सर, एक आजकल लोगों के पास कई बार चालान आता है, गलती से आ जाता है, गाड़ी कहीं और खड़ी है, चालान आ गया है, तो उसमें कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो?
2: वो अगर इस तरह की कोई आ जाती है या तो कोई टेक्निकल मशीन में फॉल्ट हो जाता है या कैसे, जैसे हम एक दबाना होता है तो दो दब जाता है वहीं की वहीं, तो उससे टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो हमारे DCP ट्रैफिक साहब है उनको जो है आप मेल भी कर सकते हैं और उनको आप

0: एप्लीकेशन
1: दे सकते हैं, हम दे सकते हैं
0: एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो उसमें अगर वो जो टेक्निकल जो हुई है कमी तो उसको जो है गलती जो है ठीक हो जाएगी।
1: जी जी सर, एक और जानकारी लेना चाहूंगी, अगर हम बाईपास से जाते हैं तो वहां पर अभी रेड लाइट्स नहीं लगी हैं बहुत सारी जगहों पर, और लोगों को बहुत दिक्कत आती है वहां से क्रॉस करने में, एक डर भी बना रहता है खासतौर पर से रात के समय जब नीचे से गाड़ियां तेज आ रही होती हैं सुबह सुबह, सो क्या यहां पर आगे आने वाले समय में ट्रैफिक लाइट्स लगने वाली हैं?
0: हाँ, अभी हमने इनको जो है लेटर लिखा हुआ है NHAI को
1: जी,
0: और अभी मीटिंग में भी हमारे इनसे बात हुई है, तो ये लगाते हुए आ रहे हैं पीछे से, ये अपने आगरा फिरोजपुर झिरका की तरफ से जैसे मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे तो उधर से ही लगाते हुए आ रहे हैं, और यहाँ भी जल्दी हमारे लग जाएगा, और उसमें जो है ANPR के कैमरे भी लगेंगे जिससे ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा ओवर स्पीडिंग का भी।
1: ओके, यानी ओवर स्पीडिंग का भी चालान कटेगा और ट्रैफिक सिग्नल सही तरीके से काम करेंगे तो सुचारू रूप से ट्रैफिक भी चलेगा।
0: वैसे तो हमारी अब भी इन रूट पे जैसे गुड़गांव रोड पे वहाँ पे भी हमारी इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी होती है ओवर स्पीडिंग के लिए, और यहाँ बदरपुर बॉर्डर फ्लाईओवर पे भी हमारी रहती है, कैली पे भी रहती है, तो यहाँ पे हमारी ओवर स्पीड की इनके इंटरसेप्टर हमारी गाड़ी रहती है जो ओवर स्पीड के जो चलते हैं तो उनके जो है चालान करते हैं।
1: जी, बहुत सारे लोगों को सर ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट समझ नहीं आता, उनको लगता है कि 60-70-80 पे गाड़ी चलाना शहर में आम बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, स्पीड कितनी रखनी चाहिए हमको?
0: देखो, अगर ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे उस पे तो हम 100 की स्पीड से अगर आपने गाड़ी चलाई है तो उस पे हम जो चालान करते हैं, ओवर स्पीड का 2000 का चालान है,
1: 2000 का चालान है 100 से ऊपर जाने का, जैसे 80 तक ज्यादातर
0: और इसी तरह नेशनल हाईवे पे है, नेशनल हाईवे वैसे 65 की गाड़ी जो है चलनी चाहिए,
1: लेकिन 65 पे बहुत कम चलती
0: है। 65 पे जो इससे आगे चलेगा वो हमारी इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी होती है और वो कैच कर लेती है स्पीड, वो कैच कर लेती है और उस पर फिर ऑटोमेटिक उनके घर मैसेज पहुंच जाता है चालान का।
1: जी जी जी, और जैसे हम सूरजकुंड रोड से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि रेड लाइट है, कई बार काम भी करती है, चलती भी है, कई बार नहीं भी चलती है, तो ऐसे में क्या स्पीड रखनी चाहिए? 60 के आसपास?
0: 60 के आसपास, हाँ ये तो वन वे है, 60 के आसपास जो 60-65 पर ही रखनी चाहिए, इससे ज्यादा फिर इसमें मोड भी है वो वैसे भी रिस्की है।
1: जी बिल्कुल,
0: इस पे तो हाँ पहाड़ों पर वहाँ तो मोड भी बहुत है।
1: जी बिल्कुल, तो स्पीड का थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है ओवर स्पीडिंग की वजह से, अक्सर हमने देखा है कि सामने खड़ा हुआ ट्रक या फिर गाड़ी हमें नज़र भी नहीं आती है और एक्सीडेंट बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए ओवर स्पीडिंग से बचने के बारे में ज़रूर एक बार सोचिए, और चालान 2000 रुपये का है उससे भी आपको खुद को बचाना है तो स्पीड को कंट्रोल में रखिएगा। अनुज जी, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी शहरवासियों को जो आपको आज सुन रहे हैं?
0: मैं तो ऐसे उच्च ट्रैफिक होने के नाते यही फरीदाबाद की जनता से अपील करूंगा कि भाई यातायात नियमों का पालन करें, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाएं और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करें, यातायात नियमों का पालन करें, तभी जो है सबकी जो जान है तो जहान है।
1: जी
0: जी, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि आप थोड़ी सी एक 2 मिनट की जल्दबाजी के चक्कर में आप अपनी जान गंवा देते हो, एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सारी जिंदगी बच्चों को पछताना पड़ता है।
1: जी,
0: आपके पीछे भरा पूरा परिवार है, तो मैं तो ये कहता हूँ रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं चलाएं और अपने यातायात नियमों का पालन करें।
1: जी, यातायात नियमों का पालन करें, बहुत सारे यातायात नियम है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हुए ये कुछ भी रैंडमली आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आपसे नहीं पूछा था या आपको नहीं याद है तो एक बार इंटरनेट पर जाकर इन यातायात के नियमों को, इनके साइंस को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार से इनको फॉलो करना है, अगर किसी तरीके से आप भूल भी गए हैं तो बहुत ज़रूरी है यातायात के नियमों को फॉलो करना अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए भी जो सड़क पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में लगभग 1.5 लाख से 1.75 लाख लोग हर साल हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं, कभी ये लोग सड़क पर चल रहे होते हैं तो कभी ये लोग खुद की गाड़ी में या बाइक पर होते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो कृपया करके खुद को हमेशा सेफ रखें, यातायात के नियमों का पालन करें। अनुज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपकी दी हुई जानकारी से हमें यकीन है कि बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
1: तो कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात अगले हफ्ते नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपको उन लोगों से मिलवाती हूँ, उन संस्थाओं से मिलवाती हूँ जो संस्थाएं मानवता की राह पर चल रही हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मानवता की राह को आज भी पकड़े हुए हैं, और या फिर इंडिविजुअली या किसी संस्था के साथ जुड़कर वो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो काफी फेमस एनजीओ है और वो कहलाता है रॉबिनहुड आर्मी। रॉबिनहुड आर्मी एक बहुत ही खास इनिशिएटिव के साथ आया है और ये क्या इनिशिएटिव है चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसके लिए करेंगे आज हम स्वागत पल्लवी त्यागी जी का, जो आज की हमारी गेस्ट हैं और जो सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं फरीदाबाद की भारत लर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। ये रॉबिनहुड आर्मी का एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है और इसके बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे पल्लवी जी का स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट टाइम में हम लोगों का ये मिशन को स्प्रेड करने में आपने हमारी हेल्प करी, थैंक यू सो मच।
1: पल्लवी जी, रॉबिनहुड आर्मी के बारे में पहले हमारे सभी लिसनर्स को बता देते हैं, सो किस तरीके से इस आर्मी की शुरुआत हुई और हम एग्जैक्टली इसे रॉबिनहुड आर्मी क्यों कहते हैं?
2: रॉबिनहुड आर्मी की शुरुआत 2014 में दिल्ली से हुई थी। अब तक हम 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं और नील घोष इसके फाउंडर हैं। इसका उद्देश्य था कि होटल, रेस्टोरों और पार्टी में बचा हुआ सुरक्षित भोजन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। आज यह पूरी तरह से जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सहित कई देशों में लाखों लोगों तक सेवा पहुँचा रही है। भारत में 406 सिटीज में और 13 कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं।
1: बहुत खूबसूरत। और देखिए भाई, रॉबिनहुड आर्मी के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं कि भाई ये जो आर्मी के लोग हैं, जितने भी इनके वॉलंटियर्स हैं, अच्छी बात ये है कि ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा कोई भी शख्स जिससे रात का भोजन या दोपहर का भोजन या सुबह का भोजन ना मिला है, ऐसा कोई भी शख्स ना रह जाए। बहुत सारा खाना है जो कई बार वेस्ट हो जाता है, उस खाने को वेस्ट होने से पहले उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहे और वो बिल्कुल अच्छा खाने लायक भोजन हो तब तक लोगों को पहुंचा दिया जाए। लेकिन रॉबिनहुड आर्मी सिर्फ यही नहीं करता है, कुछ खास चीजें हैं जो अब वो और भी करने की कोशिश कर रहा है। हर साल एक नए इनिशिएटिव के साथ आते हैं, खास तौर पर 15 अगस्त के आसपास। तो करेंगे इसके बारे में भी बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं पल्लवी त्यागी जी के साथ रॉबिनहुड आर्मी से। रॉबिनहुड आर्मी लेकर आई है एक खास इनिशिएटिव, भारत लर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं फरीदाबाद की पल्लवी त्यागी जी। पल्लवी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत लर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब लॉन्च हो रहा है, क्या है ये इनिशिएटिव और कैसे इसे आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं?
1: हाँ जी, ये 15, आपको जैसे पता है कि हम लोग 15 अगस्त को अपना मिशन करते हैं, तो ये 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है
0: जी।
1: और भारत लर्न AI का उद्देश्य भारत के जरूरतमंद बच्चों को AI और डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है
0: जी।
1: हम उन्हें सिखाते हैं कि AI का उपयोग पढ़ाई में, अंग्रेजी सीखने में, सामान्य ज्ञान बढ़ाने और रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक तरीके से कैसे किया जा सकता है
0: जी। तो मुझे बताइए कि भारत लर्न्स AI का दरअसल मिशन क्या है, कितने सेंटर्स आप करने वाले हैं, क्या ये हर स्टेट में होने वाला है, हर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, और साथ के साथ इसके थ्रू किस प्रकार से आप इसे आगे लेकर जाने वाली हैं?
1: हाँ जी, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे भारत में रॉबिनहुड आर्मी 406 सिटीज में है, तो ये मिशन सब सिटीज में चलेगा। और फरीदाबाद में हमारी जो एकेडमीज चल रही हैं, रॉबिनहुड एकेडमीज, हम जो है लर्निंग सेंटर्स हैं, स्कूल से हमने टाइप किया है, कुछ NGO से टाइप किया है, कॉलोनी और सामुदायिक केंद्र हैं, उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचेंगे। रॉबिन्स की मदद से निशुल्क AI लर्निंग सेशंस आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चा इस नई तकनीक से जुड़ सके।
0: वाओ, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए जिन्हें एक्चुअली इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ,
0: कैसे होगा ये, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बारे में बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर इस प्यारे से गाने के बाद मैं वापस आ गई हूं। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं पल्लवी त्यागी जी के साथ, जो कि रॉबिन है रॉबिनहुड आर्मी की, सिटी रिप्रेजेंटेटिव है फरीदाबाद की भारत लर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। ये बड़ा खास इनिशिएटिव है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। पल्लवी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फरीदाबाद में जैसे आप कह रही हैं कि हमारी जितनी भी रॉबिनहुड एकेडमी है, स्कूल्स हैं, एनजीओस हैं, सो किस तरीके से आप इनके साथ टाई अप करेंगे और उसमें किस तरीके से जितने भी बच्चे हैं या जरूरतमंद हैं उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई कैसे जाएगी?
1: हम 15 अगस्त से देश भर में 250 AI सेंटर्स, लर्निंग सेंटर्स खोलेंगे, शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को AI की बुनियादी समझ, मतलब कि AI को कैसे यूज किया जाता है, अंग्रेजी सीखना, उनको पढ़ाना और उनको पढ़ाई में AI का उपयोग कैसे किया जाए, डिजिटल साक्षात्कार और जिम्मेदारियों से तकनीक का उपयोग करना सिखाया जाएगा।
0: जी, तो देखिए भाई, सबसे जरूरी चीज है, आज के जमाने में ना टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है और जब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे नीडी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है, और अगर उन्हें ये टेक्नोलॉजी सिखा दी जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करना या उससे लेना, उसमें खर्चा होता है, फिर आप उसे सीखने जाएं उसका अलग खर्चा होता है। लेकिन अगर कोई वॉलंटियर आकर आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दे और बहुत ही कम सस्ते दर के जो इंटरनेट है उस सेवाओं से इस्तेमाल करते हुए आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर पाए, ना सिर्फ आपकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी, आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में आपके लिए सब कुछ करके देता है, एक प्रैक्टिकली रोबोट असिस्टेंट की तरह। हाँ, बस आप उसे खाना नहीं बनवा सकते हैं लेकिन उसके अलावा तो वो सब कुछ कर ही देता है। सो ये सारी चीजें जो हैं वो उन सभी बच्चों को सिखाई जाएंगी जो बच्चे रॉबिनहुड आर्मी की एकेडमीज में आते हैं, अलग अलग एनजीओज में, और कोशिश की जाएगी कि जन जन तक ये पहुंचाया जाए। भाई, ये इनिशिएटिव बहुत खास है और मुझे ऐसा लगता है वाकई भारत जब AI सीख जाएगा, जो कि आज का बज वर्ड है, विश्व में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि जितनी इन्वेस्टमेंट है आज के समय में वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में हो रही है लेकिन भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। सो ऐसे समय में जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सीखें, इसे इस्तेमाल करें और हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करके अपने जीवन को और भी आसान बनाएं। और ये खास इनिशिएटिव लेकर आया है रॉबिनहुड आर्मी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त है एक और प्यारे से गाने का, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। इस गाने के बाद पल्लवी जी से पूछते हैं अगला सवाल। पल्लवी जी, मुझे ये बताइए कि इस इनिशिएटिव के थ्रू और क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों में सुधार लेकर आएगी, या क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों को मिलेंगी?
1: हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको, बच्चों को जो है उनको जागरूक किया जाएगा, उनको AI के थ्रू पढ़ाया जाएगा
0: जी।
1: और बच्चों का जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके होमवर्क कराए जाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया जाएगा, बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी।
0: पल्लवी जी, क्या कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास खुद के पास पर्सनल मोबाइल फोन नहीं होगा, खासतौर पर एंड्रॉइड वाला मोबाइल फोन, जहाँ पर कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? सो ऐसी कंडीशन में कैसे आप लोग कोशिश करेंगे कि उन्हें भी सिखाया जाए?
1: सबसे बड़ी चुनौती है भावना जी हमारे पास में ये कि उनके पास में जो है उनके इक्विपमेंट्स नहीं है
0: जी।
1: तो ये सबसे बड़ी कमी है, डिजिटल संसाधनों की कमी है। तो जो है हम लोग जो अपने AI सेंटर्स बना रहे हैं तो उनमें हम जो है बच्चों को रॉबिन्स मोबाइल्स प्रोवाइड करवाएंगे और लैपटॉप वो कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे।
0: वाओ, सो भाई ना सिर्फ मैं चाहती हूँ कि सपना ज़रूर पूरा हो, लेकिन ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है मैं चाहती हूँ कि ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि जिन बच्चों के पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है उन बच्चों को भी ये टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। और आने वाले भविष्य में आप खुद ही सोचिए, जब टेक्नोलॉजी होगी, नॉलेज होगी और साथ के साथ सुविधाएं होंगी, तो ये भविष्य कितना खूबसूरत हो जाएगा उन सभी बच्चों का जिनको हम आज तक ये कहते हैं ये अंडर प्रिविलेज हैं और इन्हें अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं पता हैं। बहुत ही खास इनिशिएटिव और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। जुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। जी हाँ, आज हम इस कड़ी में बात कर रहे हैं पल्लवी त्यागी जी के साथ, जो कि सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं फरीदाबाद की, भारत लर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव की रॉबिनहुड आर्मी से, यानी ये भी एक रॉबिन है। पल्लवी जी, जैसे मैंने कहा कि चुनौतियां बहुत जरूरी है, कि हमें उन चुनौतियों को रियलाइज करना है, और जितना सफर आसान लगता है उतना ही जब आप इसे एग्जीक्यूट करने लगते हैं सो पता लगता है कि क्या क्या हर्डल्स आएंगी। सो किस प्रकार की और चुनौतियां हैं जो आपको आने वाली हैं? एक चुनौती के बारे में हमने जरूर बात की कि टेक्नोलॉजी को यूज करना अगर सिखा दिया तो क्या वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, यानी मोबाइल फोन। लेकिन मोबाइल फोन के अलावा मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए कि पूरे परिवार में एक एंड्रॉयड फोन भी है और बच्चा उसको इस्तेमाल कर भी ले, तो क्या उनके पास इतना पैसा या इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उसका रिचार्ज करवाएं और समय समय पर जो डेटा है इंटरनेट का वो भी मिलता रहे? किस प्रकार की चुनौतियां हैं आपके सामने?
1: हाँ जी, तो इसीलिए हमने अपने ना AI सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं फरीदाबाद में, जिससे वो बच्चे वहाँ पे आएंगे और एक बच्चे के ऊपर, मतलब 5 बच्चों के ऊपर एक रॉबिन उनको ये सब सिखाएगा, AI को यूज करना सिखाएगा।
0: पल्लवी जी, जब आप ये कह रही हैं कि 5 बच्चों पर एक रॉबिन सिखाएगा, तो मुझे ये बताइए कि किस किस लोकेशंस पर आप कोशिश कर रहे हैं इन सेंटर्स को लाने की, और ये जो रॉबिन्स हैं ये समय कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये जो लोग हैं, जो आपके वॉलंटियर्स हैं, रॉबिन्स कहलाते हैं, ये खुद भी तो बिजी होते हैं, तो किस समय पर ये सिखाने का इनिशिएटिव है?
1: भावना जी, जैसे कि फरीदाबाद में अभी हमने 4 सेंटर्स अपने भारत ALCs बनाने के लिए प्लान किया है
0: जी।
1: हमने NGOs के साथ टाइप किया, हमारी खुद की अपनी पर्सनल अकेडमीज हैं, जैसे DPS अकेडमी है। DPS अकेडमी ने आफ्टर स्कूल हमको प्लेस प्रोवाइड की हुई है, तो वहाँ पर हम 3 बजे से और 5-5:30 बजे तक वहाँ पर क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पर हमें सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, कंप्यूटर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज
0: जी।
1: तो वो हमारा एक AI सेंटर है। ऐसे ही हमने 2 NGOs के साथ टाई अप किया है, तो ऐसे उनके साथ उनके पास भी सब कुछ है, तो ऐसे हम फरीदाबाद में हमने 4 पॉइंट्स अभी
0: सेंटर्स डेवलप कर लिए हैं।
1: हाँ जी।
0: वाओ पल्लवी जी, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमारे जितने भी लिसनर्स हैं भाई, अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपको अब तक लग रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने बच्चों को सिखाना है लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, तो रॉबिनहुड आर्मी ने ये खास इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब छोटी छोटी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे सीखा जाए, क्या आपको पता है कि बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है? अब आपको अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक प्रॉम्प्ट देते हैं, सिर्फ एक कमांड देते हैं और बोलकर भी आप उसे दे सकते हैं, और वो काम आपके लिए हो जाता है। एक प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई क्रिएटिव निकालना है, या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ भी आपको करना है, ऐसे लिखना है या आपके पढ़ाई के होमवर्क में मदद चाहिए, ये सब कुछ आपको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग पोर्टल्स पर मिल जाता है। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए ये आपको नहीं पता है। अब ये सारा काम करने वाले हैं रॉबिन्स, यानी रॉबिनहुड आर्मी के वो वॉलंटियर्स जो आपके लिए समय निकालने वाले हैं। इस प्रकार के लर्निंग सेंटर्स का तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इन लर्निंग सेंटर्स तक आए, आप इन लर्निंग सेंटर्स में सीखें। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है

0: होएं और इसको स्प्रेड करने में और इसमें आगे आए और पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए।
1: वंडरफुल भाई, ये काम तो मुझे लगता है मेरे सभी लिसनर्स जो फिलहाल हमें सुन रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है। थोड़ा सा समय निकालना है, मतलब आप सोच लीजिए कि आप मोबाइल फोन को छोड़कर थोड़ा सा समय निकालेंगे और उन बच्चों के पास जाएंगे एक अच्छे रॉबिन बनते हुए। रॉबिन हुड आर्मी के साथ जुड़िए और इस इनिशिएटिव के साथ जुड़िए, किसी के भविष्य को बनाने की कोशिश करिए। एंड आई एम श्योर ये आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक होम मेकर हैं, अब अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जो 9 to 5 की जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, आप सबके पास थोड़ा सा समय होता है और कई बार ये समय हम अपने मोबाइल फोन में बिता देते हैं, कई बार हम इसे यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। बस अब आपने ये थोड़ा सा समय जो है ना ये निकालना है और इन सभी बच्चों की मदद करनी है। तो उसके लिए आप इनके इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं, यानी रॉबिन हुड आर्मी के इस खूबसूरत से इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें।

0: और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं पल्लवी त्यागी जी के साथ, जो कि सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं फरीदाबाद की भारत लर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव की, रॉबिनहुड आर्मी। सो पल्लवी जी, मुझे बताइए, ढेर सारे सवाल आपसे पूछे और आपने आज इनिशिएटिव के बारे में हमारे सभी लिसनर्स को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, क्या खास कहकर जाना चाहेंगी हमारे सभी सुनने वालों से?
1: हाँ जी, यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत आज से, अभी से करें। समय, ज्ञान और सेवा का छोटा सा योगदान भी किसी बच्चे का भविष्य बना सकता है। तो आप थोड़ा सा अपना समय निकालिए और उन जरूरतमंद बच्चों को अपना थोड़ा समय दीजिए। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां कोई भूखा ना सोए और हर बच्चा AI के साथ सीखने का अवसर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: थैंक यू सो मच पल्लवी जी, बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही दिल को छूने वाला मैसेज आपने दिया है। वाकई हम सब मिलकर अपने भारत को उज्जवल बना सकते हैं भाई, जब हम ये गैप हटा देंगे, हर बच्चे को इनिशिएटिव के साथ जोड़ेंगे और हर बच्चे को ये मौका मिलेगा कि वो भी वैसी ही शिक्षा पा सके जैसी शिक्षा उसे शायद कहना चाहिए एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में या इंटरनेशनल स्कूल में मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मात्र टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है, तो ये हमारा सपना पूरा किया जा सकता है अगर आप इसमें साथ निभाएं। सो आपसे गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अगर समय निकाल सके तो रॉबिनहुड आर्मी के इस इनिशिएटिव के साथ जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी अपने इस खास इनिशिएटिव के बारे में।
1: थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपकी टीम का।
0: फिलहाल तो वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मिलने वाली हूँ मैं आपको। फिलहाल संडे की शाम हो गई है और अब वक्त है एक गर्मा गर्म कॉफी का, तो मैं तो जा रही हूँ उस गर्मा गर्म कॉफी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
3: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लैफ वेरी बैड।

यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अम्बाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं, मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, क्योंकि ये खास लोगों की रहने, लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, क्योंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खट खट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लकी है।

जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदाबख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। एक महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदाबख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदाबख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए।
और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी दो मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया, फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है।
ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू

0: किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद, मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग, साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूल कर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया, तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो, आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा। चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनोन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ, सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा।
1: मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
0: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई।
1: तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर
0: कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि
0: मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है, शंकर ने यह सुनकर कहा। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
1: नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई?
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो?
1: सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
0: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो?
1: ले लो।
0: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ, ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: રેડિયો 107.8 એફએમ પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए मोटिवेशनल जर्नी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज और साथ ही ऐसे लोगों की कहानियाँ जो आप सुनकर ना मोटिवेट हो जाते हैं. जी हाँ, मोटिवेट ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में हार मान चुके होते हैं या हार जाते हैं, तो किसी की जर्नी या किसी की बातें ना हमें मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सपने देख सकते हैं. तो बस इसी के लिए ये सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम आपको सक्सेस के लिए कुछ मंत्रास देता है जो आप अपनी लाइफ में उसे फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं. तो इसी के साथ आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक और जर्नी, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. वो ना बहुत ही कहे तो बहुत स्पेशल व्यक्ति है. जी हाँ, बहुत स्पेशल पर्सन है. उनके बारे में आप जानते ही होंगे, अभी हाल फिलहाल में आपने ना इनका नाम बहुत सुना होगा. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक की. जी हाँ, सोनम वांगचुक की जर्नी के बारे में अब हम जानेंगे, उनकी जर्नी कि क्या करा उन्होंने कि आज लोग उनको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान करते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, क्योंकि आज इनके बारे में होने वाली है बहुत सारी बातें. इनकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं, इनकी जर्नी से मोटिवेशन लेने वाले हैं, इंस्पिरेशन बनने वाले हैं ये हमारे. तो इसलिए आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. और इसी के साथ वक्त हो गया है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. इस ब्रेक के बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें. तब तक के लिए सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और उन हौसलों के कदम पर सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी प्रभाव डाला है, एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही शख्सियत की, उनकी कहानी को लेकर आए हैं आज हम, जिन्होंने हमें सिखाया है कि असली सफलता सिर्फ बड़ी नौकरी या फिर पैसा कमाने में नहीं है बल्कि समाज की ना जो समस्याएं हैं उनको हल करने में है। जी हाँ, उनको ढूंढने में है, उनको सॉल्यूशन देने में है उनके लिए। और आज हमारी प्रेरणादायक जो कहानी है वो है एक इंजीनियर की, एक इनोवेटर की और एक एजुकेशन रिफॉर्मर की। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक जी की। जी हाँ, सोनम वांगचुक सर की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक का जो जन्म है वो 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय लद्दाख में शिक्षा और अन्य सुविधा बहुत सीमित थी। उनका बचपन प्रकृति के बीच में गुजरा लेकिन पढ़ाई का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती तब शुरू हुई जब वो स्कूल गए। घर में वो भोती भाषा में बोलते थे जबकि स्कूल में पढ़ाई उर्दू में होती थी। जी हाँ, सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने टीचर की बातें ही ठीक से ना समझ पाए, इसी वजह से शुरुआत में उन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार लोगों ने उन्हें कमज़ोर स्टूडेंट भी समझा, लेकिन दोस्तों सोनम वांगचुक ने ना एक बात जो थी वो बहुत जल्दी समझ ली थी और वो ये थी कि कमज़ोर वो नहीं होते हैं जो धीरे सीखते हैं, बल्कि कमज़ोर तो वो सिस्टम होता है जो हर छोटे बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, बचपन से ही उनके अंदर हर चीज़ को समझने की जिज्ञासा थी। वो सिर्फ किताबों में लिखी बातों को ही याद नहीं करना चाहते थे बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझना चाहते थे। उन्हें प्रकृति को देखना, नए तरीके से सोचना और हर समस्या का हल ढूंढना बहुत पसंद था। उनके माता पिता ने भी हमेशा उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने सोनम वांगचुक को समझाया कि अगर रास्ता मुश्किल हो रहा है तो रुकना नहीं चाहिए। शायद इसी सोच ने उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, आज जब हम सोनम वांगचुक की सफलता देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ आसान रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि उनकी जर्नी की शुरुआत भी संघर्ष से ही हुई थी। जी हाँ, लैंग्वेज बैरियर्स, रिसोर्सेस की कमी और कठिन परिस्थितियाँ, ये सब उनके रास्ते में थे, पर फिर भी उन्होंने कभी अपनी क्यूरियोसिटी को या सीखने की इच्छा को खत्म नहीं होने दिया। ये कहानी हमें बताती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी का सीखने का तरीका भी अलग होता है। अगर हम अपनी कमियों को अपनी पहचान बना लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी ताकत बना लें तो वही कमी एक दिन हमारी सबसे बड़ी पहचान जान बन सकती है। और बस यहीं से हमने सोनम वांगचुक का पहला सक्सेस मंत्रा भी ले लिया और वो ये है कि जब जिंदगी आपके सामने चुनौतियां रखे ना तो उनसे घबराइए मत, उन्हें समझिए और उनसे सीखिए और अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। और इसी के साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ स्नेहा आपके साथ। सुनिए बहुत ही प्यार सकाना, फील गुड फील लाइफ।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्ती आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता है बल्कि आपको ना आगे बढ़ने का हौसला देता है, आपको बताता है कि आप भी ना अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, आप शायद थक कर हार जाओगे, आप काम करते रहोगे पर वो काम बिगड़ जाएगा और आपका हौसला टूट जाएगा, पर आपको वही नहीं रुकना है, आपको ना लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अचीव करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। जी हाँ, सक्सेस का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए जीतना या फिर खुद सब कुछ हासिल करना नहीं होता है बल्कि दूसरों के लिए भी अपनी जो ताकत आपको मिली है उसको इस्तेमाल करना होता है। और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ। जी हाँ, सोनम वांगचुक के बारे में हमने पिछले सेगमेंट में उनके बचपन के बारे में जाना, अब हमने देखा कि कैसे लैंग्वेज बैरियर और सीमित रिसोर्सेज के बावजूद उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा, उन्होंने मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। और अब इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उनकी इंजीनियरिंग के सफर की और उस सोच की जिसने उन्हें सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक एजुकेशन रिफॉर्मर भी बना दिया। दोस्तों, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के दौरान उन्होंने सिर्फ मशीन्स या फिर टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखी बल्कि ये भी समझा कि किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले उस प्रॉब्लम को गहराई से समझना जरूरी होता है। कॉलेज के दिनों में जब भी वो लद्दाख लौटते तो वहां से स्कूलों और स्टूडेंट्स की स्थिति देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। बहुत से बच्चे पढ़ने में होशियार थे लेकिन एग्जाम में फेल हो जाते थे। इसका कारण उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उनका एजुकेशन सिस्टम था। पढ़ाई का तरीका उनकी लैंग्वेज, कल्चर और एनवायरमेंट से बिल्कुल अलग था। सोनम वांगचुक जी ने एक बहुत गहरी बात समझी कि अगर सिस्टम बच्चों को समझने की जगह उन्हें सिर्फ याद करना सिखाए तो टैलेंट धीरे धीरे दब जाता है। और इसी सोच ने उनके अंदर एक नया सपना जगाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाएंगे बल्कि एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। उनका मानना था कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर आना नहीं होता है बल्कि असली शिक्षा वो होती है जो इंसान को सोचना, समझना और प्रॉब्लम को सल्यूशन निकालना सिखाती है। इंजीनियरिंग ने उन्हें लॉजिकल थिंकिंग दी लेकिन लद्दाख के बच्चों ने उन्हें लाइफ की असली पर्पस दिखाई है। उन्होंने महसूस किया कि देश को सिर्फ इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर्स की नहीं बल्कि ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो समाज की असली समस्याओं को पहचान कर उनका हल ढूंढ सके। दोस्तों, आज भी हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स मार्क्स के प्रेशर में अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। सोनम वांगचुक की जर्नी हमें ये सिखाती है कि एजुकेशन का असली उद्देश्य सिर्फ एग्जाम में पास करना नहीं होता है बल्कि जिंदगी के लिए तैयार होना होता है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, जरूरत सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने की है और उसे सही दिशा देने की होती है। यही सोच आगे चलकर एक ऐसे रूप लेने वाली थी जिसने लद्दाख की एजुकेशन को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, यहाँ से हमें सोनम वांगचुक का दूसरा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि सिर्फ डिग्री हासिल करना सफलता नहीं होती है बल्कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास बातें, जहाँ पर आप सक्सेस के मंत्राज लेते हैं और अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं। जी हाँ, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सोनम वांगचुक ने एजुकेशन सिस्टम की कमियों को समझा। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका जो होता है वो उनके हिसाब से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ समस्याओं की बात करने वालों में से नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनका हल ढूंढने का फैसला किया और इसी सोच के साथ साल आया 1988, जिसमें उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL की शुरुआत की। शुरुआत में ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था, लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा था, ऐसे स्टूडेंट्स को नई पहचान देना जिन्हें स्कूल सिस्टम ने फेल का लेबल दे दिया है। दोस्तों, उस समय लद्दाख में बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत कम आता था, कई स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेज और टीचिंग मेथड की वजह से फेल हो जाते थे। समाज उन्हें कमजोर समझता था, लेकिन सोनम वांगचुक का मानना था कि फेल स्टूडेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ फेल एजुकेशन सिस्टम होता है। इस मोमेंट में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ किताबें ही याद नहीं कराई जाती थी, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग, टीम वर्क, लीडरशिप और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती थी। स्टूडेंट्स खुद खेती करते थे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, कैंपस की जिम्मेदारी संभालते थे और अपने फैसले भी खुद लेना सीखते थे। सबसे खास बात तो ये थी कि यहाँ गलती करना मना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स को समझाया जाता था कि गलती ही सबसे बड़ा टीचर होती है। इसी वजह से धीरे धीरे उन बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा जो पहले खुद को दूसरों से कम समझते थे। कुछ ही सालों में SECMOL के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन सोनम वांगचुक के लिए सबसे बड़ी जीत उनके मार्क्स नहीं थे, बल्कि उनके लिए असली सफलता ये थी कि स्टूडेंट्स ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। दोस्तों, आज भी हम अक्सर किसी बच्चे की काबिलियत को उसके मार्क्स से नाप देते हैं, लेकिन हर बच्चे की लर्निंग स्पीड और टैलेंट अलग होता है। किसी का टैलेंट साइंस में होता है तो किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का आर्ट्स या फिर किसी का इनोवेशन में। अगर हम सिर्फ मार्क्स के आधार पर ही किसी को जज करेंगे तो शायद हम उसके अंदर छिपे असली टैलेंट को कभी नहीं देख पाएंगे। सोनम वांगचुक की जर्नी हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो उन लोगों पर विश्वास करे जिन पर दुनिया विश्वास करना छोड़ देती है। हमें यहाँ से सोनम वांगचुक की जिंदगी से तीसरा सक्सेस मंत्र मिलता है कि कभी भी किसी इंसान की क्षमता का फैसला उसके मार्क्स या फिर फेलियर से मत कीजिएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी काबिलियत होती है, बस उसे पहचानना और मौका देने की जरूरत होती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की कड़ी में हम चल रहे हैं सोनम वांगचुक की जर्नी के साथ। बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं उनकी लाइफ से। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे सोनम वांगचुक ने SEC MOL के जरिए उन स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी जिन्हें एजुकेशन सिस्टम ने फेल का टैग दे दिया था। लेकिन दोस्तों, सोनम का मिशन सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं था। उनका मानना था कि अगर किसी समस्या का हल ढूंढना है तो हमें प्रकृति और साइंस दोनों को साथ लेकर चलना होगा। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए पानी की कमी होना। सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, लेकिन गर्मियों में शुरुआती महीनों में जब खेतों के सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो तब ग्लेशियर का पानी अभी तक पूरी तरह नहीं पिघला होता है। इसी वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सोनम वांगचुक ने इस समस्या को बहुत ध्यान से समझा। उन्होंने सोचा कि अगर सर्दियों का पानी किसी तरीके से संभाल कर रखा जा सके और जरूरत के समय पर इस्तेमाल किया जा सके तो इस समस्या का हल भी निकाला जा सकता है। और इसी सोच के साथ जन्म लिया आइस टूपा का। जी हाँ दोस्तों, आइस टूपा एक कोन शेप्ड यानी कि शंकु के आकार की बर्फ का संरचना होती है जो सर्दियों में पानी को एक खास तरीके से हवा में छोड़ा जाता है, जहां वो जमकर धीरे धीरे एक बड़ी बर्फ की मीनार के रूप में ले लेता है। क्योंकि इसका आकार कोन जैसा होता है इसलिए धीरे धीरे पिघलता है और गर्मियों की शुरुआती दिनों में खेतों को पानी उपलब्ध कराता है। इसी सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया ने लद्दाख के कई गांवों में पानी की समस्या को काफी हद तक कम कर दिया था। सबसे खास बात तो ये थी कि इनोवेशन के लिए किसी महंगी टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये प्रकृति की नियमों को समझकर बनाया गया और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन था। इसी वजह से आइस टूपा की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगी। क्लाइमेट चेंज और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में सोनम वांगचुक के इस इनोवेशन को एक मिसाल के रूप में देखा गया। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मशीन्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन सोनम वांगचुक ने ये हमें सिखाया है कि इनोवेशन का मतलब है कि किसी असली समस्या का सरल और प्रभावी समाधान ढूंढना। उनकी सोच ने साबित कर दिया कि जब हम अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार करते हैं तब वही आइडिया दुनिया के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाता है। यहाँ से हमें सोनम वांगचुक सर का चौथा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है कि असली इनोवेशन वही है जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी होता है कि बस उसे देखने के लिए अलग नजरिए की जरूरत होती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं सोना वांगचुक की जर्नी के साथ। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने सोना वांगचुक के अनोखे इनोवेशन आइस टूबा के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया ने लद्दाख में पानी की समस्या को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन दिया और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और अब जो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वो है उनके उस पहचान की जो उन्हें अपनी मेहनत, उनके इनोवेशन और समाज के प्रति समर्पण के लिए मिली। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करता है तो उसका काम धीरे धीरे दुनिया तक पहुंच ही जाता है। सोना वांगचुक के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एजुकेशन और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उनके प्रयासों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। साल 2018 में उन्हें एक ऐसे सबसे बड़े प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें एजुकेशन को बदलने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और लद्दाख के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दिया गया। इस सम्मान के बाद उनका नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और भी ज्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों, बहुत से लोग ये भी जानते हैं उनकी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स के यादगार कैरेक्टर पुनसुक वांगडू की प्रेरणा सोना वांगचुक की पर्सनैलिटी और उनकी सोच से ही ली गई थी। फिल्म ने एक ऐसे टीचर और इनोवेटर को दिखाया जो रट्टा लगाने की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग और क्रिएटिविटी पर विश्वास करता है। ये वही वैल्यूज है जिन्हें सोना वांगचुक सालों से अपने काम के जरिए बढ़ावा देते आए हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी पहचान और सम्मान मिलने के बाद भी सोना वांगचुक की जिंदगी में सादगी आज भी वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कभी अवार्ड्स को अपनी मंजिल नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होता है जब किसी स्टूडेंट की जिंदगी बदलती है और जब किसी गांव को पानी मिलता है और जब कोई युवा उनकी कहानी से प्रेरित होकर कुछ नया करने का फैसला करता है। दोस्तों, ये बात हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि अक्सर हम सफलता को सिर्फ नाम, पैसा या फिर पॉपुलैरिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन सोना वांगचुक हमें सिखाते हैं कि असली सफलता तब होती है जब आपका काम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। सम्मान और पहचान उसके बाद अपने आप आपको मिल जाते हैं। यहाँ से हमें उनका 5वां सक्सेस मंत्रा मिलता है जो कि है कि कभी भी अपनी सिर्फ पहचान बनाने के पीछे मत काम कीजिए, उसके ऊपर मत भागिए। ऐसा काम कीजिए जो लोगों के काम आए। जब आपका उद्देश्य समाज की भलाई होता है तो पहचान और सम्मान खुद आपके पास आ जाते हैं। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: स्वागत एक बार फिर से आपका रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज इस सक्सेस की जर्नी में हम चल रहे हैं सोनम वांगचुक की जर्नी के साथ। उनके बारे में आज हम जान रहे हैं, बहुत सारी बातें जाने, उनके इनोवेशन जाने, उनके काम जाने और उनकी लगन जो लोगों से जुड़ी हुई है कि लोगों के लिए कुछ करना है, वो बहुत ही खास है। दोस्तों पिछले सेगमेंट पे जैसे कि हमने जाना कि सोनम वांगचुक को उनके इनोवेशन और एजुकेशन के क्षेत्र के योगदान के लिए देश और दुनिया में पहचान मिली। लेकिन दोस्तों उनकी कहानी सिर्फ अवार्ड्स या फिर अचीवमेंट तक ही सीमित नहीं रही, उनका असली मिशन आज भी जारी है, एक बेहतर इन्वायरमेंट, बेहतर एजुकेशन, बेहतर भविष्य बनाना। सोनम वांगचुक का मानना है कि अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिखाई देता है, ग्लेशियर का धीरे धीरे पिघल जाना, मौसम बदल रहे हैं और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए वो लगातार सस्टेनेबल लिविंग और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए। ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेस हमें बचा कर रखने हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने लद्दाख में सोलर एनर्जी, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स और लोकल रिसोर्सेस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। सेकवॉल कैंपस भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ कई बिल्डिंग्स इस तरह डिजाइन की गई है कि जो सर्दियों में भी कम एनर्जी का इस्तेमाल हो और प्रकृति के साथ संतुलन बना कर रहे। लेकिन सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा फोकस हमेशा यूथ पर ही रहा है। उनका मानना है कि भारत के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं है बल्कि नए आइडियाज देने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होने चाहिए। वो स्टूडेंट को हमेशा इनकरेज करते हैं कि सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप करो। दोस्तों आज के डिजिटल दौर में इंफॉर्मेशन पाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर होता है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि सिर्फ इंटरनेट से जानकारी लेना काफी नहीं होता है बल्कि असली नॉलेज तब होती है जब हम उस जानकारी को समझकर उसका इस्तेमाल किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करें। उनकी पूरी जर्नी एक बात साफ करती है कि अगर हम अपनी रूट से जुड़े रहकर नए आइडियाज पर काम करें तो हम अपने शहर, अपने राज्य और अपने पूरे देश में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव हमेशा किसी बड़े शहर से शुरू हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी एक छोटा सा गांव भी दुनिया की सोच को बदल सकता है। यहाँ से हमें उनका छठा सक्सेस मंत्र मिलता है कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति की भलाई के लिए भी कीजिए। वही सफलता सबसे ज्यादा मायने रखती है जो दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ।
1: ये हुई ना बात।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी में, इस खास एपिसोड में, हमने सोनम वांगचुक की प्रेरणादायक जर्नी को करीब से जाना। लद्दाख के एक छोटे से गांव में जन्मा एक छोटे से बच्चे से लेकर इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटलिस्ट बनने तक का ये सफर, उनका जो सफर था, हमने ये बहुत कुछ सिखाता है। सफलता सिर्फ अपने सपने पूरे करने में नहीं बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख देने में होती है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की जिंदगी से हमें कई ऐसे सक्सेस मंत्र मिलते हैं जो हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। उनका पहला सक्सेस मंत्र है, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी को समझिए। दूसरा सक्सेस मंत्रा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होता बल्कि समाज और सोच भी होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा है, इनोवेशन हमेशा किसी असली समस्या का हल होना चाहिए। दोस्तों, और इसी के साथ चौथा सक्सेस मंत्रा है, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए, वो बहुत जरूरी है। पांचवा सक्सेस मंत्रा है कि कभी सीखना मत छोड़िए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सोनम वांगचुक की कहानी हमें बताती है कि व्यक्ति की सोच पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकती है। अगर हम सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचने की बजाय समाज की जरूरतों को समझना शुरू करें तो हम भी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का सक्सेस मंत्र यहीं पर समाप्त होता है। मैं हूँ आज स्नेहा आपके साथ और ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसे ही शख्सियत के साथ जिनकी जिंदगी ने हमें सफलता का एक नया मंत्र सिखाएगा। तब तक के लिए याद रखिएगा कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है बल्कि अपनी सोच को और अपने काम से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने का नाम है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए और हमेशा याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी सोच से ही होती है। चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम। वेल हेलो नमस्कार सर श्रीकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। ये शो अपने आप में काफी स्पेशल इसलिए भी हो जाता है कि भैया आपको एजुकेट तो करते हैं, साथ साथ आपको ये बताते हैं कि इंडिया को जो हम बोलते हैं कि भैया हमारा देश सेल्फ रिलायंट हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है, उसमें किन किन लोगों का योगदान है, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं या सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग सेल्फ रिलायंट हो पाए हैं। सो टुडे शो इज गोना टेल यू अगेन अबाउट कंपनी एंड इंडस्ट्री, things that you should know, insights, key drivers, growth drivers about the company, USP of that company, founders of that company, background of the founders and so many things. So आपको अगर अपना कुछ start करना है, it will help you out. तो शुरू करेंगे अपना show. लेकिन सबसे पहले भैया एक सलाम कबूल करिए, मेरा जरा थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेना होगा, उसके बाद अपने शो को आगे लेकर चलेंगे. Stay tuned, feel good, feel live.
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव, ना

बाबा बन के हम सन्यासी, काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो।

का जूठ संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।

बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं हूँ सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मारवाष्टा 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक, सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में, हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सब ने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो हैं इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनी, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नज़र आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API, जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज़्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खींच जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले

हुआ करता था, आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। So that's how things are working. वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड, फील लाइक।

परिणाम सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्मस्टम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है वहां पर डेटा मशीन लर्निंग इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले ही बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ़ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स का आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी वहाँ पर चाहिए। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जा करके आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज़ अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: फाइनली शो को अपने आगे लेकर चलते हैं और रिवील करते हैं आज की कंपनी के बारे में। सो दिस कंपनी इज हेल्दी श्योर। हेल्दी श्योर एक इंडियन इंश्योरटेक स्टार्टअप है। ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको इंश्योरेंस की पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया है, जिसको आप समझ पाए होंगे इंश्योरटेक एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें जो आपको बतानी चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दिस कंपनी, ये क्या अलग कर रही है। सो ये कंपनी जो है इंडिया का बिगेस्ट जो पेन पॉइंट है ना, इंडिया के खासतौर पर कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का, इसने वहां पर एंटर किया। यहां पर एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस को सिंपल बनाया इन्होंने, अफोर्डेबल बनाया, यूजफुल बनाया। होता क्या था कि पहले भी एम्प्लॉयज को जो है इंश्योरेंसेस प्रोवाइड किए जाते थे, बहुत सारी कंपनीज ऐसे इनिशिएटिव्स लेती थी, लेकिन मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, ऐसी कंपनीज नहीं थी जो उनको केटर कर सके या पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सके। तो होता क्या था, इंश्योरेंस बस एक कंप्लायंस प्रोडक्ट बन गया था। एक्चुअली यूजेबल बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, अफोर्डेबल नहीं था, सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ था। तो यहां पर इस कंपनी ने चीजों को थोड़ा अलग तरीके से जो है पोर्ट्रे किया, और यहां पर इंस्टेड ऑफ मेयरली एक्टिंग एज जस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर, हेल्दी श्योर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ बेनिफिट्स को। साथ साथ एम्प्लॉयज जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं इंश्योरेंस को, वेलनेस सर्विसेज को, डिजिटल क्लेम्स को, टेलीकंसल्टेशंस हैं, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर है, और ये सब कुछ सिंगल एक प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कस्टमर्स हैं इस कंपनी के, वो हैं स्टार्टअप्स, एसएमईज, मिड साइज बिजनेसेस, लार्ज एंटरप्राइजेस। सो ये कंपनी जो है खुद को पोजीशन करती है एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म रादर देन जस्ट एन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर। और ध्यान रखिएगा भैया, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से कि कंपनी अपने आप को कैसे देखती है, किस पोजीशन में वो जो है खुद को डालती है, और एग्जैक्टली कैसे खुद को मार्केट में देखती है। दिस कंपनी इज एक्टिंग एज एम्प्लॉय बेनिफिट प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट एन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है इंश्योरेंस बेचना, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करना, मल्टीपल प्लान्स आपको दिखाना, लेकिन यहां पर काम होता है एम्प्लॉयज को कैसे बेनिफिट हो सकता है। दैट इज द विजन ऑफ द कंपनी। आई होप इट हेल्प्स। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये अस्त्र छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, सभी बात तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आइए दोस्तों बात करते हैं अपनी कंपनी जो हमारी आज की है हेल्दी शोर, उसकी फाउंडिंग स्टोरी क्या है, आइडिया क्या है, कैसे स्टार्ट हुई। तो इसके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है नोटिस किया कि हजारों कंपनीज जो हैं वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करती हैं हर साल। ठीक है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मतलब एक कंपनी जो है वो अपनी पूरी कंपनी में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो है बाय किया जाएगा वहां पर। उस ग्रुप में जितने भी लोगों को मैप किया जाएगा वो उसमें फर्दर लिस्टिंग होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि जो एम्प्लॉयज थे उनको पॉलिसी समझ में ही नहीं आती थी, तो एचआर टीम्स का स्ट्रगल होता था, भैया पेपर वर्क कंप्लीट करना है, क्लेम्स बहुत स्ट्रेसफुल थे, किसी को क्लेम लेना है तो एचआर के पास जाएगा, एचआर कंपनी के पास जाएगी, कंपनी हमें अगर चीजें सॉर्टेड नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ तो वो चीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब एचआर का काम बढ़ गया, एचआर डिसअपॉइंटेड है, एम्प्लॉई का जो है डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा होगा, साथ साथ वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत कम होता जा रहा था। ठीक है, एंड इंश्योरेंस जो है यहां पर भी खत्म हो जाता था जहां पर एम्प्लॉई ने रिजाइन कर दिया, इंश्योरेंस खत्म। एंड मोस्टली जो कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस को ट्रीट भी ऐसे ही करती थी एज अ मैंडेटरी एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ एन एम्प्लॉय वेलबींग टूल, क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन जब COVID-19 आया तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा एक्सपोज हुई, थोड़ी उभर के सामने आई, समझ में आया एग्जैक्टली क्या लूप होल्स हैं, क्योंकि लोग बीमार होने लगे, लोगों को क्लेम की जरूरत पड़ी, चीजें स्ट्रेसफुल हो गई, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ओके, बिजनेसेस ने रियलाइज किया सडनली कि हेल्थ केयर बेनिफिट जो हैं वो मोस्टली एम्प्लॉयज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एंड यहां पर यह भी समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉय रिटेंशन टूल बन गया था वो एक तरीके से, लेकिन क्या एक्चुअली वेलबींग के ऊपर काम हो रहा था? तो यहां पर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर इंश्योरेंस ब्रोकरेज, इस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया लेट्स बिल्ड एन एंड टू एंड एम्प्लॉय हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, जहां पर होगा इंश्योरेंस, क्लेम, वेलनेस, टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, और इस सब कुछ एक डिजिटल इकोसिस्टम में होगा। एंड दैट्स व्हेन दिस कंपनी स्टार्टेड। कंपनी के फाउंडर्स हैं अनुज पारेख एंड सनिल बसुतकर। अब बात करेंगे इनके बारे में, कौन है ये लोग, क्या बैकग्राउंड है इनका, तमाम चीजें आपको बताएंगे, लेकिन कहीं जाइएगा मत, तो ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

ऑलराइट, वेलकम बैक। अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आइए बात करते हैं फाउंडर्स की, क्योंकि आज की हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है हेल्दी शोर। और अब हम बात करने वाले हैं यहां पर इसके फाउंडर्स की, कि कौन है वो लोग जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, द माइंड बिहाइंड दिस कंपनी। पहला नाम आता है अनुज पारेक। इस कंपनी के को फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो बैचलर इन कॉमर्स प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है। दैट मींस कि फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, ऑल इंडिया रैंक 12 थी सीए फाइनल में, ठीक है। एमबीए पीजीपी इन्होंने किया था आईआईएम बैंगलोर से। प्रीवियस एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो हेल्दी शोर स्टार्ट करने से पहले अनुज ने काम किया है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, ठीक है, जहां पर उनको अनुभव हुआ बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर उन्हें मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर का मिला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मिला, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का मिला, स्ट्रेटजी का मिला, बिजनेस ग्रोथ का मिला, वेंचर इकोसिस्टम का मिला। सो ही वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स जिनमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी, जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स, रिटेल एनालिटिक्स, हाइपर लूप स्ट्रेटजी, एविएशन इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीटेक इनिशिएटिव्स। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आए, इतनी सारी चीज़ें इन्हें मिली, वो कुल मिलाकर के इनके काम आई। एंड आई ऑलवेज से दिस कि जब भी आप कोई काम करते हो, छोटा बड़ा नहीं होता। आज आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या फ़ायदा हो रहा है इस काम से आपका, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली उसने क्या किया आपकी ज़िंदगी में। चीज़ें काफ़ी बदल चुकी होंगी, वो सारा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। दूसरा नाम है यहाँ पर सनील बासुतकर। सनील इज़ द को फाउंडर एंड प्रोडक्ट हेड। हेल्दी शोर आइडेंटिफाई करता है सनील बासुतकर को एज प्रोडक्ट हेड एंड को फाउंडर। कंपनी कहती है कि यहाँ पर जो है जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब एक ऐसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट ही सबसे बड़ा हीरो है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे का जो माइंड है वो सनील का है। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि जो सनील हैं इनका बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। ओके, फाउंडिंग टीम के मेंबर हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इनकी जो है अवेलेबल नहीं है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा नहीं ढूंढ पाए, बट इनका फोकस जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर है, टेक प्लेटफॉर्म जो है जो बना है उसके पीछे का जो हाथ है वो है सनील बासुतकर का। सो दीज आर द टू को फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी, अनुज पारेख एंड सनील बासुतकर। अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आके बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी बातें आपको बताइए आपको समझ आई है। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

कोई फीडबैक हमारे लिए तो 8010781078 तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल शो को आगे लेकर चलेंगे। आज की हमारी जो कंपनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही है, बहुत अमेजिंग काम कर रही है, एंड हमने अभी तक बात करी है कैसे कंपनी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग तरीके से चीजें लेकर के आई है, नॉट जस्ट एन इंश्योरेंस ब्रोकर बट अ टेक प्लेटफॉर्म जो एम्प्लॉयज की वेलबींग के बारे में सोचता है, हेल्दी श्योर। आइए आगे बात करते हैं, हेल्दी श्योर का मिशन क्या है। सो इस कंपनी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मिशन है, मेक एम्प्लॉय इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अटेनेबल फॉर एवरी बिजनेस इन इंडिया। तो जस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेचनी है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कंपनीज को यू नो ये आश्वासन दे कि उनके एम्प्लॉयज को जो है आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है, एक एक्चुअल बेनिफिट लगे उन्हें। ओके, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी इन्होंने, इसको हम तीन कैटेगरीज में देखेंगे। एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में काफी इश्यूज थे, ठीक है, एचआर टीम्स के लिए जो इशू थे वो थे एंडलेस पेपर वर्क, मैनुअल ऑनबोर्डिंग, मैनुअल एम्प्लॉई एडिशंस या रिमूवल्स, क्लेम कोऑर्डिनेशन बहुत एक्टिक होता है यार, ठीक है। इस कंपनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सारी प्रॉब्लम, तो एचआर का काम सिंप्लीफाई कर दिया, एक टेक प्लेटफॉर्म बना दिया, आप सिंपली वहां पर डाटा इंसर्ट करोगे, बाकी काम कंपनी का प्लेटफॉर्म करेगा, कंपनी का टूल करेगा। सेकेंड कैटेगरी आती है फॉर एम्प्लॉयज, बेसिकली किसके लिए बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए प्रॉब्लम ये थी कि कॉम्प्लिकेटेड था बहुत क्लेम प्रोसेस, बेनिफिट्स की अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, बहुत पुअर थी, ठीक है, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट था, इंश्योरेंस डिसअपियर हो जाते थे जस्ट आफ्टर लीविंग द कंपनी। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, क्लेम प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, बेनिफिट्स जो है वो अच्छे से समझाए, सिंपल शब्दों में समझाए, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन अच्छा किया क्योंकि टेक प्लेटफॉर्म है, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो तीसरी जो कैटेगरी है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कंपनी वो है एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनीज यानी कि जो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता था कि हर साल प्रीमियम बढ़ता था एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत कम था, ठीक है, क्लेम्स में विजिबिलिटी ही बहुत पुअर थी, एंड मल्टीपल वेंडर्स थे हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, तो उनकी इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। सो बेसिकली तीन लोग यहां पर, तीन कैटेगरीज को टारगेट किया गया है, बहुत थॉटफुल तरीके से पूरे प्रोडक्ट पूरा इकोसिस्टम यहां पर बनाया गया है कि कंपनीज को भी अच्छा लगे, एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगे, एचआर का काम भी इजी हो। सो बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन जहां पर सबको फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर्स को, एचआर को, सो व्हाई नॉट। तो ये है जी हमारी आज की कंपनी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इस कंपनी का नाम है हेल्दी श्योर। अभी तक हमने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम में सॉल्व कर रही है, तीन कैटेगरीज बेसिकली जो है इन्होंने सॉल्व करी है, जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था उसमें तीन कैटेगरीज में प्रॉब्लम्स थी, लूप होल्स थे, वो इन्होंने सिंप्लीफाई किया। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहे हैं यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइक। हेल्दी शोर का प्रोसेस क्या है ये और समझते हैं थोड़ा सा। तो इंस्टेड ऑफ ओनली इशूइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर स्टेप्स में हम इसको समझते हैं। स्टेप बनाता है कंपनी जो है एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदती है। स्टेप टू, एम्प्लॉयज को ऑनबोर्ड किया जाता है डिजिटली। स्टेप थ्री, एम्प्लॉयज को मिलती है डिजिटल कॉपी, हेल्थ एप्लीकेशन, क्लेम डैशबोर्ड। स्टेप फोर, एम्प्लॉयज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं डॉक्टर कंसल्टेशंस, वेलनेस डायग्नोस्टिक्स, मेंटल हेल्थ रिवॉर्ड्स, हेल्थ चेकअप्स। स्टेप फाइव, क्लेम्स जो हैं वो डिजिटली ट्रैक किए जाते हैं विद डेडिकेटेड सपोर्ट। स्टेप सिक्स, एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको एनालिटिक्स मिलता है ऑन यूटिलाइजेशन, क्लेम एंड पॉलिसी मैनेजमेंट। ये टोटल छह स्टेप है जो सिंप्लीफाई करते हुए एचआर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है सिंप्लीफाई करके। बात करते हैं कंपनी की यूएसपी की। बिगेस्ट यूएसपी है इंडिया का पहला फ्लेक्सी टॉप अप इंश्योरेंस। ठीक है, ये आप कह सकते हैं आर्ग्यूएबली हेल्दी शोर्स का, मतलब इस कंपनी का स्ट्रॉन्गेस्ट इनोवेशन है। नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है कंपनी छोड़ता है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस वहां पर खत्म होता है। बट हेल्दी शोर क्या करता है यहां पर, इन्होंने एक फ्लेक्सी टॉप अप इंश्योरेंस मॉडल जो है वो अलाउ किया एम्प्लॉयज के लिए। ओके, आप अपनी इंश्योरेंस को अपग्रेड कर सकते हो, आप उस प्रोटेक्शन को कंटिन्यू रख सकते हो इवन आफ्टर चेंजिंग जॉब्स। आप एक कंटिन्यूटी बिल्ड कर सकते हो अपने इंश्योरेंस में। एंड ये एड्रेस करता है वन ऑफ द बिगेस्ट गैप्स इन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को। तो ये इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफरिंग है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स दोस्तों। जब आप कभी किसी क्लटर्ड मार्केट में जाते हो तो वहां पर आपको एक यूएसपी देनी पड़ती है सो दैट पीपल शुड चूज योर सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म। पेपर वर्क फर्स्ट नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। अपने आप में सिंपल है, इजी है, पीस ऑफ माइंड के साथ है। 24/7 क्लेम्स असिस्टेंस, डेडिकेटेड क्लेम मैनेजर्स हैं, पेपरलेस क्लेम सपोर्ट है। एम्प्लॉई वेलनेस इंटीग्रेशन, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मेंटल हेल्थ, डॉक्टर्स कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक्स, एनुअल हेल्थ चेकअप्स, ये सब कुछ यहां पर मिलता है। एचआर डैशबोर्ड है, ठीक है। एम्प्लॉयज को कंपनी ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, क्लेम्स को मॉनिटर किया जा सकता है, बेनिफिट्स को मैनेज किया जा सकता है विदाउट हैवी मैनुअल वर्क। एसएमई फोकस्ड है, ठीक है। लार्ज इंश्योरेंस यूजुअली फोकस्ड ऑन बिग एंटरप्राइजेस, बट यहां पर एसएमईज के लिए इस कंपनी ने बनाया है ये चीज, ठीक है, कि एसएमई स्टार्टअप्स वो भी यार अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है अपने एम्प्लॉयज को दे पाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूएसपीज ऑफ दिस कंपनी। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आप कंपनी को पूरा समझ पाए हैं सिंप्लीफाई वे में। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आया यहाँ तक शो सुनने में और अभी तक आप समझ पाए हैं। तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं और जो बताई जा सकती है, लेकिन अभी समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए अपने शो को यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने बात करी हेल्दी शोर की। हेल्दी शोर प्रूफ है इस चीज का कि इनोवेशन डजंट ऑलवेज मीन इन्वेंटिंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू। ये ऑलरेडी कोई चीज है तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है या कोई ब्रोकन एक्सपीरियंस है, उसको फिक्स करना भी एक इनोवेशन है। यहां पर इन्होंने क्या किया, सिंपली एम्प्लॉय इंश्योरेंस को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ फ्रॉम अ पाइल ऑफ पेपर वर्क इनटू अ डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ठीक है, स्टार्टअप जो है वो हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ये एसएमईज को हेल्प करते हैं। तो कोई भी आकर यहाँ पर भी उस चीज़ को सिंप्लीफाई में ले सकता है, समझ सकता है, एम्प्लॉयज को भी फायदा हो सकता है। और केवल वहाँ तक सीमित नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा, एडमिट होंगे तब जाकर क्लेम मिलेगा। डायग्नोस्टिक्स के लिए है, रिवॉर्ड्स हैं, आपकी वेलनेस प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, मेंटल हेल्थ के लिए भी ले सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड सब कुछ सिंपल। एंड इवन अगर एम्प्लॉय छोड़ता है, उसको उसके पास तब भी चॉइस होती है, वो अपने इंश्योरेंस को कंटिन्यू रख सकता है। दैट्स ऑल अबाउट हेल्दी शोर। फिलहाल वक्त अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको शो पसंद आया तो 8010781078 पर बताइए। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए। खैरियत सरिया, दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे? वहाँ क्या क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का। एक ऐसा प्रोग्राम जहां होती है बातें आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दिन बीमार होते हैं तो मन करता है बस जल्दी से ठीक हो जाएं और वापस उसी रूटीन में चले जाएं जिसमें हम थे। लेकिन जब हम ठीक होते हैं तो हम शायद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं, क्योंकि हम बाकी चीजों में बिजी होते हैं। ऐसे ही आपकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए खास प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, और नॉलेज पार्टनर है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज के इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, ये जानना भी बेहद जरूरी है प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज का टॉपिक है बहुत कॉमन, एलर्जी। एलर्जी जो बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है। कई बार सिर्फ छींकना खांसना ही एलर्जी में कैलकुलेट होता है, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। स्किन को छोड़कर भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में एलर्जी हो जाती है। लेकिन इस एलर्जी की वजह क्या है, और ये वाकई एलर्जी के सिम्टम है या फिर इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसे कुछ सवाल और सवालों के जवाब देंगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि जैन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और साथ ही एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
5: थैंक यू।
4: सो डॉक्टर अंजलि, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम एलर्जी की बात करते हैं, लोग अक्सर कहते हैं बार बार छींकें आ रही हैं या बार बार खांसी हो रही है, थोड़े रैशेस हो गए, ये एलर्जी है, पर टेक्निकली कई बार वो एलर्जी नहीं होती। सो एलर्जी होती क्या है?
5: बेसिकली एलर्जी बॉडी का एक रिएक्शन है। मैं इसको आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे हमारा एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करता है, इन्फेक्शन लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया।
4: जी,
5: जब यही सिस्टम हमारे नॉर्मल चीज़ों से लड़ना शुरू कर देता है, नॉर्मल कोई फूड हो गया या फिर हवा ही हो गया, हवा में जो कण बह रहे हैं, पराग बह रहे हैं, जब हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, उसका रिएक्शन देती है, और वो एक्स्ट्रा एग्जेजरेटेड रिएक्शन है, तो दैट इज एलर्जी।
4: ओके, यानी हमारी बॉडी जब रिएक्ट करती है किसी भी चीज
5: को, नॉर्मल इम्यून रिएक्शन, हाँ, एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि ज्यादा है, अनवांटेड है, ज्यादा है, इट्स लाइक दिस।
4: जी, यानी जनरली धूल हमारे आसपास रहती है, पर जब धूल ज्यादा मात्रा में अंदर जाती है सांस के जरिए तो स्नीजिंग होती है, तो इसको एलर्जी बोल सकते हैं। तो ये जब बार बार हो तो एलर्जी कहलाई जाती
5: है, हमारी बॉडी उसे बार बार रिएक्ट करती है, और हर बार द रिएक्शन इज नेक्स्ट टाइम पहली बार से ज्यादा।
4: बिल्कुल, यानी एलर्जी जब बॉडी ज्यादा रिएक्ट करती है पहली बार से ज्यादा, तो समझ लीजिए बार बार होने वाली और ज्यादा क्षमता के साथ होने वाली ये प्रॉब्लम एलर्जी कहलाई जाती है। अब ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन कैसे कैसे पता चले कि ये एलर्जी है? सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी एलर्जी को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि एलर्जी जब हमें कहीं रैशेज होते हैं तो हमें लगता है किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं पता चलती, और कई बार वो एलर्जी होती भी नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाती है और दोबारा कभी नहीं होती है, तो ये एलर्जी है ये कैसे पहचाना जाए?
5: सी, जैसे मैंने आपको बताया कि एलर्जी इज नथिंग बट अ नॉर्मल एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स। कोई किसी चीज को इसको रिस्पॉन्स देगा, इसको रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो जिसने दिया दैट इज एलर्जी। और हमारी बॉडी का हर ऑर्गन रिस्पॉन्स देता है, स्किन में होती है, नोज से हो सकती है, लंग से हो सकती है, इनफैक्ट ब्रेन में भी एलर्जी के इफेक्ट्स होते हैं, पेट में होती है, सो एवरी ऑर्गन रिस्पॉन्स दैट इज एलर्जी। लेकिन एक एलर्जी में बहुत चीज होती है, देयर इज ऑलवेज अ सेट पैटर्न।
4: ओके,
5: वही डॉक्टर को पकड़ना होता है, वही हम पेरेंट्स से चाहते हैं कि वो हमें हिस्ट्री में ये बात बता पाए, व्हेन एवर थिंग्स आर ऑकरिंग इन अ सर्टेन पैटर्न व्हिच इज रिपीटेटिव, देन यू हैव टू थिंक फॉर एलर्जी।
4: ओके, यानी बार बार कोई चीज हो रही है, जैसे बच्चों को बार बार छींक आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाने से, जैसे स्टोर रूम के आसपास जाने से या किचन में जाने से, तो हमें समझ लेना चाहिए।
5: बहुत कॉमन हिस्ट्री मिलती है कि बच्चे को कोल्ड कफ तो चल रहा था,
4: हाँ,
5: जी आज, लेकिन मैंने घर की सफाई करी,
4: हाँ,
5: उसके बाद उसका कोल्ड कफ बढ़ गया,
4: हाँ,
5: और हर बार ये होता है,
4: हाँ,
5: तो ऐसे में हम ये काफी हद तक हमें लगेगा कि नहीं, इस बच्चे को शायद डस्ट से एलर्जी है,
4: यानी वो चीज समझ में आने लगती है कि बार बार हो रहा है तो ये एलर्जी।
5: यू कैन बी एलर्जिक टू एनीथिंग अंडर द सन, दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड।
4: ओके, यानी
5: आप किसी से भी एलर्जिक हो सकते हैं,
4: किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, जो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। जनरली हमें लगता है डस्ट से या किसी चीज के खाने से एलर्जी होती है या कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने से एलर्जी होती है, लेकिन एक्चुअली में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनमें से किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। बहुत सारी बातें और भी जानेंगे एलर्जी के बारे में। अगर आप में से किसी को किसी तरीके की एलर्जी से जुड़ी जानकारी लेनी है तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं 8010781078 पर। वक्त है अभी छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और हमें सपोर्ट किया है इस कार्यक्रम में आज नॉलेज पार्टनर SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें बहुत सारी चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में और एलर्जी से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं क्योंकि एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को कभी भी कहीं भी हो सकती है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में एलर्जी होना और एलर्जी से बच्चों को बचा के रखना अपने आप में एक टास्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन अगर पीडियाट्रिशियन स्टूडियो में आए हैं और आपको एलर्जी से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं तो सभी बच्चों के माता पिता को इसको ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। डॉक्टर अंजलि जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में एंड न्यूनेटल केयर और साथ ही ये एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं। सो डॉक्टर अंजलि, आप एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं और सिर्फ बच्चों की नहीं बड़ों की एलर्जी भी ठीक करने का काम करती हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी एलर्जी बॉडी के किन किन पार्ट्स को इफेक्ट कर सकती है और कितनी खतरनाक हो सकती है।
1: सी एलर्जीज बेसिकली ना हमारी लाइफ एक इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर टाइप ऑफ अ थिंग कि ये एक लंबा क्रॉनिक चीज होती है, ये परेशान करती है। बच्चों का स्कूल मिस होता है, अगर पेरेंट्स सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे को किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है, उसको वो खाना रोक दिया जाता है, उसके फिर अपने दुष्प्रभाव होते हैं, बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो इसलिए एलर्जी शरीर के हर हिस्से को, आपकी हर एक डेली एक्टिविटी को, मैं कहूँगी हर एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। सपोज अगर आपको नोज की एलर्जी है, नाक से, सांस से एलर्जी है, तो वो धूल से जा सकती है, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे उग रहे होते हैं उनके उन पराग से होती है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम है पोल्यूशन इन सब चीज़ों को बढ़ा रहा है। सो रोज उठते ही सुबह अगर कोई बच्चा कंटिन्यूएशन में छींकता है, नाक पूरे टाइम बहती रहती है, कोल्ड कफ लंबा चल रहा है, फीवर के साथ कोल्ड कफ एसोसिएटेड नहीं है,
0: वैसे ही हो रहा है
1: और लंबा चल रहा है, हम एक दो बार तीन बार एंटीबायोटिक्स बदल चुके हैं, तो स्टॉप दिस, दिस कैन बी एलर्जी एंड एंटीबायोटिक्स इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी।
0: जी जी, एंटीबायोटिक्स की आपने बात करी तो बहुत सारे पेरेंट्स जब जैसे ही बच्चों को कोल्ड कफ होता है, अब वो फीवर से एसोसिएटेड है या नहीं है, वो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से है या नहीं है, बिना देखे बिना जाने एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराना शुरू कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा सा हमें बताएंगे ये क्यों खतरनाक होता है।
1: ये बहुत एक दिस इज अ क्वेश्चन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई रियली वॉन्ट टू आंसर दिस, कि कोल्ड कफ हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक इज बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने की चीज, कोल्ड कफ का मेडिसिन नहीं है वो। अगर कोल्ड कफ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया है तो ही एंटीबायोटिक काम करेगा। कोल्ड कफ कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, एसिड रिफ्लक्स, या सिंपली कई बार हम जब लेटते हैं तो बलगम ज्यादा बनती है तो वो गले में जाती है तो भी हमें खांसी आती है। सो एवरी खांसी का इलाज इज नॉट एंटीबायोटिक। इसलिए अपने डॉक्टर के पास जाइए, कारण जानिए, फिर उसको ट्रीट करना सही रहता है।
0: बिल्कुल, यानी एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है और बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकती है, पेट के अंदर भी हो सकती है, बॉडी में किसी और ऑर्गन में भी हो सकती है, स्किन पे भी हो सकती है, मुंह में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। इसलिए एलर्जी पूरे शरीर को कभी भी कहीं भी प्रभावित कर सकती है, बट इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके पास होनी चाहिए, जो आज हमारी एक्सपर्ट हमें दे रही हैं। अपने सवाल आप पूछ सकते हैं 8010781078 पर। और इसके साथ साथ अगर आप ये जानकारी किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए और उसमें पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर अंजलि जैन के साथ हुई ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. एलर्जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंजलि जैन जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक और साथ ही एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. और इनसे हम जान रहे हैं बच्चों में या फिर बड़ों में होने वाली एलर्जी के बारे में, क्योंकि एलर्जी एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हर कोई यूज़ करता है, कभी ना कभी किसी ना किसी को हो भी जाती है, लेकिन एक्चुअली में इसका सोल्यूशन क्या है और ये कैसे ट्रिगर होती है इसको जानना भी ज़रूरी है. तो डॉक्टर अंजलि, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है. जैसे हम लोगों को जनरली डस्ट में एलर्जी हो जाती है जब हम बाहर निकलते हैं, बहुत धूल मिट्टी है, आंधी आ रही है, तो ऑफकोर्स ऐसा लगता है जैसे नाक चोक हो गई है, गला जो है वो चोक हो गया है, छींके बहुत सारी आती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं. कई बार खांसी नॉनस्टॉप आने लग जाती है किसी पेंट से या किसी चीज़ से. लेकिन घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है बच्चों में, ख़ास तौर पर से ये बढ़ जाती है. रात को सोते समय या सुबह उठते ही खांसी या ज़ुकाम एकदम से शुरू हो जाएगा और उसके बाद ठीक हो जाता है. सो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एलर्जी को ट्रिगर कर सकती हैं या जिनकी वजह से एलर्जी हो जाती है?
1: देखिए, घर में एक तो इन जनरल ऑब्वियसली साफ सफाई रखनी होती है, क्योंकि कॉकरोच से भी एलर्जी बहुत कॉमन है.
0: कॉकरोचेस से
1: बहुत कॉमन एलर्जी है.
0: कैसे होती है कॉकरोचेस से एलर्जी?
1: कॉकरोचेस का जो फीकल मैटर होता है, जब भी वहाँ जहाँ घूम रहे होते हैं वो छोड़ के ही वहाँ जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग उसको डस्ट सफाई करते हैं अपने घर में. यूजली इंडियन घरों में झाड़ू से सफाई की जाती है, हम लोग वैक्यूम्स यूज नहीं करते हैं, तो हम उस धूल को उड़ा देते हैं हवा में. फिर जब बच्चा वहाँ चल रहा होता है, सांस लेता है, वो उसके थ्रू चली जाती है. सो बेसिकली हमें अगर अपने बच्चों को एलर्जी से बचाना है तो उसके लिए हमें वेट मॉपिंग करनी है, मतलब कि झाड़ू पोछा नहीं करना है, डस्टिंग सूखे कपड़े से नहीं करनी है, हमें वैक्यूम क्लीनिंग करनी है.
0: ओके.
1: फिर एक सेकेंड सोर्स बहुत कॉमन होता है कि हमारा जो लिनन बेडिंग होता है, गद्दा है, तकिया है, उसमें एक माइक्रोस्कोपिक माइट होता है जो कि हमें एलर्जीज करता है. इसके लिए हर हफ्ते हमें हमारे पिलो कवर्स चेंज करने चाहिए, बेड कवर्स चेंज करने चाहिए, महीने में 15 दिन में मैट्रेसेस को धूप लगानी चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: बहुत जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो ऐसे डस्ट माइट कवर्स भी आते हैं. दिस इज दैट इज जिनको एकदम एस्टेब्लिश्ड एलर्जी है. तो फिर यूजली घर की डस्टिंग हमेशा जब बच्चा स्कूल से मतलब स्कूल जा चुका है या उसके आने में अभी 4-5 घंटे हैं तब करनी चाहिए. कुछ लोगों को अगर पेट से एलर्जी है, क्योंकि पेट का जो स्किन, डेड स्किन गिरती है, बाल गिरते हैं, उनसे एलर्जी होती है, तो ऑब्वियसली आपको पेट्स नहीं रखने हैं. बहुत से प्लांट्स होते हैं, उनका जो पराग होता है उससे एलर्जी होती है, तो ऐसे केस में अगर बच्चे को इससे एलर्जी है तो जैसे ही बच्चा बाहर से खेल कर आ रहा है, हाँ, एलर्जी का ये मतलब नहीं कि बच्चे को खेलने के लिए बंद कर दीजिए, बाहर ही मत भेजिए, नहीं, वो जैसे ही बाहर से खेल कर आ रहा है उसको नहला दीजिए, उसके कपड़े चेंज कर दीजिए, ताकि उस एलर्जन को उसकी नाक तक जाने का मौका ना मिले.
0: Okay.
1: फिर एक हमारे इंडियन घरों में हम लोग पूजा में अगरबत्ती बहुत जलाते हैं,
0: मस्किट बहुत ज्यादा,
1: वो बहुत एक रीजन है एलर्जीज को ट्रिगर करने के लिए. फिर दूसरा एक पोल्यूशन इज द रीजन जो एलर्जीज को ट्रिगर करता है. ऑब्वियसली स्मोकिंग वो नहीं होनी चाहिए
0: जी, और बच्चों को सबसे ज्यादा ये ट्रिगर
1: ये सब है.
0: डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ जानना चाहूँगी. खाने की चीज़ों से कई लोगों को एलर्जी होती है. कुछ साल पहले तक हमने ये नहीं सुना था कि किसी को दूध से या किसी को नट से एलर्जी है, लेकिन अभी पिछले 15-20-25 सालों से ये बहुत ज़्यादा हो गई. जैसे ग्लूटन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, ग्लूटन टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और मिल्क बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, लैक्टोज इनटॉलरेंट हो जाते हैं. सो ये एलर्जीज वो एलर्जीज हैं जो उन चीज़ों से हो रही हैं जो हम रेगुलरली बचपन से और हमारी पुरानी पीढ़ियों से भी यूज़ करते हुए आएँ. जैसे दूध को छोड़ना ज़्यादातर घरों में इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें, नट्स, आप ड्राई फ्रूट बच्चे को देते हैं हेल्दी रहने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नट से ही एलर्जी हो जाती है. सो ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है. क्या ये दवाइयों से कंट्रोल हो सकती है?
1: हाँ, देखिए, एक्चुअली ना इसमें दो चीज़ें हैं. एक होता है इनटॉलरेंट होना किसी चीज़ के लिए, एक है एलर्जी. आपने जैसे बताया, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में ना फूड एलर्जी जितनी कॉमन नहीं है जितनी वेस्ट में है.
0: हाँ जी,
1: ठीक है. अब जैसे दूध का ही है, एक होता है दूध का इनटॉलरेंट है कि दूध पीते ही पेट दर्द होता है. दिस इज नॉट एलर्जी, दिस इज इनटॉलरेंस. इनटॉलरेंस के दे आर मेडिसिन, कि बेसिकली दूध को डाइजेस्ट करने के लिए एक टेबलेट आती है, आप वो लेके दूध ले सकते हो. लेकिन अगर एलर्जी है आपको दूध को तो आप दूध नहीं ले सकते हो। जैसे ही आप दूध लोगे तो आपको स्किन पे रैशेज आ जाएंगे, सांस फूलने लग सकता है, पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, तो ये एलर्जी है। इन दिस केस आप दूध ले ही नहीं सकते हो अनटिल एंड अनलेस, हाँ एलर्जी का आप एक ट्रीटमेंट लेते हो जो कि 2-3 साल लंबा चलता है, तो उसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एलर्जीज के लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स तो ऐसे हैं जो उस समय दिए जाते हैं उस रिएक्शन को जस्ट रोकने के लिए, लेकिन अगर जब आप 2-3 साल तक लंबा ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत ज्यादा केसेस में एलर्जी से निजात भी पाई जाती है।
0: यानी ट्रीटमेंट से एलर्जी रुक जाती है,
1: खत्म हो जाती है।
0: जी, यानी एलर्जी को खत्म किया जा सकता है लेकिन सही ट्रीटमेंट के साथ। बहुत सारे लोग ये ट्रीटमेंट जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रिवेंशन ही है जो आपको एलर्जी से बचा सकता है, पर एलर्जी एक ऐसा शब्द है जो घर घर में बहुत धड़ल्ले से यूज किया जाता है जिसका सोल्यूशन लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सोल्यूशन ऐसा है कि भैया आपको डॉक्टर से मिलना है और वो आपकी मेडिकेशन शुरू करेंगे जो काफी समय तक चलती है, 2-3 साल जैसा डॉक्टर अंजलि ने कहा, और उसके बाद आपकी एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और साथ ही अपने एनवायरमेंट को भी वैसा ही बनाना होगा, जिन चीजों से आपको एलर्जी है उनसे दूरी रखनी होगी। फिलहाल बहुत सारी और भी बातें हैं एलर्जी को लेकर ही, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 8010781078 पर। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक रेडियो रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें ढेर सारी आपकी हेल्थ के बारे में, एलर्जी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं. और एलर्जी चाहे बच्चों को हो चाहे बड़ों को हो, एक्चुअली में काफ़ी दिक्कत देती है, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं रोक देती है. आप अपनी पसंद की चीज़ें जो खाना चाहते हैं वो खा नहीं सकते, जहां जाना चाहते हैं वहां जा नहीं सकते. पर अगर आपने सही ट्रीटमेंट लिया तो आप इस एलर्जी से छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं. पर ट्रीटमेंट से पहले कैसे इसको डायग्नोस किया जाएगा, आइए जानते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि जैन से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिशन और नियोनेटल में, और साथ ही ये एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर अंजलि, दवाई शुरू करने से पहले जैसे ये हमें लगे कि ऐसा कुछ, हमें बच्चों को या बड़ों को, घर में जो भी व्यक्ति है, अगर उसमें हमें कोई एलर्जी के ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, अब चाहे वो स्किन पे बार बार कोई चीज़ लग रही है और एलर्जी हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी भी माहौल में जाते ही अचानक से तबीयत खराब होने लगती है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के पास जाने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा. सो क्या होता है ट्रीटमेंट, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या इंजेक्शन होते हैं, क्या चीज़ होती है इसमें?
1: एक तो एलर्जीज मैंने आपको बताया जैसे कि रिकरेंट होती है, इनका एक पैटर्न होता है, ये बार बार सेम सिम्टम जब आ रहा होता है तो एलर्जी सोचना रहता है. तो फिर जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो सबसे पहले हिस्ट्री पे हम यही पता करने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ की वजह से एक रिपीटेड पैटर्न आ रहा है. तो हिस्ट्री हेल्प्स इन डायग्नोसिस. उसके बाद देयर आर फ्यू टेस्ट, लाइक एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें कि हम स्किन पे कुछ एलर्जेंस लगाते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या आपकी बॉडी इनको रिएक्ट कर रही है. स्किन प्रिक टेस्ट होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर एक एक निष्कर्ष पे निकलता है कि शायद हाँ इन इन चीज़ों से आपको एलर्जी है. फिर उन चीज़ों की थेरेपीज होती हैं, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं उसको. इम्यूनोथेरेपी दो तरह की होती है, कुछ उनमें टैबलेट्स भी होती हैं, कुछ इंजेक्शन से भी होता है. ये जब हम लगातार 2-3 साल तक करते हैं तो हमारी बॉडी इन चीज़ों को रिएक्ट करना बंद कर देती है, दैट मीन्स हमारी एलर्जीज रुक जाती हैं. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है या क्रक्स है.
0: जी यानी आपको टेस्ट कराने हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद मेडिकेशन शुरू होगा. डॉक्टर अंजलि, बहुत सारे घरों में कैसे इसको ट्रीट किया जाए या फिर घर की माहौल को कैसे चेंज किया जाए, वो मैं जानना चाहूँगा.
1: एलर्जी के लिए कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं, जनरली हर एलर्जी में ये काम करती हैं काफी हद तक, तो 50% तो इसी से काम चल जाता है, इनफैक्ट ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती. कॉमन चीजें हैं जैसे कि सबसे पहले आपके घर में कहीं पर भी डैम्पनेस आ रही है, यूजली बाथरूमों में हम देखते हैं वॉल्स पे ब्लैक डॉट्स दिखती है, फंगस होती है, उनको ठीक करवाइए.
0: जी
1: ठीक है. कोई भी धुएं वाली चीज जैसे कि अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना या मस्कीटो कॉइल्स, उनको यूज करना बंद कर दीजिए.
0: जी
1: आप एलर्जी किसी भी चीज से हो, ये चीजें लेकिन आपकी उस एलर्जी को बढ़ाएगा. तो ये जनरल मेजर्स हैं.
0: ओके
1: ठीक है. घर में कभी भी डस्टिंग नहीं करनी है, हमें वेट मॉपिंग करनी है, मतलब धूल उड़ानी नहीं है,
0: कपड़े से साफ करें,
1: धूल उड़ानी नहीं है, पोछा लगाना है, झाड़ू नहीं, झाड़ू से धूल उड़ती है, तो ये करना है. देन हमेशा हर हफ्ते बेडिंग को चेंज करना है. ठीक है. जब बाहर AQI बहुत ज्यादा है तो हम उन दिनों, एक तो ऑब्वियसली बच्चे को उस समय के लिए बाहर ना जाने दें, प्लस उन दिनों हम हेपा फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, दे हेल्प कि हमारी एटलीस्ट इंडोर एयर साफ रहे.
0: जी और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स का भी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा बेटर रहेगा.
1: एंड खाने में यूजली ना ठंडा गर्म, जो बहुत मदर्स को लगता है कि ये बच्चे ने आइसक्रीम खाई या बच्चे ने जैसे ही ठंडा पानी पिया तो खांसी जुकाम शुरू हो गया, उसको ठंडे से एलर्जी. एक्चुअली ठंडे से एलर्जी नहीं होती, ठंडा ट्रिगर होता है.
0: यानी आपके अंदर कहीं एलर्जेंस कुछ ऐसा है वो बढ़ जाएंगे,
1: वो एकदम वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा. तो इसलिए जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में बैठने दीजिए, फिर उसको नॉर्मल पानी दीजिए, थोड़ा सा ठंडा. सडन जो गर्म ठंडा होता है ना, गर्म सर्द होता है, उससे हमें बच्चे को रुकना होता है.
0: सब यही कहते हैं कि गर्मी से अंदर आके एकदम से AC के सामने ना बैठे या AC से बाहर निकलने तो एकदम लू में ना जाए, थोड़ा सा आपको
1: उससे टेम्परेचर प्रोसेसेस ट्रिगर हो जाते हैं.
0: जी यानी
1: अगर आपकी टेंडेंसी है एलर्जी की.
0: जी यानी एलर्जी जो है वो इस चीज से एकदम से बढ़ जाएगी और फिर आपको समझ नहीं आएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ. डॉक्टर अंजलि, घर की कुछ चीज़ें, कुछ घरेलू उपाय जो थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं, कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं एलर्जी के मामले में, अगर आप सलाह देना चाहें तो.
1: एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि एलर्जी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से नहीं है, इम्यूनिटी का जो सिस्टम है जब वो ओवर एक्ट रिएक्टिव हो जाता है तो हमें एलर्जीज होती है. तो इसलिए ये है कि हाँ बच्चे को बैलेंस न्यूट्रिशन दे ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छे से काम करे. स्लीप पूरी होनी चाहिए. स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल मोबाइल की दुनिया में ना बच्चों की स्लीप बहुत इनकम्प्लीट हो रही है.
0: बिल्कुल.
1: सो स्लीप कंप्लीट होनी चाहिए तो इम्यूनिटी अच्छी चलेगी.
0: बेसिकली कम से कम 8 घंटे सोए
1: जी
0: तो इम्यूनिटी ठीक रहेगी और एलर्जी क्या बाकी प्रॉब्लम से भी बच पाएंगे.
1: जो चीजें हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं वो हमें एलर्जी से भी बचाएंगी
0: जी.
1: आउटडोर एक्टिविटी, आजकल बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है. रीजन बीइंग एट टाइम्स मोबाइल, एट टाइम्स अब बड़ा बच्चा 10th में आ गया है तो भाई उसकी पढ़ाई का टाइम है. नो, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड इम्यूनिटी.
0: बिल्कुल.
1: सो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है
0: जी. जी डॉक्टर अंजलि, चलते चलते एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या ये एलर्जी अगर स्नीजिंग हो रही है, कफ बहुत ज्यादा है, तो क्या ये एस्थमा में बदल सकता है?
1: सी, एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. वेन एलर्जी ऑफ लंग्स इज देयर, कि बच्चे को सांस फूलता है, वो भागते भागते एकदम उसका सांस चढ़ने लगता है, हंसते हंसते एकदम लास्ट में वो खांसने लगता है, या उसकी बार बार पसलियां चल रही हैं, सांस में आवाजें आ रही हैं, ये लंग्स की एलर्जी है. सो दिस इज अस्थमा.
0: यही अस्थमा होता है, यानी लंग्स में अगर कोई एलर्जी हो रही है.
1: वन ऑफ द रीजन फॉर अस्थमा इज एलर्जी. अस्थमा कैन बी ऑफ अदर रीजन ऑल्सो, बट वन ऑफ द रीजन ऑफ अस्थमा इज एलर्जी.
0: यानी एलर्जी की वजह से अस्थमा, और लंग्स में एलर्जी अस्थमा ही कहलाई जाती है. सो डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई, बहुत सारी जानकारी आपने शेयर करी. उम्मीद है जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो बड़े लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि एलर्जी बच्चों में बड़ों में किसी भी चीज़ से हो सकती है, और वो सब कुछ आपने बताया है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. उम्मीद है बहुत से लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे. थैंक यू.
1: थैंक यू.
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और टाइम है आपसे इजाजत लेने का. अगर आप ये जानकारी पसंद करें और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसकी हेल्थ आप ठीक रखना चाहते हैं, तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए. पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको डॉक्टर अंजलि जैन के साथ हुई ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और आप इस पॉडकास्ट को कभी भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड. फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत, फिर से होगी मुलाकात कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दो तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?

0: एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज मैंने अपने शो की शुरुआत ये वाला गाना गाकर क्यों की है। वैसे तो मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, इसलिए मैं अपने हर शो की शुरुआत एक गाने से ही करती हूँ। बट यस, आज ये गाना मैंने इसलिए गाया है क्योंकि हमारे शो के जो आज गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस शेफ हैं। ये बहुत ही शानदार शेफ हैं, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बहुत अमेजिंग मुकाम हासिल किए हुए हैं। सो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे विजनरी लीडर मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया के फूड इंडस्ट्री में इनोवेशन और एक्सीलेंस का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। ही इज द सीईओ ऑफ फेटर्निटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड मैनेजमेंट कंपनीज, एंड द माइंड बिहाइंड आइकॉनिक ब्रांड्स लाइक जोका, सिडेली, तुलसी, नुमाई, फायर्ड अप, मिर्च, ग्रेनॉस, मदुराई, ब्लिंक, योलो एंड हरमनोज। He has also been associated as CEO with Anardana, the biggest Indian restaurant chain in Delhi NCR, and Romeo Lane, the biggest high energy bar in India and Dubai. Iske alawa, inko Face of the Future India aur President Award 2016 se bhi sammanit kiya gaya hai by the Indian Hospitality Congress. He brings over 26 years of rich experience in world-class hotels and premium restaurants. So friends, swagat karte hain a true culinary visionary and business leader, Mr. Manoj K. Rai ji ka. So sir, bahut bahut swagat hai aapka aaj hamare show Creative Manch mein.
1: Thank you very much for calling me.
0: So sir, kis tarike se aapki is journey ki shuruaat hui, sabse pehle to hum ye janna chahenge.
1: तो मेरी जर्नी जो है इस इंडस्ट्री में शेफ बनने की और बाद में जो बीच में बदना, दिस वाज नॉट अ प्लान्ड वन, इट वाज मजाक में बन गया। मैं आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा मन था, लेकिन स्पोर्ट सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी रीज़न से। मेरे साथ के लोग इंडिया के लिए खेले, मैं नहीं खेल पाया। तो जब मैं वॉज लिटल

0: स्टार्टिंग तो मैं दिल्ली घूमने आया था
1: जी।
0: तो जब मैं घूमने आया तो ट्रेन में कोई मुझे मिल गए, हमारे फौजी अंकल, उन्होंने बताया मेरी बेटी ने होटल मैनेजमेंट किया है और वो बहुत पैसा कमाएगा।
1: अच्छा।
0: तो मैं वापस गया, मैं भी यही करूँगा। लेकिन जब वहाँ पहुंचे मालूम चला कि ये तो कहानी उल्टी थी, यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ता है
1: जी।
0: तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड।
1: ओके, सो जब आपने ये शुरू किया लाइक कॉलेज होटल मैनेजमेंट, और पहली तो बताइए आपने कहाँ से किया?
0: गोवा से।
1: ओके, और तो फैमिली में किसी ने मना किया? पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं इंजीनियर डॉक्टरी ये चीजें करनी है, थोड़ा सा होता है ना माइंडसेट हर पेरेंट का।
0: मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा। तो मुझे तो बोला अरे पंडित का बेटा खाना बनाएगा।
1: अच्छा।
0: ये और तुमको कोई लड़की देगा शादी करने के लिए? तो ये तो पहले से मुझे मिल गया था कि ये नहीं हो पाएगा।
1: अच्छा।
0: तो जब मुझसे पूछा मेरे मामा ने क्या करते, मैं कहा शेफ हूँ। कह रहा हिंदी बताओ क्या बोलते हैं उसको, मैं बावर्ची। कह रहे यार तुम पंडित होके ये काम करोगे अब,
1: जी।
0: अब तुम खाना पकाओगे? तो मेरे खानदान ने ही मुझे छोड़ दिया था 6 साल तक। जब तो मैं टीवी पे नहीं आया, जब मैं टीवी पे आया था तो आई थिंक दे स्टार्टेड लाइकिंग मी अगेन, बट हाँ ठीक है।
1: तो वहां से लेकर टीवी तक का सफर किस तरीके से आपने किया उसके बारे में बताएं?
0: बहुत हार्ड वर्क। मतलब जब मैं कॉलेज पढ़ने गया तो समझ में आया कि जो सुन के आया था वो यहाँ पे रियलिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
1: जी।
0: और हमारे टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 97, 98, 99 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, रेस्टोरेंट नहीं थे, होटल थे, होटल बहुत लिमिटेड थे। अब तो खैर हर एक कोने में 5-star होटल भी है, 4-star होटल है, रेस्टोरेंट है। हमारे टाइम ऐसा था नहीं, ना गूगल था, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ ये थी। तो वॉट एवर यू वॉन्ट डू, यू डू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सो वी वर स्केयर्ड कि एट लीस्ट जॉब मिल जाए हमारे को, मतलब कुछ कर लें। तो मैं बोला यार शेफ बनते हैं। मेरे को तो शेफ बोलने में भी एक दिन लग गए थे। मैं बोलता सेफ, ठीक है। तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई स्कूल में कि क्या शेफ बोलो, मैं सेफ बनूंगा सेफ। तो जब पता चला कि करना है तो वो बहुत ही हार्ड वर्क था, लेकिन जब आंख खुली समझ में आया कि यार अब आगे हैं तो पीछे हटेंगे नहीं
1: जी।
0: तो मैंने डिसाइड किया कि जो जर्नी मुझे 8 साल में करनी है, जो अगर कहते हैं कि ये इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको 7-8 साल लगेंगे, मैं इतनी मेहनत करूँगी मैं 4 साल में पहुँच जाऊँगा। तो मैंने मेहनत को डबल किया अपने, और बहुत दिन रात मेहनत की, दिन रात मतलब 18 घंटे 19 घंटे। मुझे याद है वो टाइम भी आया था जब मैं बहुत कम एज में आई बिकम लिटिल बिगर पोजीशन पे आ गया था, मैं नंबर 2 पे आ गया था। नंबर 2 पे आने के बाद भी आई हैड गोरा शेफ फ्रॉम कनाडा, जिसकी जो उसके टाइम पे मैंने 9 महीने तक आई वर्क विदाउट टेकिंग अ डे ऑफ। तो वो मुझे बोलता था भाई तू क्या करता है? मतलब सर मुझे बड़ा बनना है। तो वो जोश था बड़ा बनने का उस टाइम पे
1: जी।
0: फिर बट आई थिंक 2000 में मैंने करियर शुरू किया था और 2004 में आए बिकम एग्जीक्यूटिव शेफ। 4 साल में जर्नी पूरी कर ली मैंने अपनी, मतलब पोजीशन वाली
1: जी।
0: तो वो स्ट्रगल था बस, बट मजा ही बताया स्ट्रगल करने में।
1: मतलब अब जिस मुकाम पर आप पहुंच गए हैं तो जब ये वक्त याद करते हैं तो कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा होता है। इट्स साउंड्स वेरी इंस्पायरिंग व्हेन आई थिंक अबाउट कि मैंने ऐसे मेहनत की। व्हेन आई सी आज के जो लड़के हैं तो मैं उनको इसे इतना बोलता हूँ भाई अगर तुम मेरी मेहनत के 30% भी काम कर लोगे ना तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे।
1: बिल्कुल।
0: देखो मैं ये नहीं कहता हमने जो किया बहुत अच्छा किया, हमने जो किया अपने नॉलेज में किया, गलत भी किया, सही भी किया, गाइडेंस नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, ना कोई रेफरेंस था जैसे आज है। तो उस वक्त पे मेहनत बहुत की, आज तो हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छे मेंटर्स भी हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इंस्टा है, गूगल है, प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैज बिकम वेरी चीप। तो यू गॉट लॉट ऑफ थिंग्स एंड बहुत सबसे अच्छी बात बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों को आज उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती
1: जी। सो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो सर, जैसे हम देखते हैं आजकल, आपने बताया आप प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली आपने कॉलेज से, उसके बाद इतना स्ट्रगल किया, बट अब जो ये रील्स का एक ज़माना चला हुआ है, हम देख रहे हैं बहुत लोग खाना बनाने की रील्स डाल डाल के फेमस हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक, किस हद तक सही है आपके अकॉर्डिंग?
1: मैम देखो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ भी और नहीं भी हूँ। हूँ इसलिए कि शायद ठीक है, वो अपने पैशन को दिखाते हैं, बट मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि जो जो दिखता है वही सच नहीं होता। मतलब जो मैंने दिखाया या किसी ने दिखाया वो सच नहीं होता। सच के पीछे बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद वो रील बनी, अच्छा कंटेंट है तो वो चल जाती है, बट वो कंटेंट को यू कैन नॉट टेक एज अ नॉलेज। मेरा ये मानना है, नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अब ये मुझे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जिस बिजनेस में मैं हूँ, जब मेरे क्लाइंट मुझे भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैं क्या, बन जाएगा? नहीं, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या, ये है क्या? एंड दे हैव नो क्लू कि वो उन्होंने मुझे क्या भेजा।
0: ओके,
1: ठीक है। सो नाउ इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग मी एंड टीचिंग मी कि दिस इज व्हाट दे वांट। जिसको इस इंडस्ट्री का अता पता नहीं था, जिसने अपने ही रेस्टोरेंट को खोलने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर किया या कंसल्टेंट हायर किया, वो आपको एक महीने बाद सिखाता है। तो मैं आपको सुना कहानी, बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे, तो मेरा एक बॉस था, जब मैं इंडिया आया तो मैंने कंपनी ज्वाइन की, उस कंपनी के बारे में बताऊंगा नहीं भाई आपको
0: जी।
1: तो उसने मुझसे पूछा ये क्या है, किसी बहुत ही स्पेशल महंगी सब्जी के बारे में पूछा जो उसने, और वो बहुत, वो मेरा बॉस था
0: जी।
1: तो मैंने कहा ये, इसको ये बोलते हैं, एस्पैरागस बोलते हैं। करे क्या होती है? मैंने कहा ये इंग्लिश वेजिटेबल है, बहुत अच्छी होती है, ऐसा है वैसा है। करे थैंक यू मनोज भाई, सिखाया मुझे आपने। चार दिन का वो मुझसे पूछता, मनोज भाई आज ना अच्छा पका नहीं एस्पैरागस,
0: अच्छा
1: आज एस्पैरागस अच्छा पका नहीं है
0: जी।
1: तो मैं खूब हंसा, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि सीख के सिखाओ मत,
0: बिल्कुल
1: सीख के बताओ।
0: बहुत ही एक फनी मोमेंट भी है आपका।
1: ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट है, ऐसे तो बहुत सारे फनी मोमेंट लाइफ के अंदर हमने किए हैं, देखे भी हैं, बहुत है देखे। मतलब मैं आई वॉज वेरी क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत ही बिगड़ा हुआ वो था मैं, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट।
0: अच्छा,
1: मैंने बहुत लोगों की रैंक की अपने साथ काम करते वक्त।
0: अच्छा, तो सर आपका जैसे 26 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आप बताइए।
1: इसी 26 साल का ही है,
0: 26 साल का ही है। चलिए, सो हम तो कहते हैं इंशाल्लाह बहुत आगे और बढ़े, लेकिन इसमें कोई कोई पल ऐसा हो जो, जहाँ पर आपने एकदम हार मान ली हो, कुछ ऐसा समय आया आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगे कि नहीं, वो चीज़ जो मैंने सोची है वो नहीं हो पाएगी?
1: 3 बार।
0: अच्छा,
1: अपने करियर के स्टार्टिंग में जो मैं करना, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। वो टाइम हार्ड वर्क इसलिए था क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कमाना मजबूरी थी। लेकिन एक टाइम ना लगा कि यार नहीं हो पाएगा ये मेरे साथ के लोग ना, उस टाइम पे ये आपके कॉल सेंटर का बड़ा वो चल रहा था, एंड दे वर पेड वेरी हैंडसमली। मतलब आप, हम जहाँ 2-2.5 हज़ार पे काम करते, वो 10 हज़ार पे काम करते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे लगा यार मैं भी छोड़ दूँ नौकरी एक बार, मैं भी कहाँ फंस गया, क्या बाबूची उनके लगा हुआ हूँ, ना जिंदगी है, रात दिन सुबह शाम लगा हूँ। तो आई थॉट, तो मैं एक बार किसी बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू चला भी गया लाइन छोड़ के, मतलब टू बी रेस्टोरेंट मैनेजर। फिर मैं बैठा इंटरव्यू में, तो उसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उससे बायोडाटा मांग लिया, बोला भाई 6 रुपये खर्च किए, लाया बायोडाटा दे, मैं जहाँ था वहीं ठीक हूँ। देन अगेन आई केम बैक एज अ शेफ। इमैच्योरिटी, मोर ऑफ इमैच्योरिटी दैट आई कुड सी। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि एक बार मैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए गया, शायद मुझसे कुछ गलती हुई। व्हेन आई वाज एट माय प्राइम आई टुक अ डिसीजन टू ओपन माय रेस्टोरेंट। बोलते हैं ना, सेलिब्रिटी शेफ बनने के बाद रेस्टोरेंट खोलने का मजा आ रहा था
0: जी।
1: तो वो एक विश्वास किया किसी के ऊपर, और फिर जब रेस्टोरेंट खोलने बैठे तो मन चला कि उसके पैसे नहीं थे और मैं हो गया, खुद हो गया बैंकक्रप्ट। तो हुए, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप किसी ब्रांड को बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी एस्पैरागस का
0: जी,
1: वो ब्रांड आज इंडिया का टॉप ब्रांड है।
0: अच्छा,
1: और उस ब्रांड को बनाने वाला आदमी मैं ही हूँ, और मैं एक खुल के बोलता हूँ क्योंकि जब मैं आया तो वो ब्रांड वॉज नो वेयर। आज लोग उस बारे में बात करते हैं, आज के 400-500 करोड़ की वैल्यूएशन लगाते हैं, तो मुझे पता है वो ब्रांड कहाँ से कैसे पहुँचा,
0: ठीक
1: है। लेकिन जब वो ब्रांड बनना शुरू हुआ, जब उस ब्रांड पर पूरा काम किया, जब वो ब्रांड बन चुका था ना, तो मुझे ये बताया गया कि यार अब नए स्टाफ की जरूरत नहीं है, अब हम पुराने जो लोग थे ना थॉट प्रोसेस वाले वही कराएंगे। सो वो पुराने और नए लोगों के कॉम्पिटिशन में ना, वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो बना के उस ब्रांड को खड़ा करने की थी, वो ख़राब हो गई। और जब वो ख़राब होने लगी ना, तो आपका, आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए, देयर हैज़ टू बी इमोशनल अटैचमेंट दैट यू डू, और हमें कौन करेगा मोटिवेट इस एज के अंदर आके, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार जिस ब्रांड को मैं खड़ा कर था, एंड आई कुड हैव डन मच बेटर, शायद मैं इसको बीच में छोड़ के चला गया बिकॉज आई वॉज मेड द सर्कमस्टेंसेस वेयर आई हैड टू कम एंड लीव द जॉब दो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी बिकॉज जो ओनर थे ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टॉप मी इन द कंपनी बट ओनर फर्क क्या होता है ना कि ओनर के साथ डेली काम नहीं करते
2: जी.
1: आप काम करते हैं टीम के साथ
2: बिल्कुल.
1: और अगर आपकी टीम के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे. मैंने कहा कि हर काम के लिए लोग करते हैं वेट एंड वॉच. हमारी जो इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री ये वेट एंड वॉच नहीं होती बिकॉज आप जो भी काम करते हैं ना उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप काम करते हैं वो करते हैं आप किसी भी गेस्ट का इमोशन बाय करते हैं. कोई भी गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में आया वो अपना वो पैसे उसके हैं वो अपने इमोशन के एक्सपीरियंस लेने आया. अगर आपने वहाँ गलती कर दी वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा. मैं क्यों चाहूँ कि जो भी गेस्ट मेरे रेस्टोरेंट में आ रहा है वो उसका एक्सपीरियंस गलत हो मेरी वजह से या मेरी टीम की वजह से या मेरे अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से. ऐसा क्यों नहीं है जो मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर कैलिबर है दिखाने का या करने का वो मैं हर उस गेस्ट को दिखाऊँ वो बोले यार दिस इज व्हाट इज अ प्लेस. ऐसे बनता है ब्रांड. तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप चाहते हैं बहुत कुछ करना बट आपके हाथ शायद नहीं हो पाते उस काबिल. अच्छा इसलिए मैंने डायमंड ले लिया जल्दी.
2: जी मनोज जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप हमें बता रहे हैं इस फील्ड के बारे में. सो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: इन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब जो एक सेलिब्रिटी शेफ का जो टैग है आपके साथ जुड़ा हुआ, ये किस तरीके से आप तक आपके पास आया या आप खुद इस तक पहुंचे, आपने कितनी मेहनत की, इसके बारे में हमें बताइए।
1: देखो मैं ना, मुझे ये पता भी नहीं कि ये टैग मुझे कब लग गया।
0: अच्छा,
1: मुझे नहीं आइडिया इसका, मुझे टैग कब लगा। आई थिंक 2014-13 में शायद चीजें शुरू हो गई थी, मतलब नॉट एज सेलिब्रिटी शेफ बोलूंगा, लेकिन हाँ अच्छा मच्छा काम कर रहे थे। वो सेलिब्रिटी शेफ बोलना क्योंकि मैं कुणाल, हम इकट्ठे काम करते थे, कुणाल मैं रणवीर इकट्ठे काम करते थे, तो वो तो हमें भी नहीं मानते कि ऐसा भी कुछ टैग होता है। वो किसी दिन किसी जगह छप गया और वही चीज़ रेप्लिका होती गई, सेलिब्रिटी शेफ हर पेपर के कटिंग पे या कहीं भी आपको इंट्रो किया। तो वो किसने दिया मुझे, आज मैं ढूंढ रहा हूँ मंदे को कि किसने मुझे टैग दिया, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, खुद ढूंढ रहा हूँ कि भाई तू कौन था जिसने मुझे सेलिब्रिटी शेफ बोला। मैं इस वर्ड से बहुत अहमियत नहीं रखता। सेलिब्रिटी शेफ बहुत अच्छी चीज़ होती है बनना, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं एक जो वर्ल्ड शेफ आई थी, मैं उससे बहुत बड़ा खुश हूँ। डॉक्टरेट में डिग्री से अच्छा वही है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी आपका काम ही आपकी जो डॉक्टर है वैसे शेफ है। तो आप शेफ बोलें या सेलिब्रिटी शेफ बोलें, शेफ बोलेंगे तो आई विल बी वेरी ग्राउंडेड। डोंट टेल मी सेलिब्रिटी शेफ, देन आई हैव टू बी, मेरे को अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छी गाड़ी चलानी पड़ेगी, टीवी पहनना पड़ेगा, 1 मिलियन फॉलोअर होना चाहिए मेरे पास,
0: बिल्कुल
1: है ना। वो मैं उसे पीछे हट चुका बहुत पहले। अब
0: मतलब आपका उसमें इतना,
1: मैंने 6 साल पहले आई हैव बिकम वेरी लो प्रोफाइल जानबूझ के।
0: अच्छा हाँ। सो सर कभी ऐसा, मतलब आप बहुत हैंडसम लुक के हैं, तो कभी कुछ मॉडलिंग या इन चीजों में इंटरेस्ट रहा आपका, या कभी कुछ ऐसा मौका मिला करने के लिए? क्योंकि एक जब टैग जुड़ता है ना सेलिब्रिटी शेफ, तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे निकल के आती हैं, कभी कोई एड ब्रांड
1: आपको बड़ी आते बड़ी एक ऐसी इंटरेस्टिंग बताऊं जो शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे बोली नहीं आज तक।
0: अच्छा।
1: जब मैं दुबई था तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम था अपने लिए, तो मैंने बहुत अच्छी फिटनेस भी बॉडी बनाई थी, मतलब आई वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग एंड लकली आई वाज डूइंग टीवी, तो मैं जी सोनी पे काम कर रहा था वहाँ पे। आई डिड अबाउट 45-50 एपिसोड किए मैंने उसके ऊपर। तो जी के जो सीईओ थे मनोज जी, आई थिंक ही मेट मी एट वन ऑफ द इवेंट एंड मुझे बोला कि यार तू ना यू मेक योर पोर्टफोलियो एंड अप्लाई फॉर अ मॉडलिंग। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खाना पकाता हूँ। तू कर एक बार, तू कर
0: जी।
1: तो मैंने आई डिड माई पोर्टफोलियो, आई सेंड इट टू फ्यू, ही गेव मी सम कॉन्टैक्ट, मैंने उनको दिया। तो मुझे ना बड़े सारे ऐड के और मॉडलिंग के वहाँ लगे, तो मैं जब वहाँ लगा तो मैं हंसने लगा कि मैं करूँगा मॉडलिंग। खैर जो भी है, तो आई डिड सम प्रिंट मॉडलिंग, जिसमें बैंक से ज़ारा है, दूध की कंपनी थी, सब चीज़ों की। इस बीच में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि आई वॉज इंजर्ड और मेरे को एक फ़ोन आता है कि आर यू अवेलेबल फॉर द शूट फ्रॉम दिस अप्रैल, टाइम था 2021 मुझे 2021 का, फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स।
0: अच्छा
1: ठीक है, और मैंने उनको ना बोल दिया। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि गेम थ्रोन होता क्या है, ठीक है। और जब मैंने मैसेज दिखाया बेटी को, तो उसने मुझसे एक तरह बात नहीं की।
0: ओह माय गॉड,
1: 10 मिनट का फाइटिंग शॉट ऑन डेजर्ट विद द मेन एक्टर,
0: जी
1: वो सपोज टू बी मी, और मैंने उसको 1 मिनट बोला नहीं मैं आई एम नॉट फ्री। तो चीजें हुई भी, बट आई डोंट टेक थिंग्स एज दैट, जो है वो है, काम आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो।
0: जी जी जी, मतलब आप थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल टाइप के भी है ना, कि आपको नहीं पता वो चीजें क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में भी नहीं पता था।
1: नहीं, नहीं तो बिहार के लड़के को क्या पता होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या होता है, आप उसे पंचायत के बता देंगे पंचायत क्या भी।
0: और जैसे आप बोल रहे हैं कि जो ये सेलिब्रिटी टैग है आपको पता ही नहीं है कैसे दे दिया, किसने दे दिया,
1: मुझे नहीं पता
0: बिल्कुल। यही तो खासियत है ना फिर आपकी,
1: एक तो आप सेवा करो ना, लोगों की सेवा करो आप सोसाइटी को दो, जिससे मेरी एनजीओ चलती है,
0: बिल्कुल
1: गरीब बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए वाइफ करती हैं, अब वहाँ करो ना जहाँ पे आपको का मन शांत रहे, जहाँ चीजें देख के लगे कि यार हमने कुछ सोसाइटी को वापस दिया है।
0: बिल्कुल
1: लाके,
0: मतलब आप इस चीज के अलावा आपका एनजीओ भी है और बहुत बच्चों की आप सेवा भी कर रहे हैं।
1: जब मैंने गरीबी देखी तो किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा
0: जी,
1: तो हमें लगा कि जब हम कुछ लायक हो जाएंगे तो हम शायद 2 बच्चों की किसी वक्त की रोटी खरीद लें या दे पाएं, तो शायद थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी खुशी मिलेगी हमारे को।
0: बिल्कुल, और अगर ईश्वर ने इस काबिल बनाया तो डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत से लोग मतलब सोचते भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने सोचा और आप लोग कर रहे हैं, सो बहुत बड़ी बात है, वेरी इंस्पायरिंग।
1: थैंक यू मैम।
0: सो मनोज जी, आप बहुत से ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से इन सबको मैनेज किया जाता है? मतलब रेस्टोरेंट्स और बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो
1: हाँ, तो बेसिकली अभी करंटली जो एक कंपनी है फर्टिलिटी फूड्स का मैं सीईओ हूँ, इस बिना अभी ईयर ना हो, तो जब मैंने ज्वाइन किया था इनके साथ, मेरे दोस्त ही हैं अच्छे, वेरी यंगस्टर, वेरी डायनेमिक पीपल, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका एक ब्रांड है ज़ोका, इन्होंने 70-80-90 के करीब खोला था, देन दे हैड अ प्लान, सो व्हाट दे डू इज दे क्रिएट अ ब्रांड एंड दे सेल द फ्रेंचाइज, और इसके बाद जब मैं ज्वाइन किया तो आई थिंक दे ऑलरेडी हैड बिल्ड अ ब्रांड का है, तुलसी है, नोमई है, फायर्ड अप है, उसको हमने अनग्राउंड एग्जीक्यूट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब इट केम आउट रियली वेल, तुलसी हैज बीन डूइंग फिनोमिनली वेल, फायर्ड अप इज डूइंग वेरी गुड, नोमई इज डूइंग वेरी गुड, अब तुम तुलसी को लेके जा रहे हैं इंडिया के बाहर, नाउ वी ओपनिंग इन यूएस, नाउ ओपनिंग ज़ोका इन यूएस, नाउ वी आर ओपनिंग नोमई पैन इंडिया, तुलसी पैन इंडिया, ये सारे ब्रांड को मैं मैनेज करता हूँ विद अ टीम, एंड अच्छा था, मतलब दिस इज एक्सपर्टीज, दिस इज नॉट अ वेरी बिग रेस्टोरेंट, 70-80 का रेस्टोरेंट है, छोटे रेस्टोरेंट चलते अच्छे हैं, लो कॉस्ट हैं, तो उतना फर्क है नहीं, मतलब आई कीप एंजॉयिंग व्हाट आई डू,
0: मतलब इंडिया में तो बहुत आपने सेटल कर दी चीजें, अब बाहर उन्हें ले जाने का भी प्लान,
1: अब यूएस साइन कर चुके, काम शुरू हो गया,
0: जी बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, सो इसमें कैसे ये जैसे कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी मेंटेन किस तरीके से आप लोग करते हैं?
1: देखो मैम, ये ना ये बहुत ही बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है,
0: अच्छा
1: समझाने के लिए, तो क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है, आप पहले व्हेन यू मेक मेन्यू, तो मेन्यू आने के बाद आप देखते हो कि किसके लिए बेस्ट शेफ कौन होगा, देन आई हैव अ कॉर्पोरेट शेफ, देन आई हैव अ रीजनल शेफ, जो सडन यू नो प्री ओपनिंग से लेके पोस्ट ओपनिंग तक उनके साथ खड़े हुए ट्रेनिंग करते हैं, देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेसिपीज, एंड देन वी कीप डूइंग लॉट ऑफ ऑडिट्स, मतलब कॉर्पोरेट टीम्स कीप मूविंग आउट, वी कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन कमेंट्स, कि जो कमेंट आते हैं रिव्यूज गेस्ट के, चाहे जोमेटो पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे वो कमेंट्स कार्ड पे हो, वी कीप थिंक क्या होता है, एंड जो ऑडिट करते हैं व्हेन वी गेट द रिपोर्ट एवरी मंथ, तो वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या कॉस्ट हो रही है, इफ इस कॉस्ट इज अंडर कंट्रोल, मतलब आपका चीज ही चल रही है, इफ इज नॉट अंडर कंट्रोल, इसकी मतलब आपकी शॉर्टेज हो रही है, और हर चीज़ का अपना एक फॉर्मेट है टू मेंटेन इट, तो दैट यू गेट टू सी कि कहाँ पे क्या है, क्या रेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेंडर मैनेजमेंट, अगर आपका अच्छा वेंडर मैनेजमेंट है, आपकी अच्छी स्किल है, तो स्पॉइलेज कॉस्ट कंट्रोल विल बी ऑलवेज इन कंट्रोल।
0: ओके,
1: हाँ जी।
0: और सर जैसे किसी को नहीं इस लाइन की नॉलेज है, उन्हें अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है,
1: ना करें आजकल तो हर बंदा रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है।
0: जी ये तो
1: 100 खोलते हैं 110 बंद होते हैं।
0: बिल्कुल, तो मतलब इसमें आप क्या सलाह देंगे हमारे?
1: सलाह ये दूंगा कि भैया अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो प्लीज उससे खोल के ना घर की रूटीन ना चलाएं।
0: ओके,
1: यू शुड हैव अनदर बिजनेस टू रन योर फैमिली, रन योर हाउस, रेस्टोरेंट खोले, हायर अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, आपके पास साल 6 महीने का फंड होना चाहिए टू इन्वेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट कि आपने आज खुला आज ही पैसे कमा रहे हैं कि चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, यू शुड हैव अ गुड बैकअप, क्योंकि जो पैसे आप लगा रहे हैं वही आपके हार्ड अर्न मनी है, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है फंड, उसके इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और थर्डली आप कहाँ खोल रहे हैं
0: जी।
1: आपकी जेंट्री क्या है, आपने क्या उस जगह के बारे में लोगों से पता किया कि वो लोग खाते क्या हैं, क्या है, कैसे, हमें तो जगह मिलती है एंड वी जस्ट ओपन द रेस्टोरेंट। आजकल तो हिंदुस्तान में रियल एस्टेट हैज़ बिकम अ बिगर स्कैम, आप आइए मेरा दुकान खोलिए मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, अब वो पैसे तो दे देगा दुकान खोलने के, लेकिन वो वहाँ फुटफॉल नहीं है, तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट वो कौन देगा फिर?
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री,
0: और जब तक मतलब साइड बाय साइड आप इसे कर सकते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। एक और बात मेरे जहन में ये आ रही है कि हमारे सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे, लाइक शिल्पा शेट्टी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इन लोगों ने भी अपने रेस्टोरेंट्स की चेन स्टार्ट की हुई है। सो क्या सेलिब्रिटीज का इसी में इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है?
1: नहीं, कोई इंटरेस्ट तो शायद इंटू में तो ये बोलते हैं कि हमें खाने का बड़ा शौक है। अब सेलिब्रिटी तो योगा की इतनी बड़ी टीचर हैं तो खुद ही खाना कम खाती हैं, ठीक है, फेम है, लोग अपना फेम यूज़ करते हैं। आई थिंक सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट बेस्टियन इज डूइंग वेरी गुड। सचिन सर का रेस्टोरेंट क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ ही हैज़ रेस्टोरेंट, वो तो गॉड ऑफ हैं, तो उस पर तो मैं कमेंट कभी नहीं करूँगा। विराट का रेस्टोरेंट है वन एट कम्यून, आई थिंक कुछ रेस्टोरेंट के हैं जो दे मैनेज बाय देमसेल्फ, बाकी दे रन ऑन फ्रेंचाइजी। सो आई एम श्योर विराट हैज अ बिग नेम, वन एट कम्यून उसकी जर्सी का नाम है, वन एट कम्यून पे एनीबडी कैन पुट मनी ऑन हिम, सो दे गेट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, दे गॉट लॉट ऑफ फ्रेंचाइजी, सो दे मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। दे डोंट ऑपरेट, दे डोंट ऑपरेट बिंग 100%। आई थिंक मुझे नहीं पता विराट कोहली अपने रेस्टोरेंट में आखिरी बार खाना खाने कब गया होगा।
0: बिल्कुल,
1: अभी अब देखें तो बेस्टियन बॉम्बे था सेलिब्रिटी शेट्टी का, गॉट क्लोज फॉर फ्रॉड, 55 करोड़ का फ्रॉड हुआ उस रेस्टोरेंट में।
0: अच्छा,
1: तो क्यों हुआ ये मैं नहीं बताता ना, आई एम वन टू, ठीक है, लोग खोलते हैं, चलता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि अजीत सिंह ने एक रेस्टोरेंट खोला है कैकड़ा में जो 40 रुपए का खाना बेचता है। That's a genuine celebrity who has done this.
0: जी।
1: चाहे गौतम गंभीर हो।
0: अच्छा।
1: जब वो थी सांसद तो उन्हें कैंटीन खोल जहाँ पे 10 रुपए का खाना मिलता है।
0: 10 रुपए में, बिल्कुल।
1: आपने मैं किसी का अगेंस्ट नहीं, आप रेस्टोरेंट खोलें, बिजनेसमैन है, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, एंड आई थिंक वी ऑल फील गुड अबाउट थिंग्स। अभी युवराज सिंह ने रेस्टोरेंट खोला गुड़गांव में, उसी उनका नाम लिया गया, पैसे किसी और लगाए, बट रेस्टोरेंट युवराज सिंह के नाम पर चलता है, बट व्हेन यू गो एंड सी द बिजनेस इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट।
0: जी।
1: सो मैंने समझा ना कि ये बिजनेस उतना आसान है नहीं। अब सेलिब्रिटी है, एट योर नेम इट माइट क्लिक्स एट सम टाइम, बट टू सस्टेन द रेस्टोरेंट यू रियली नीड टू हैव अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट कॉन्सेप्ट।
0: जी, तभी वो एक मुकाम तक पहुंचे
1: एंड अ ग्रेट प्रोडक्ट।
0: बिल्कुल,
1: अगर अच्छा खाना अच्छा ड्रिंक नहीं है तो
0: हाँ फिर तो कोई क्यों ही जाएगा। बिल्कुल। और सर अभी जैसे आपने रेस्टोरेंट्स का बताया, बिजनेस की भी बात हो गई यहाँ पे, अब अगर किसी को एक्चुअल में शेफ बनना है, तो हमारे लिसनर्स अभी सुन रहे हैं काफ़ी, हो सकता है इसमें कई लोग इसमें करियर ढूंढ रहे हों, सो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करें कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं कुछ ऐसे, और क्या रास्ता है ट्वेल्थ के बाद, क्या किस तरीके से वो जाएं इसमें?
1: देखिए, बेस्ट कॉलेज का तो मैं किसी के लिए नाम नहीं लूँगा, आई थिंक जो इंडियन गवर्नमेंट के IHM इंस्टीट्यूट्स हैं पूसा वाले, इनके साल में एक बार इसकी इंटरेस्ट होती है, पैन इंडिया इनके इंटरेस्ट होते हैं, अच्छे सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, ग्वालियर, सब अच्छे कॉलेज हैं। डिपेंड ये नहीं करता किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। ऐसे भी कॉलेज हैं जैसे औरंगाबाद IHM है, और महंगे महंगे कॉलेज भी हैं। आई थिंक शेफ बनने की इंडस्ट्री में, जो भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं ना शेफ बनने के लिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैशनेट है। आई थिंक जो हमारे टाइम में नहीं था, जो इनके टाइम पे है, कि हमारे टाइम पे शेफ वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, दिस टाइम दे आर रिकग्नाइज्ड, ऑलवेज दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट एज अ बिग करियर बूस्ट। मतलब जब से टीवी शो आए हैं और सब शेफ बड़े बने हैं, तो इनके पास तो बहुत बड़ा करियर है, और जिस लेवल के रेस्टोरेंट्स इंडिया में खोल रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, या इंटरनेशनल इंडिया हमारी, स्कोप बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। बट मेरा एक मानना है कि आप शेफ बने, ये करियर बहुत अच्छा है, बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा बताता है, मतलब यू नो खाना पकाना अपने आप में एक कला है,
0: कला
1: है। मैं तो बहुत इसको एंजॉय करता हूँ। पेशेंस रखें, अपने बेस को बहुत क्लियर करें। आजकल लड़के बहुत जल्दी बहुत बड़ी पोजीशन के लिए सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ, पहुँचें बिल्कुल पहुँचें, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करें कि आप जब वहाँ पहुँचें तो आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग हो।
0: जी,
1: क्योंकि आगे पहुंचने में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पहुंचने के बाद जो कंपटीशन बढ़ता है, 10,000 से 1,00,000 की सैलरी बहुत आसान है, 1 से 2 लाख सैलरी बड़ी आसान है, 2 से 3 लाख सैलरी थोड़ी डिफिकल्ट है, और 3 से 4 लाख सैलरी बहुत डिफिकल्ट है।
0: जी।
1: तो हर उस मुकाम में पैसे पैसे बहुत हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, इंडियन शेफ को तो बहुत डिमांड मार्केट में।
0: अच्छा।
1: मतलब आपको बताऊं कि इंडियन शेफ्स हैज बिकम द टॉप प्रायोरिटी फॉर द वर्ल्ड, मतलब उनसे टैलेंटेड बंदा, हार्ड वर्किंग बंदा वर्ल्ड में कोई नहीं है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: और ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक ज्यादा डिमांड है इंडियन शेफ्स की,
1: बहुत डिमांड है।
0: ओके, सो सर खाने की भी यहाँ पे बात हुई, शेफ के बारे में आपने बताया और डिमांड की, आपका अपना फेवरेट कुजीन कौन सा है?
1: मेरे दो हैं, मेरे बेसिक घर वाला जो है वो दाल चावल चोखा, बिहारी हूँ तो बिहारी वाला खाना, दाल चावल चोखा, आलू की भजिया देसी डाल के, और व्हेन आई गो टू रेस्टोरेंट आई वांट टू ईट फूड, जापानीज फूड।
0: अच्छा,
1: आई लाइक जापानीज फूड अ लॉट।
0: और आप ऐसे घर में बहुत सी बार ऐसा तो होता होगा आप बनाते हैं, या लास्ट कब बनाया था आपने कुछ?
1: लास्ट कब बनाया था मतलब महीने में एक बार,
0: कभी फैमिली को खुश करने के लिए?
1: नहीं, फैमिली महीने में एक बार, महीने में तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट भी और भी रेस्टोरेंट हैंडल करता हूँ, तो अभी रेस्टोरेंट हैंडल कर रहा हूँ मैं दिल्ली में ही है, आइवरी के नाम से, उसका नया मेन्यू है, उसके नए मेन्यू का ट्रायल भी मैंने खुद ही करवाया था, उसको कुछ दिन में लॉन्च है।
0: अच्छा,
1: तो अभी मैं यहाँ से जाके मैं खाना पकाने वाला हूँ।
0: अच्छा,
1: सो मैं महीने में एक बार अपना हाथ पक्का किचन में ले जाता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैं
0: जी
1: व्हाट्स माय बैकग्राउंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही,
1: जरूरी भी है ना, वरना हाथ नहीं चलेगा फिर।
0: जी जी जी। और सर आपका फ्यूचर विजन क्या है?
1: मेरा तो मैंने ना अभी अभी एक मार्केटिंग कंपनी खोली अपनी।
0: अच्छा,
1: मैंने अपनी एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, मेरा लोगों ने मैंने देखा लोग ना आजकल एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे रील डालनी डालनी, तो मैं कहा मैं भी ये काम खोलता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो हमने अभी चार महीने पहले कंपनी खोली है कथा लैब के नाम से, एंड वी आर डूइंग सोशल मीडिया फॉर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉर्पोरेट्स, और मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने समझा कि जो बाकी लोग सोशल मीडिया संभाल रहे हैं उनके पास एफ एंड बी का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वो कर रहे हैं लेकिन दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस एफ एंड बी, मेरे पास क्या है कि मैं वो एक्सपीरियंस है तो मैं शायद वो काम अच्छा कर पाऊंगा। और मैं अब वैसे कंपनी की ओनर मेरी बेटी है, मैं उसके बिहार पे जॉब करता हूँ उसी कंपनी में, ठीक है, मतलब उसके बिहार पे काम करता हूँ मैं, मेरे दो को फाउंडर और भी हैं, तो ये मैंने स्टार्ट किया, आई एम एंजॉइंग अ लॉट, प्लस फर्टनिटी के जो भी नए ब्रांड चल रहे हैं तुलसी वगैरह वगैरह लॉन्च के लिए रेडी हैं उसके लिए मैं कर रहा हूँ, इस साल शायद मैं अपना ब्रांड भी लेके आऊँ।
0: अच्छा,
1: हाँ शायद इस साल के मिड तक मैं अपना ब्रांड भी लेके आ रहा हूँ।
0: वाओ, हमें वेट रहेगा।
1: बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत ही इतिहास को वापस लेके आने की थोड़ी सी कोशिश है, मतलब इतिहास तो नहीं बोलूंगा लेकिन
0: मतलब मुझे लग रहा है कुछ आपके अपनी साइड का,
1: लेकिन वेज। हाँ, वेज तो मेनली आप मान लीजिए बनारस लखनऊ और बिहार का कुछ लेके आ रहा हूँ मैं।
0: अमेजिंग, हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा सर
1: जी,
0: और हम तो गॉड से यही प्रे करेंगे कि जल्दी ये आए। और
1: नहीं नहीं, अभी बेसिकली नाम हम सब रजिस्टर हो गया है, सब पे काम चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो को फाउंडर, मेरा जो पार्टनर है, ही मेट एन एक्सीडेंट, तो उसका आई एम वेटिंग फॉर हिज रिकवरी टू हैपन, आई थिंक मई जून जुलाई तक आई विल बी एबल टू स्टार्ट माई फर्स्ट रिटेल। सो बहुत छोटी सी जगह बनाएंगे, और जो असली चाट, तो बेसिकली दिस इज अबाउट चाट, जो चाट खाने की मिलती है आपको बनारस में या बिहार में या
0: लखनऊ में,
1: तो वही के कारीगर, वही के पत्तल में, वही के सकूरे में सब कुछ, इवन चाय बनेगी अंगीठी के अंदर।
0: वाओ,
1: तो वी वांट टू गेट दोस एरा ऑफ 1780s का एरा वापस लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग देखेंगे कि पहले कैसे खाना बनता था।
0: बिल्कुल,
1: लोग खड़े हों उस चीज को बनते हुए देखें, पेशेंस रखें ताकि चीज अच्छी है, और ये सबके लिए, दिस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दिस इज फॉर एवरीवन हु इज ऑन द रोड, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो करोड़पति लेडी हो, ये सबके लिए है यहाँ पे ऑप्शंस।
0: अमेजिंग कंसर्न, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कुछ ऐसा आने वाला है, बिकॉज NCR में मुझे ऐसा लगता है जो ये चाट है ना वो कुछ अलग ही कर देते हैं, छोले प्याज सब कुछ डल जाता है, वो एक फील खत्म हो जाती है।
1: मैं ना मेरे बचपन की कुछ टेस्ट मेरे अभी तक दिमाग में है जो मैं शायद बिहार जी गया नहीं है, खा नहीं पाया, और मैं अब चाट नहीं खाता, आई डोंट ईट चाट।
0: अच्छा,
1: मतलब मैं खाना भी नहीं खाता, चाट तो छोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगा कि शायद वो एक चीज है जहाँ पे हिंदुस्तान को वो चीज़ से आप अलग नहीं कर सकते
0: जी,
1: और मुझे लगता है कि मैं शेफ होने के बाद भी इतना छोटा सा काम क्यों खोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जहाँ भीड़ है वहाँ खाना है, और अच्छा खाना जहाँ है वहाँ फिर से भीड़ आएगी।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, तो भीड़, अच्छा खाना और वो पुराना इतिहास दिखाना का जो संगम है वो आएगा इलाहाबाद से जहाँ मैं रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत मतलब ये सुन के बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि आप एक ऐसी चीज लाने वाले हैं और हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा।
1: नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे आपको,
0: बुलाएंगे उसके बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।
2: एक

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब एक लास्ट में, मतलब लास्ट तो नहीं कहूंगी, बहुत मजा आ रहा है, मन करे ये चलती रहे बातें। बहुत डिफरेंट टॉपिक है आज बहुत ही, आप जैसे आपने समय निकाला हमारे लिए, क्योंकि अभी तक मेरे शो में यहाँ पे म्यूजिशियंस, मॉडल, फैशन डिजाइनर, इवन डांसर्स आल्सो, तो सब आ चुके हैं, बट सेलिब्रिटी शेफ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। शेफ, यस। तो सर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे जो रियलिटी शोज हैं, तो अभी हमने देखा मास्टर शेफ ही आई थिंक है ना शेफ के लिए, तो आपको क्या लगता है ऐसे और शोज होने चाहिए, क्योंकि सिंगिंग डांसिंग के तो हम बहुत देखते हैं, नहीं होने चाहिए? अच्छा, ऐसा क्यों?
1: वो रियलिटी में रियलिटी नहीं है ना।
0: बिल्कुल, अच्छा, मतलब वहाँ भी सेम ही चीज है, जो म्यूजिक डांस में वही उधर भी है।
1: वो रियलिटी नहीं होती है।
0: अच्छा,
1: इट्स जस्ट अ शो, एंजॉय लाइक अ नॉर्मल बहुत चीजें नहीं बोलूंगा, मतलब सारे मेरे दोस्त यार हैं, वो अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझे रिमांड पे ले लेंगे।
0: जी जी जी, चलिए ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं। और सर आपको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं, हमें उनके बारे में बताइए।
1: नहीं, मुझे ना इसके बारे में बात करने में बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि जो भी अवार्ड मिले, कई फ़ोन आया, सर आपको अवार्ड मिल रहा है, मैं दे दे भाई। तो मैं बॉम्बे था तो मुझे किसी ने फिर से फ्यूचर का अवार्ड दे दिया, मेरे साथ दो तीन बड़े शेफ भी थे, एक हरपाल था, सारांश था, बहुत अच्छे लोग थे। तो मुझे आया कि सर आपको ना, वी वॉन्ट यू टू कम एंड टू बॉम्बे टू टेक द अवार्ड, दीपा पाटिल का था अवार्ड। तो उन्होंने मुझे क्यों दे रहे थे फ्यूचर में, तो मैं तो नहीं सर, आप तो अभी यू आर कमिंग आउट रियली वेल, पीपल नो अबाउट यू, आप 2014 की बात है, मैं रेस्टो खोल रहा था अपना, तो मैं कहा ठीक है अवार्ड दे देते हैं, अवार्ड अगर कोई अवार्ड दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज आपने पैसे नहीं पे किए। तो फिर मैं दिल्ली आया तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है, मैंने कहा ठीक है जी, कहाँ मिल रहा है, मैं कहा यहाँ मिलते हैं। तो मैं इसके बारे में इसलिए बात नहीं करता कि रिकग्निशन, मुद्दा ये कि जितने भी अवार्ड मिले उसमें लोगों ने बुलाया आपको और अवार्ड दिए, तो जब आपको अवार्ड मिल रहा है ना तो आपको लगता है कि हाँ शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसके लिए आपको लोग फोन करके बुला रहे हैं अवार्ड लेने के लिए। मैंने कभी किसी से अवार्ड नहीं मांगा कि भाई मुझे अवार्ड ला के दो तो मैं आऊँगा, मतलब ठीक है वो अवार्ड आएगा, एक दिन आप फोटो लेके डालोगे इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे या अपने उस पर, उसके बाद वो इट्स अ शो मोमेंटम एट योर हाउस, नोबडी इज गोइंग टू लुक एट थिंग्स। मेरे घर पे तो मेरे अवार्ड दिखते भी नहीं मेरी बीवी के सामने, मतलब शी हैज़ गॉट सो मच अवार्ड। तो ठीक है, मतलब हाँ यू फील गुड, बट जैसे होता है, मतलब द वे इट कम्स आई टेक इट, आई डोंट फील वेरी गुड अबाउट द सेम, मतलब आई फील गुड अबाउट सेम, बट ऐसा नहीं कि मुझे हर साल अवार्ड मिल रहा हो या मैं यहाँ जाऊँ, उसको जिसने याद किया दे दिया, दे लिया हमने अवार्ड।
0: जी, बट आपकी इन बातों को सुन के लग रहा है कि आप सच में बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने जैसे बताया आप बिहार से हैं, तो वहाँ के लोग हम देखते हैं बिहार यूपी के बहुत ही ऐसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा उन्हें चमक धमक का शौक भी नहीं होता।
1: नहीं, मुझे तो है। अच्छा। मुझे है, अब हो गई है
0: जी,
1: अब हो गई है, अब ना अभी क्या है, अब बच्चे बोलते हैं, बेटी बोलती है, अब जा रही हूँ बहंगे जाना, ये बहंगे जाओ, ये बहंगे जाओ, ये घड़ी पहनो, ये जगह जाओ, तो अब लगता है हाँ यार ठीक,
0: मतलब वो आपको स्टाइल करते हैं।
1: नहीं शायद मैं खैर आई वॉज डूइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर, तभी बना था, मैं मॉडलिंग कभी कर नहीं पाता, बट ठीक है, अच्छा लगता है करने में।
0: नहीं बिल्कुल, जैसा बच्चे बोले फैमिली बोले वो तो जरूर उनके लिए करना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: सो आपने अभी अपनी वाइफ का भी जिक्र किया, सो उन्हें कैसा लगता है कि उन्हें भी शौक है खाना वाना बनाने का?
1: अच्छा, शी इज बेटर कुक देन मी।
0: अच्छा,
1: शी इज बेटर देन, शी इज बेटर देन मी,
0: मतलब वो आपसे ज्यादा
1: बढ़िया। हाँ, अच्छा खाना पकाती है। मैं रेस्टोरेंट का खाना पकाता हूँ जिससे, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं वो कमाता हूँ जिससे घर का घर चलता है।
0: जी,
1: वो खाना पकाता हूँ जिससे घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो सर अब लास्ट में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस शो को सुन रहे हैं उसमें हर एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे?
1: क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं क्या मैसेज दूँ लोगों सुनने के लिए। जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी को करियर बनाना है तो आई एम श्योर आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, जो यंगस्टर जिनको हु वांट टू परस्यू, हु वांट्स टू गो एंड डाइन एट द रेस्टोरेंट, अंडरस्टैंड कि जब हम बोलते हैं कि जल्दी ला खाना ये नहीं है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है. तो वी एज अ गेस्ट शुड बी एबल टू एड्रेस देम वेरी नाइसली. वी शुड बिहेव नाइसली. रेस्टोरेंट में जाके वी आर नॉट किंग एंड देयर आर नॉट आवर स्लेव्स. मेरा ये मानना है हिंदुस्तान में बहुत कमी है, हिंदुस्तान में बहुत कमी होती है. हिंदुस्तान में लगता है वी आर किंग एंड देयर आर स्लेव्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्डली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. खाना खाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट जाइए, रील कम देखिए.
0: जी.
1: रील रील को अपना वो ना बनाए, क्या बोलते हैं, ट्यूटर.
0: जी
1: ठीक है, रील इज नॉट ए ट्यूटर. एंड आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ स्टाफ वाज ऑन वेब वेर यू कैन अंडरस्टैंड एंड लुक एंड सर्च फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फूड कि क्या खाना कहाँ से आया है. मेरे लिए शेफ के लिए इतना ही बोलना काफ़ी. मैं तो मैं किसी को क्या ही बोलूँगी क्या क्या करें क्या नहीं करें.
0: नहीं नहीं, आपने जो ये बात बोली है ना कि रेस्टोरेंट्स में जाके एक अच्छा बिहेव, मतलब देखा जाए तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए. अपने आप को किंग भी नहीं समझे, ये इस ये झलक आता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त निकाला और इतना हमें इंस्पायर किया आपने. सो थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी.
0: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइक.

0: I am Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello. Good afternoon. Namaskar. Sat Sri Akal. Ram Ram. Jai Mata Di. Assalamu alaikum, dosto. मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनोरमा 107.8 एफएम। नाउ द शो इज रियली स्पेशल फॉर अस बिकॉज यहां पर हर बार हम एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी लेकर के आते हैं आपके लिए जो अपनी लाइफ की यात्रा में से चीजें हमें बताते हैं, स्किल्स हमें दे करके जाते हैं, एक नई दुनिया का एक्सपोजर हमें मिलता है हर बार, क्योंकि एक नए गेस्ट होते हैं, हर बार एक नई बात होती है, नया डोमेन होता है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नरेश ठाकुर। नरेश ठाकुर हैं सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप के फाउंडर एंड थिएटर एक्टर हैं, खुद बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, फरीदाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं, थिएटर को समझेंगे, अभिनय को समझेंगे, वे तमाम चीजें हम यहाँ पर जान रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा नरेश जी का। नरेश जी स्वागत है
2: जी। नमस्कार, धन्यवाद।
1: मैं सबसे पहला प्रश्न ही पूछना चाहूंगा नरेश जी, थोड़ा सा अपने डोमेन के बारे में हमें बताइए, आप एग्जैक्टली करते क्या है?
2: एक्चुअली मेरा क्या है कि सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप है और रंगमंच में ही कार्यरत हूँ मैं, और काफी समय से 10 वर्ष हो गए मुझे आगे करते हुए, और अभी हाल ही में मैं अपने ग्रुप में काम कर रहा हूँ और फुल टाइम थिएटर करता हूँ मैं।
1: ओके, सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे लगा थिएटर करना चाहिए?
2: थिएटर की कहानी मेरी कुछ इस प्रकार है कि बचपन में रामलीला का बहुत शौक था मुझे, और मेरे गली में रामलीला होती थी, तो तकरीबन 15 वर्ष पहले की बात है, तो रामलीला होती थी तो उसमें मुझे हनुमान बनाया जाता था और हनुमान का किरदार मैंने किया था उस समय। तो हनुमान का किरदार जो किया था, आप सोचेंगे नहीं कि किस प्रकार मेरी कॉस्ट्यूम थी उस समय, और मैं आपको बता ही देता हूँ। उस समय मात्र एक, आप कह सकते हैं गमछा, लाइक साफी भी कहते हैं जिसे, वो और एक गधा के साथ मैंने वो किरदार निभाया था, और उस किरदार का इतनी अहम भूमिका रही मेरे जीवन में कि अभी भी मैं बड़ा होकर बालाजी का भक्त हूँ, और उनकी कृपा दया दृष्टि से बड़े होकर अभिनय के क्षेत्र में भी मुझे अभी भी 3-4 जगह हनुमान के किरदार मिल चुके हैं।
1: तो रामलीला करते थे आप, रामलीला करने के बाद आपको लगा कि ये एक चीज है जो आपको करनी चाहिए?
2: जी, उसके बाद मैंने स्कूल में भी मिमिक्री की शुरुआत की, और मेरे प्रिंसिपल थे दुली चंद अग्रवाल जी, अग्रवाल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी में, तो उनकी मिमिक्री की मैंने पहले, स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही और उन्हीं के समक्ष मैंने प्रस्तुति दी तो उनको काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज अटेंड किया, कॉलेज में देखा, पता चला यूथ फेस्टिवल के बारे में, तो कॉलेज कॉम्पिटिशन होता है, यूथ फेस्टिवल जो होता है उसमें सारे कॉलेज कंपटीशन करते हैं ड्रामा में, तो मैंने नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहां से पता चला मुझे कि थिएटर रंगमंच भी ऐसी कोई चीज होती है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं।
1: जी जी, अगर मैं पर्सनल लेवल पर यहाँ पर बात करना चाहूँ तो नरेश ठाकुर के जीवन में क्या बदला है रंगमंच से?
2: रंगमंच अगर नरेश के जीवन की बात करो तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ही अपोजिट हो चुका है नरेश का जीवन। कहीं ना कहीं नरेश जो पहले था रंगमंच से पहले, काफी चिड़चिड़ापन अंदर रहता था, काफी गुस्सा आता था, चीजों को सहन शक्ति करने की मतलब कि इतनी इच्छुकता नहीं थी कि मतलब कि देखते ही गुस्सा आने लगता था, किसी चीज को कंट्रोल नहीं होता था अपने ऊपर। सबसे बड़ी बात कंट्रोल अपने ऊपर होना आ गया है, और दूसरी बात कहूँ तो मैं, रंगमंच जो है आपको जीवन जीना सिखाता है, ये नहीं कि आपको रंगमंच में आप कार्यरत हैं तो आप ओनली एक्टिंग करेंगे या थिएटर करेंगे या फिर ऐसे एक्टिंग सीखकर आप फिल्मों में काम करेंगे,

0: रियल में काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कला और बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, टीवी सीरियल फिल्मों में काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने निजी जीवन में काफी बदलाव देख सकते हैं, जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे परिवार को भी इस बात पर गर्व है कि जो नरेश थिएटर करने से पहले जो नरेश था, थिएटर करने के बाद जो नरेश है, उसमें काफी बदलाव है।
1: जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि थिएटर तो सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनको एक्टर बनना है, बड़े पर्दे पर जाना है।
0: ये तो जी गलत फहमी है लोगों में कि भाई ओनली एक्टिंग के लिए थिएटर करना चाहिए या बड़ा स्टार बनने के लिए थिएटर करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत ही होगा। हाँ, यही अच्छी बात है कि आपकी मन की इच्छा है कि आपको बड़ा स्टार बनना है या बड़ा एक्टर बनना है तो थिएटर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इस सोच के साथ आप एक सोच भी साथ में लेके चलें, आप अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए रंगमंच थिएटर। आप इससे जुड़ें और जुड़कर आप अपनी काफी मतलब अंदर की जो बुराइयां हैं, जो आपकी सहन शक्ति है, उसको आप अपने अनुसार धारण कर सकते हैं।
1: बहुत उम्दा बहुत उम्दा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ तक नरेश ठाकुर जी से जितनी हमने बात करी है उतनी आपको समझ आई है और आपको मजा आ रहा है संवाद सुनने में। तो एक काफी मजे हुए, काफी एक्सपीरियंस, काफी अनुभवी एक थिएटर कलाकार हैं, रंगमंच से जुड़े हुए एक कर्मी हैं जो रंगमंच की पूजा करते हैं, उनसे आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ, आप लोग जुड़े हुए हैं 107.8 FM के साथ। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर नरेश ठाकुर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रंगमंच की, थिएटर की, अभिनय की, कैसे बना जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। अभी तक हमने जाना है नरेश के बारे में कि वो क्या करते हैं एग्जैक्टली। आइए थोड़ी आपकी बात करते हैं कि आप कैसे बन सकते हैं। नरेश, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा थिएटर के बारे में कि थिएटर अगर किसी को शुरू करना है, पहले चीज तो बताइए कैसे शुरू किया जाए।
1: देखिए, कहीं ना कहीं आपको पहले ये जानना होगा कि आप जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ रंगमंच होता भी है कि नहीं। अगर होता भी है तो आपको पहले वहाँ जाना चाहिए और वहाँ के माहौल को देखना चाहिए। जो आपको वहाँ के डायरेक्टर हैं जो डायरेक्शन दे रहे हैं आपको, उनकी डायरेक्शन को समझना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो पावर है, माइंड पावर, लाइक उसको ओपन करके जाए। इतना आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं कि हम जहाँ जा रहे हैं कि वो जगह आपके लिए थिएटर के लिए प्रभावित है क्या, आप सच में वहाँ थिएटर सीख पाएंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं बस ऐसे ही घुमाया जा रहा है। क्योंकि आजकल काफी थिएटर ग्रुप खुल चुके हैं, जैसे कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दुकानें खुल चुकी हैं। आप जाकर देखेंगे, बाहर मार्केट में निकलेंगे, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो लोगों ने कहीं ना कहीं थिएटर ग्रुप की दुकानें खोल रखी हैं। आपको साल दो साल ओनली नुक्कड़ नाटक कराया जाता है, उसके पैसे ऊपर से मिलते हैं आपके, आपसे जो आपकी वो बनती है, क्या नाम है, आपकी फीस वो ले लेते हैं और कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक में आपको घेरे रखते हैं। तो ये चीज आपको स्पेशल समझनी होगी कि आप जहाँ सीख रहे हैं वो जो डायरेक्टर हैं वो उस काबिल हैं कि वो आपको सिखा पा रहे हैं, और या फिर वो जो माहौल है, क्या वो माहौल ऐसा है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल माहौल जो है बहुत डिपेंड करता है एक कलाकार को एक्टिंग सीखने में। और कहीं ना कहीं आजकल आप देखेंगे कि एक्टर बनने से पहले ही कुछ लोग बहुत बड़े एक्टर और स्टार बन जाते हैं, और लोगों ने कहीं ना कहीं धूम्रपान से एक्टिंग को जोड़ रखा है, जिस कारण कई स्टूडेंट आते एक्टर बनने हैं लेकिन नशे के आदि होकर वो कहीं ना कहीं उस लाइन को भूल जाते हैं और नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको माहौल को समझना होगा, आपके आसपास वाला जो माहौल है जहाँ आप जा रहे हैं सीखने या सीखना चाहते हैं, तो इस चीज को आपको पहले जानना होगा।
0: बहुत सुंदर। अगर किसी के पास वो माहौल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो कैसे सीख सकता है?
1: माहौल नहीं है तो वो अपने आप से भी खुद, आजकल काफी यूट्यूब चैनल है उस पर आप सीख सकते हैं, और कहीं ना कहीं खुद आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि आप कंट्रोल करना सीखें। सबसे पहले कोई चीज है, कोई आपके सामने सीन क्रिएट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं हम घर में रहते हैं तो मम्मा हमारी कहीं ना कोई बात होती है तो वो चिल्लाती हैं, तो आप उस चिल्लाने को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ना चिल्लाएं, उनका जवाब ना दें, तो उस तरीके से आप एक्टिंग का कहीं ना कहीं पार्ट बन सकते हैं कि देखो मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया और मैं इस तरीके से उसको ड्रामा का पार्ट समझें कहीं ना कहीं, कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक ड्रामा चल रहा है तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो ये चीज। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप के जीवन में अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपको अपने को एक्टर को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नरेश, किन किन चीजों के ऊपर काम किया जाता है थिएटर में?
1: काम सबसे पहले तो अपने वे ऑफ टॉक पे वर्क करना चाहिए एक कलाकार को। आपको बोलना आना चाहिए, आपको खड़े होना आना चाहिए, ब्लॉकिंग समझनी चाहिए आपको, आपकी सहन क्षमता बहुत होनी चाहिए आपके अंदर एज ए आर्टिस्ट, कंट्रोल पावर आपकी बहुत हैवी होनी चाहिए।
0: क्या क्या वो स्किल्स हैं, मानकर चलिए इस टाइम कोई बच्चा आपकी आवाज सुन रहा है और उसके पास एक्सेस नहीं है थिएटर ग्रुप में जाने का किसी में, और वो थिएटर करना चाहता है, उसको एक्टिंग से प्यार है, तो अपने घर पर रह करके वो क्या क्या कर सकता है, किन किन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है?
1: उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉइस एक्सरसाइज है, काफी योग है, योगासन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूंगा, एक हमारा खुद का चैनल है सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप, आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं।
0: ओके ओके ओके, तो इनका चैनल है, आप वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं सबका रंगमंच ग्रुप नाम से, जिसमें आपको आपके अगर कोई सवाल है आपके जहन में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। नरेश भाई, कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग हमने हमेशा ही डिफरेंस सुना है, इनमें क्या फर्क होता है?
1: इसमें काफी डिफरेंस होता है। जो थिएटर होता है ये आपको लाइव स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, और एक बार अगर टेक लग गया तो फिर उसका दी एंड ही होना है, लेकिन आप टेलीविजन की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वेब सीरीज की है जलेबी, जो स्टेज ऐप पे आने वाली है। तो अगर आप टीवी की बात करें तो उसमें बहुत सारे कट होते हैं, अगर आपको एक बारी में आप उस तरह की एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा रीटेक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थिएटर की बात करें, अगर वो चालू हो गया तो फिर वो एंड ही होगा उसका, उसमें कोई रीटेक की संभावना नहीं होती।
0: तो ये फर्क होता है कि बस लाइव जो होता है थिएटर, उसमें आप लाइव होते हैं, आपके पास कोई रीटेक की संभावना नहीं बचती है, वहां पर गुंजाइश नहीं बचती है। कैमरे एक्टिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है, कैमरे में आपको करना होता है तो आपको उतना स्कोप वहां पर मिल जाता है, लीनियंसी मिल जाती है। मोर ओवर कैमरा आप के पास आता है, कैमरे के थ्रू लोग आपके चेहरे के पास आते हैं, रंगमंच पर आपकी आवाज के थ्रू आप लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। वो थोड़ा लाउड होता है, वो थोड़ा सटल होता है, दैट्स हाउ थिंग्स डिफरेंशिएट्स। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

0: हर बार की तरह मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है शो में, आपको मजा आ रहा है इस म्यूजिकल वाइब के साथ। फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ है मिस्टर नरेश ठाकुर जो कि सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप के फाउंडर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आइए शो को आगे लेकर के चलते हैं। नरेश, अब मैं बात करना चाहूंगा पैसों की। रंगमंच में पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे जिया जाता है, दाल रोटी का जुगाड़ कैसे होता है?
1: रंगमंच में अगर पैसे की बात करें तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं घर पूर्व थिएटर हमें दिखाना पड़ता है। इनकम का सोर्स बहुत ही कम होता है, लेकिन आत्मिक संतुष्टि बहुत होती है, लेकिन उस आत्मिक संतुष्टि से घर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आजकल काफी संस्थाएं खुल चुकी हैं, आपको नाम बताना चाहूंगा, जैसे हरियाणा में हरियाणा कला परिषद है, आर्ट एंड कल्चर अफेयर चंडीगढ़ है, और संस्कार भारती है, और सूचना जनसंपर्क विभाग है फरीदाबाद में। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कला के क्षेत्र में काफी कला को बढ़ावा दे रही हैं और अच्छा खासा मानदेय कला को, कलाकार को देती हैं कला के लिए, चाहे वो नाटक की कला है, चाहे वो नृत्य की कला है, चाहे वो संगीत की कला है। तो आप इन संस्थाओं से जुड़ के आप कार्य कर सकते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रयोग करती है, जिसका लाभ मैं काफी समय से उठा रहा हूं और जिस कारण से मैं आज इस फील्ड में डटा हुआ हूँ।
0: बहुत सुंदर। नरेश भाई, मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि अगर किसी को थिएटर कर लिया, उसने चार चीजें सीख ली, तो मूवीज तक पहुंचने का रास्ता क्या होता है, बॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता कैसा होता है?
1: एक्चुअली मूवी तक तो यही है कि सबसे बेस्ट है कि आप कहीं ऑडिशन तैयार करें और ऑडिशन के थ्रू ही आपको वर्क मिलेगा। वो बात और है कि लोगों ने लिंक से कहीं ना कहीं जोड़ रखा है फिल्मों को, इसलिए लोगों के लिए लिंक होते हैं, लिंक होते हैं, लिंक से लोग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी पर्सनैलिटी है, आपका लुक अगर जा रहा है करेक्टर के लिए, तो किसी लिंक की आपको जरूरत नहीं है, आप ऑडिशन के द्वारा सीरियल कर सकते हैं।
0: All right. एक अभिनेता बनने के लिए क्या चीजें हैं जो डेली करनी चाहिए, भले आप थिएटर कर रहे हो ना कर रहे हो?
1: आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन है, आपका जो किरदार है उस किरदार को आपको बार बार रिपीट करना चाहिए, जो भी आपके डायलॉग्स हैं, और कहीं ना कहीं आपको रियाज की बहुत जरूरत रहती है जब आप रंगमंच करते हैं। और रंगमंच के सामने यही नहीं है कि आपको एक्टिंग ही करनी होती है, रंगमंच का पार्ट सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है, तो इन सभी चीजों पे एक कलाकार को काम करना चाहिए और अपने आप को दिन प्रतिदिन बदलना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए।
0: बहुत सुंदर। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं नरेश जी, कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, हमने आज नरेश ठाकुर जी से बात करी और थैंक यू सो मच नरेश जी हमारे से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त है दोस्तों अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा, आपको कुछ वैल्यूज मिली होंगी। आज के हमारे मेहमान रहे मिस्टर नरेश ठाकुर।

जो कि सबका रंगमंच थिएटर ग्रुप के फाउंडर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अगर आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो अपनी कला के ऊपर काम करिए, एक्सरसाइज डेली करिए, डेली रियाज करिए, हर रोज का यही तरीका होता है, जरूर करिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों आज बात हो रही है मेस्टा के बारे में। अब भाई देखिए फसल कोई भी हो आप चाहते हैं कि उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो तो सबसे पहला काम होता है किस्मों का ख्याल रखना, यानी वो कौन कौन सी किस्में हैं जिससे पैदावार हमें अच्छी मिल सकती है। हिबिस्कस सब्दारिफा AMV1 AMV2 AMV3 4 HS 4288 HS 7910 जो कि आसाम मेघालय त्रिपुरा पश्चिम बंगाल में उपयोग होने वाली किस्में हैं। इसके अलावा दूसरी किस्म है हिबिस्कस कैनाबिनस, ये HC 583 जो कि पश्चिमी बंगाल में उगाने योग्य किस्म है। इसके अलावा किसान भाइयों दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें तो हिबिस्कस कैनाबिनस MT 150 ये किस्म सारे मेस्टा उत्पादक राज्यों के लिए सहायक है। इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया होती है और इस किस्म को मुख्य रूप से अखबार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी औसतन पैदावार 13 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। और एक और किस्म है जिसका नाम है JRM 3, इसको स्नेहा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे देश में उगाने योग्य किस्म है, ये कीटों और बीमारियों की रोधक किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 10.5 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। एक और किस्म है जिसको जाना जाता है JRM 5 के नाम से और इसको श्रेष्ठा भी कहा जाता है। इसकी औसतन पैदावार 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसके अलावा एक और किस्म है जिसको जाना जाता है AMV 7 के नाम से। ये किस्म 130 से लेके 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और ये नमी की कमी को सहने योग्य कीटों और बीमारियों की रोधक किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 10.5 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाती है। लेकिन जब बात आती है जमीन की तैयारी की तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों मेस्टा की फसल को बेहतर बनाने के लिए इसकी जमीन की तैयारी कैसे की जाए आपको जरूर बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: देखिए किसान भाइयों, अगर आप मेस्ट्रा की फसल बेहतर हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जमीन की तैयारी बेहतर से बेहतर करनी है। मानसून आने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और जुताई के बाद मिट्टी को नदियों और अन्य बचे खुचे पदार्थों से मुक्त कर दें। फिर जमीन को अच्छी तरह से समतल कर लें। खेत की तैयारी के समय मिट्टी में 2 से 4 टन गली सड़ी रूड़ी की खाद जरूर डालें। और बिजाई की जब बात आती है तो बिजाई का समय जरूर याद रखें। मेस्ट्रा की बिजाई के लिए मई जून महीने का समय उचित माना जाता है, लेकिन बढ़िया विकास और पैदावार के लिए फसल में 30x10 सेंटीमीटर का फासला रखने

की सिफारिश की जाती है। बीज की गहराई की बात करें तो बीजों की बिजाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर करें। बिजाई का ढंग भी सुन लीजिए, इसकी बिजाई आमतौर पर बुरकाव विधि द्वारा की जाती है, लेकिन पंक्तियों में बिजाई करना भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है किसान भाइयों। लेकिन बात जब बीज की आती है तो बीज का सबसे पहले उपचार करना जरूरी होता है। अब बीज का उपचार कैसे किया जाए इसके बारे में भी आपसे बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, मेस्ट्रा के बारे में आज आपसे बात हो रही है। पीछे मैंने आपको बताया था कि जमीन की तैयारी कैसे की जाती है, लेकिन अब बात आती है बीज की, बीज के उपचार की। तो बिजाई से पहले मैन को जेब 3 ग्राम प्रति किलो से बीज का उपचार करें और बीज की मात्रा का भी ख्याल रखें। हिबिस्कस सब्दारिफा के लिए 6 किलो प्रति एकड़ और हिबिस्कस कैनाबिनस के लिए 5 किलो प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करें। अब बात आती है खाद की। भाई देखिए, खाद अच्छी डालेंगे तो फसल अच्छी होगी, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। किसान भाइयों, ज्यादा पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन 16 किलो यानी यूरिया 36 किलो, फास्फोरस 8 किलो यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो और पोटाश 8 किलो यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 14 किलो प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद फास्फोरस और पोटाश का सारा हिस्सा और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा बिजाई के समय डालें। बाकी बची नाइट्रोजन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दें। पहला हिस्सा बिजाई से 21 दिन बाद और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा बिजाई से 35 दिन के बाद गुड़ाई करने के समय डालें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो फसल बेहतर होगी, फसल बेहतर होगी तो दाम भी तो अच्छा मिलेगा किसान भाइयों। चलिए खरपतवार के बारे में भी बात करूंगा जो कि हमारी फसल को नेस्त नबूद कर देती है। सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, अगर हम उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते तो उसका परिणाम हमें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। हम बड़ी मेहनत से अपनी फसलों को तैयार करते हैं, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, हम हर तरह के संकटों को झेलते हुए अपनी फसलों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब खरपतवार का आक्रमण होता है फसलों पर, फिर फसलें बर्बाद होनी शुरू हो जाती हैं और आपकी जो मेहनत है वो भी जाया हो जाती है। आपकी फसल बर्बाद ना हो, मेहनत जाया ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खेत को साफ और नदीन मुक्त करने के लिए गुड़ाई करें और पौधों को विरला करें। पहली गुड़ाई बिजाई से 21 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई बिजाई से 35 दिन के बाद करें और साथ साथ कमजोर पौधों को बाहर निकाल दें। नदियों को रासायनिक ढंग से रोकने के लिए बिजाई से 2 से 3 दिन पहले फ्लू क्लोरालिन 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ डालें या ब्यूटा क्लोर 1200 मिलीलीटर प्रति एकड़ या पैंडी मेथालीन 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़ को बिजाई के तुरंत बाद डाल दें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर चुका हूं मैसरा के बारे में, लेकिन अब बात आती है सिंचाई की। भाई देखिए, सिंचित फसल होने के कारण इसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जरूरत हो तो मौसम और मिट्टी की किस्म के अनुसार इसकी सिंचाई करना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि जब हमारी फसल तैयार होने लगती है तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं हमारी फसल के लिए। उनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए और वो कीट कौन से हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा उस कीट की जिसको जाना जाता है चेपा के नाम से। अगर खेत में इसका नुकसान दिखाई दे तो डाई मेथोट 2 मिलीलीटर या एमडा क्लोफ्रेड 0.25 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें, या थाई ओमेथो कसम 0.2 ग्राम या एसिटामीप्रिड 0.2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। ये तो हो गई चेपा को रोकने की बात। इसके अलावा एक कीट और होता है जिसको जाना जाता है हरी सुड़ी के नाम से। अगर इसका नुकसान दिखाई दे तो थाई ओडिकार्ब 1 ग्राम या इंडोक्साकार्ब 1 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इसके बाद बात आती है उस कीट की जिसको जाना जाता है मिली बग के नाम से। जब नुकसान कम हो तो इसकी प्रभावशाली रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। अगर नुकसान ज़्यादा हो तो प्रोफेनोफॉस 2 मिलीलीटर या ट्राइजोफोम 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये बात मैंने बता दी है आपको कुछ कीटों के बारे में, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हो जाती है। कई तरह के कीट होते हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, और वो कौन कौन से कीट हैं उनके बारे में भी बात होगी और उनसे रोकथाम कैसे की जा सकती है वो उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है। किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, आज हम उस फसल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मेस्टा। मेस्टा की फसल के लिए बहुत सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी बात चल रही है

उन कीटों के बारे में जो कि हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा कीट जिसका नाम है तेला, इसकी रोकथाम के लिए एमिडाक्लोफ्रिड 0.25 मिलीलीटर या थाई ओमेथोकसम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से जो आपका तेला नाम का कीट है इसका समाधान हो जाएगा और आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ बीमारियों की और उनकी रोकथाम की। एक बीमारी है जिसका नाम है जड़ और तना गलन। नाम से ही पता लगता है कि ये हमारे पौधों की जड़ को और जो तना होता है उसको गला देती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत में अच्छे निकास का प्रबंध कर लें और पानी को खड़ा बिल्कुल ना होने दें। बिजाई से पहले प्रति किलो बीजों को 3 ग्राम मैकोजेब के साथ उपचार करें और अगर इसका हमला दिखाई दे तो रिडोमिल 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। तो ये बात तो हो गई जड़ और तना गलन के बारे में, लेकिन एक और रोग है जिसको जाना जाता है पत्तों का झुलस रोग के नाम से। अगर इसका हमला दिखाई दे तो 3 ग्राम मैकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। जरूरत पड़ने पर 7 दिनों के फासले पर दोबारा स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रोग और होता है जिसको जाना जाता है नाड़ियों का पीला चितकबरा रोग के नाम से। ये रोग सफ़ेद मक्खी से फैलता है और सफ़ेद मक्खी के हमले की जांच ज़रूर करनी चाहिए। बिजाई से 50 दिन के बाद थाई ओमेथोकसम 0.1 ग्राम या एमिडाक्लोफ्रिड 0.25 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है फसल की कटाई की, तब हमें क्या करना चाहिए और कटाई के बाद क्या करना चाहिए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा थोड़ी देर के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता अपने दोस्त फहीम के साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थीं। उनका कहना है कि हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्न की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है मधु कांकरिया का। लेकिन इनके बारे में आज के एपिसोड में और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का युगबोध सजग, सतर्क और स्पष्ट है। अपनी कहानियों में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भली भांति भांप कर यथार्थ वर्णन किया है। जो प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, समस्याएं उन्हें एक बेहतर समाज के निर्माण में बाधक प्रतीत हुई हैं, उनका हल प्रस्तुत करने का यत्न भी एक शुद्ध साहित्यकार की भांति किया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण मधु कांकरिया की कहानियों में समाज का वास्तविक यथार्थ अंकित हुआ है, जहां कल्पना के अटने की ज्यादा गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। सूरज पालीवाल के मुताबिक मार्क्सवाद जीवन और जगत को देखने की स्वस्थ दृष्टि देता है, जिसका प्रभाव मधु कांकरिया के जीवन और रचना जगत में देखा जा सकता है। वो मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन उसकी विरोधी भी नहीं है, इसलिए उनकी रचनाओं का आकाश विस्तृत है। घर परिवार की सीमाओं का जो बार बार अतिक्रमण होता है, उसके सूत्र इसी मार्क्सवाद के प्रभाव में देखे जा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का रचना संसार बहुत विस्तृत है, जिसके कारण वो अपने समकालीन रचनाकारों जैसे मालती जोशी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, राजी सेठ, अनामिका, उषा प्रियंवदा, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा और सूर्य बाला से अलग और विशिष्ट हैं। दोस्तों, मधु कांकरिया के व्यक्तित्व का खुला दर्शन उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर लिखने वालों में से नहीं हैं। वो उन गलियों में जरूर भटकती हैं जहां उनके पात्र हैं। वो फॉर्मूला टाइप कहानी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती। जीवन जैसा है उसको वैसा ही साहित्य में उतारने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। जीवन में जो स्त्री हार रही है उसे वीर बाला या झांसी की रानी बनाकर बहुत नहीं दिखाती हैं। यही उनकी लेखन की खासियत है जो और लेखकों से उनको अलग करती है। इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर याद।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, उनके लेखन के बारे में। मधु कांकरिया की हर एक कहानी समकालीन दौर से इस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक पाठक खुद को उसमें जरूर पाता है। अगर स्त्री की बात करें तो 20वीं सदी के अंतिम दशक की लेखिकाओं ने स्त्री मुक्ति की समस्याओं को अपने अनुभवों, भोगी हुई जिंदगी की यातनाओं, मुक्ति की छटपटाहट और बेचैनी को वाणी प्रदान की है। आज की स्त्री अपने सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार करती है, सामंती परिवेश की जकड़न और रूढ़ मर्यादाओं को तोड़ती है, साथ में सकारात्मक रूप से अपने दृढ़ व्यक्तित्व को भी वाणी प्रदान करती है। मधु कांकरिया की कहानी, जिसका नाम है दाखिल, कहानी दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन का जिक्र हुआ है। अब सुकीर्ति के बारे में किस तरह से जिक्र किया है मधु ने, आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था मधु कांकरिया की उस कहानी का जिसका शीर्षक है दाखिल। दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन संघर्ष का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। सुकीर्ति के प्रति पति का व्यवहार कैसा था, ये छोटे से विक्रम यानी जो बेटा है उसके कहने से पता चलता है कि मैंने फेंके हैं ये चाकू यहाँ, मुझे डर था कहीं पापा गुस्से में ये चाकू ही तुम पर ना फेंक दें। उस दिन जो गरम गरम चाय किस तरह फेंकी थी पापा ने आपके ऊपर। दोस्तों, सुकीर्ति अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहती है, लेकिन पति के ना होने से ये काम सहज नहीं था। वो अपने भाई को पति बनाकर बच्चे के एडमिशन का प्रयास करती है और आखिरकार अनेक संघर्ष के बाद वो इसमें सफलता पाती है। पितृसत्तात्मक समाज में एक अकेली स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षशील होता है। पुरुष के बिना नारी के अस्तित्व को आज भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये हकीकत है और यही सत्य है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, भारतीय नारी के विषय में पहले से ही पवित्र संकल्पना रही है कि वो किसी भी प्रतिकूल या नकारात्मक स्थिति में अपने सतीत्व का विसर्जन नहीं करेगी, क्योंकि ये नारी का आभूषण है। उसकी पवित्रता पितृ सत्ता की वैचारिकी और उससे तराशी स्त्री सोच से आबद्ध रही है। लेकिन आज के युग तक आते आते इस दृष्टिकोण में काफी कुछ बदलाव आए हैं। जीवन मूल्य के प्रति बदले हुए चिंतन के कारण वर्तमान में स्त्री स्वतंत्रता के साथ जीवन बिताना चाहती है। अगर उसकी स्वतंत्रता पर जबरदस्ती लगाम लगा दी जाए तो उसका मन आजादी के लिए तड़पने लगता है। वो किसी न किसी तरह स्वतंत्र होने की सोच में डूब जाती है। फिर रास्ता कोई भी हो, सही हो या गलत हो, उसे परवाह नहीं रहती। दोस्तों, मधु कांकरिया की एक कहानी है जिसका नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। इस कहानी के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में और उनकी लेखन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, उनकी एक कहानी है जो कि बड़ी मशहूर है, नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। ये कहानी एक प्रतिशोध परायण स्त्री का बयान बनती है। एक बार नायिका हिम्मत करके अपने छोटे भाई के मित्र से हाथ मिला लेती है तो उसका पति उसके हाथों को दीवार पर रगड़ देता है ताकि स्पर्श के चिन्ह मिट जाएं। नायिका कहती है, मेरे पति ने मेरी देह की जमीन पर ऐसी हदबंदी कर दी थी, ऐसे कटीले बाड़े डाल रखे थे कि मैं किसी हम उम्र इंसान से बात करने तक तरस जाया करती थी। पति से बदला लेने के लिए एक अजनबी से शारीरिक संबंध बनाकर घोषित करती है, हाँ आज की ये रात अकस्मात नहीं थी, इसके मेघ खंड मेरे अवचेतन में जाने कितने वर्षों से खंड खंड इकट्ठे हो रहे थे, आज की रात मेरे प्रतिशोध की रात है। तो इस तरह से दोस्तों मधु कांकरिया ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में फैली जो कुरूतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया और जो स्त्रियां हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की। इनके बारे में अगले एपिसोड में आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हां, बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आ जाते हैं हम आपके लिए, चाहे बात हो देश की या बात हो विदेश की, या बात हो हमारी सोशल मीडिया की या हमारी सोसाइटी की। हर टॉपिक को ना हम यहां पर कवर करते हैं, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ ही आपके लिए लेकर आ जाती हूँ बेहद ही खूबसूरत गाने भी, जिसे हम एंजॉय करते हैं, साथ ही इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। तो आज भी मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक खास टॉपिक, और वो क्या है? वो है हमारा यूथ। जी हाँ, आजकल हम सब सुन रहे हैं यूथ, जो हमारा फ्यूचर है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए। हमारा फ्यूचर है यूथ, तो आज क्यों ना हम उसी पर बात करें। इसलिए मैं आपके लिए आज ये यूथ स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आई हूँ। आज क्यों ना हम यूथ के ऊपर ही बात करें कि यूथ आखिर कर क्या रहा है और आगे क्या फ्यूचर वो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक ना इसलिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उस जनरेशन की जो हर जगह कुछ नया करने, कुछ अलग सोचने और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो है हमारा यूथ। जी हाँ, यूथ एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एनर्जी, ड्रीम्स, एक्साइटमेंट्स और पॉसिबिलिटीज जुड़ी होती है। लेकिन यूथ को हम अक्सर एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं कि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, यूथ फ्यूचर है, लेकिन क्या वो सिर्फ फ्यूचर है? बिल्कुल नहीं, यूथ आज का प्रेजेंट भी है। आज स्टूडेंट्स नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू नए सॉल्यूशंस को क्रिएट कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स में नाम बना रहा है, तो कोई म्यूजिक और आर्ट्स में अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, तो कोई सोशल इश्यूज के लिए आवाज उठा रहा है। मतलब यूथ सिर्फ कल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि वो आज भी सोसाइटी को शेप देने के लिए अपनी आवाज उठाता है। इसे डे को हाईलाइट करने के लिए हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। जी हाँ, इस दिन का जो मेन पर्पस होता है वो यूथ से जुड़े इश्यूज, उनकी पार्टिसिपेशंस और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन पर अटेंशन देना होता है। ये एक रिमाइंडर भी है कि यंग पीपल की बात सुनना, उनकी आइडियाज को इम्पोर्टेंस देना और उन्हें अपॉर्चुनिटी देना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, और अगर हम अपने आसपास देखें तो यूथ की जो प्रेजेंस है वो हर जगह नज़र आती है। आज का जो यंग पर्सन है सिर्फ क्लासरूम या फिर ऑफिस तक ही लिमिटेड नहीं है, वो सोशल मीडिया पर भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहा है, नए स्किल्स को सीख रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और अपने करियर के नए ऑप्शंस को डिस्कवर भी कर रहा है। लेकिन यूथ की स्टोरी सिर्फ अचीवमेंट्स की नहीं है, बल्कि ड्रीम्स के साथ साथ चैलेंजेस की भी है। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ प्रेशर भी होता है और फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आज की ये खास ट्रेंडिंग तड़का ना हमारे यूथ के लिए है, जिस दिन को मैंने आपको बताया कि हम 12 तारीख को, जो हम 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट करते हैं, वो आज हम ना उनकी बात करने वाले हैं, उनके लिए एक दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और साथ ही उनके लाइफ को ना थोड़ा सा और क्लोजली समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर यूथ है क्या, क्या चाहता है और आगे क्या फ्यूचर है और प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है। क्योंकि यूथ सिर्फ फ्यूचर ऑफ द कंट्री नहीं है, बल्कि यूथ इज द एनर्जी, आइडियाज और वॉइस ऑफ प्रेजेंट। तो आपको क्या करना है, जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि आज ना बात होने वाली है बहुत खास, और इसी के साथ ही बहुत ही प्यारे प्यार से गाने भी। तो सुनिए अभी बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ दोस्तों, हर संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम जिसपे हम बहुत सारी ट्रेंड की बातें करते हैं। उसी के साथ ही हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कोई डे स्पेसिफिक होता है, हम उसके बारे में भी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि ना क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को और अच्छे से जान लेते हैं ना, तो शायद उसे समझना बहुत ईजी हो जाता है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं हमारे यूथ की, जी हाँ आज हम यूथ की बात कर रहे हैं, हमारा आज का यूथ उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे यूथ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी। लेकिन अब जरा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कर लेते हैं कि आज का यूथ और कुछ साल पहले का यूथ, क्या सच में दोनों में इतना डिफरेंस आ गया है? सोचिए, अगर हम अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से उनके यूथ के बारे में पूछे तो उनकी स्टोरीज में एक अलग ही दुनिया नजर आती है कि करियर के ऑप्शंस लिमिटेड थे, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज लिमिटेड थे और टेक्नोलॉजी आज की तरह लाइफ का पार्ट नहीं थी। आज

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था। उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ, क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए। अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक यहां होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहां हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहां कुछ खत्म होता है वहां तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहां तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहां संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था,
जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेचने गया। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी 2 पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए।

लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी हैं लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में इच्छा है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है? ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार हैं, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता, जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा? मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा? तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राण
कानों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हूँ। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता है, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता है, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता है। वो तो कहता आओ, जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं। शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर
झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आग का हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायवी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश हैं हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी देहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोक रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली। फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं, मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो, तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है, तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा आ। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। देखो 25 साल की श्रद्धा जितनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ, लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता, असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है,
नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है। 500 साल छोटा फासला नहीं, सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं, सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है, नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस से हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस को कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। ईसा ने तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जज भी होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जज गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क की जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है
उसका रंग भी है।

0: इसलिए तुम्हें जज गई होगी बात, लेकिन अब मौका आ गया कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको। इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है। क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिस पे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत ना हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत ना हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है, अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करनी होगी। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण हो। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे। तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाठशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाठशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है,
1: कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों? पूछा पूछने वाले ने। क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना। असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा? जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत् जीवाम उस्केसु अनस्तुका उस्केसु मनुष्येसु बेहरा मनुष्युका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुख पूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझें। शाक्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी शाक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक शाक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। शाक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं, ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकरी।

वो कंधे पिचकाता है। वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों। शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों। शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो। कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए। जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है।

जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी हूं। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्ट का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: अरे हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: क्योंकि तुम हो हटके
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग,
4: हां
5: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। व्हेन आई अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है। और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम crime के scene से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, ये सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे attitude.
5: तो अपनी awakening कितनी important है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात हो गई, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai, ya I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also,
4: for my all loved ones, you know, jinke liye main zindagi dene ko taiyar hu, sab kuch karne ko taiyar hu. Unawareness mein main kahan tak kitna nuksan. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मेरे लिए जरूरी
5: है. वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका. वो भूल चुके अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे. ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है. और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का. उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके. लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। I can only forgive if I'm filled with love, if I know the truth, if I'm at peace, then I can forgive. अगर मैं disturbed हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो forgiveness कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली, मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
4: बिल्कुल। और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली। और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होता है वो नेगेटिव। सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन, टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
4: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
5: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan, jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
4: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, because it's kind of a vicious circle. Again, शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it, और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते, और वो उस victimized, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
5: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है, या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है, या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
4: वही हो रही होती है,
5: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
4: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
5: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
4: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
5: right? But we're not really helping.
4: Yes,
5: यू नो हेल्प एट दैट टाइम वुड मीन एम्पावरमेंट. लेकिन बार बार कह कर के हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है. यू नो, तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
4: बहुत बहुत धन्यवाद.
5: ओम शक्ति.
4: ओम शक्ति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवा कर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे।